मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के अश्विन मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 2 अक्टूबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 और 6 सेकंड हुए हैं। आज की हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में मैं आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल। सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं।

सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र के द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी। विदेशों में भी भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। विकास का लाभ किसी भी नागरिक से न छूटे, इसके लिए संवेदना और समावेशिता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 125वीं जयंती पर आज राष्ट्र उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किए हैं। कार्यक्रम की सुगमता तथा यातायात सुचारू एवं सुरक्षित रखने के लिए राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
2: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई की उड़ान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सऊदी अरब के तबुक स्थित एक

0: अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें आबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सामूहिक स्वर में देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना सामूहिक स्वर में देशगान। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं श्रीकांत बसु के आवाज़ में गाया हुआ ये प्यारा सा भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अभी आपने सुना श्रीकांत बसु की आवाज़ में गाया हुआ ये भजन। तो आइए अब सुनते हैं अरुण व साथियों के स्वरों में कार्यक्रम का अगला भाग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना के इस कार्यक्रम में अभी आपने सुना अरुण व साथियों के स्वरों में गाया हुआ ये भजन। तो आइए कार्यक्रम के अंत में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का ये अंतिम भजन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसी अंतिम भजन के साथ ही कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं तो निजे प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के इस कार्यक्रम में आज सुनिए महात्मा गांधी एक यात्रा पर सुमित गौतम के विचार।

श्रोताओं, विलंब के लिए माफी चाहेंगे। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, तो लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं महात्मा गांधी एक यात्रा, इस विषय पर सुमित गौतम के विचार।

गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्न

0: प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी एक महामानव। कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनकी हस्ती उनकी दुनिया से जाने के बाद भी नहीं मिटती। वो लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं, उनके विचारों में, उनके जीवन के निर्णयों में, उनकी आस्था में। गांधी भी ऐसी ही शख्सियत हैं। गांधी कौन थे, क्या थे, ये समझना उतना ही आसान है जितना ये समझना कि वो आखिर इस दुनिया से चाहते क्या थे। आज जब समस्त मानव जाति नई चुनौतियों से जूझ रही है और इन समस्याओं से निपटने के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षा रखते हैं, दुनिया एक ऐसा नेतृत्व खोज रही है जो संपूर्ण मानव जाति को एक परिधि में लाकर एकाकार कर सके। किंतु अब किसी अवतार, मसीहा या दूत के अवतरण की कोई संभावना नहीं दिखती। मनुष्य जाति को अपने सवालों के हल खुद ढूंढने होंगे। आज नई वैश्विक व्यवस्था ने अपने साथ पूंजी और बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बेहद प्रभावी बना दिया, जिसकी अपनी चुनौतियां हैं। इस वैश्वीकरण में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो चुकी है। आज पूरी दुनिया एक ओर बम विस्फोटों और आत्मघाती कार्यवाहियों से किसी दावानल की तरह जल रही है, तो दूसरी तरफ संपत्ति के लोभ ने पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करते हुए प्रकृति को उजाड़ और बांझ बना दिया है। मनुष्य अपनी मनुष्यता को ही गंवा चुका है। आज का ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किस तरह वह अपनी मनुष्यता को पुनः पा सकेगा। शायद ये सवाल हमें एक बार फिर गांधी की तरफ ले जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक समय के पांव में लिखा है, महात्मा गांधी ऐसी ध्वनि थे जो लोकप्रिय जीवन के पत्थरों को पुष्प बनाती और छेद कर डोरा बनकर उनके कोट कोट मिलन का योग साधती। कितने धीमे वे सोचते थे, किंतु उस ध्वनि की कितनी जोर की आवाज लोगों के हृदय में गूंजती थी। महात्मा जी के दोनों हाथ चलते थे, एक मानो देश का भाग्य लिखता था तो दूसरा उन भुजाओं को उठाता था जिनमें स्वयं उठने का दम न होता था। कैसे आश्रम में रहते थे वे, मानो देश की सांस आने का कंठ हो। वह स्थान गरीबों की आवाज राजमहल से टकराने का द्वार था। गलियों में, कूचों में, झोपड़ियों में, महलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, भीड़ों में, एकांतों में, विजयों में, पराजय में साहित्य भले चुप रहा, किंतु सेवाग्राम बोल रहा था कि चलो आगे बढ़ो, शरीर की सांस की तरह चलना है, ठहरना जीवन नहीं है। देव मंदिर के घंटे मानो उसी की वाणी में, उसी की प्रार्थना में शब्दों को गुंजाने के लिए बजते थे। वह चाहे जिस गांव की जिस बोली में बोले, समस्त मानवता की गौरव से गीली और बोझली बोली बोलता था। पोपले मुख का मुक्त हास्य मानो तुलसी के शब्दों में कहने को जी चाहे, कहां कहूं छवि आज की। रूढ़ी शास्त्र से ज्यादा बलवान होने लगती तो उसकी मुस्कुराहट या एक झिड़की में उसका कहीं पता भी नहीं चलता था। वह एक ही बोली बोलता था, उठो, जागो, स्वतंत्र हो। अपने राम के आगे हाथ पसार कर वह कार्य क्षेत्र में भी यही मांगता रहा। कारागृह में भी उसने यही मांगा, वध क्षेत्र में भी उसने यही मांगा। हमें शोक हो कि उसे किसी ने क्यों मार डाला। जिस हिंसा की जड़ पृथ्वी से उखाड़ने के लिए उसने विश्व को झकझोरा था, उस हिंसा ने गांधी को नहीं मारा, अपने आप का वध कर लिया। तुम्हारी आराधना से कला ने पुरुषार्थ को उद्दंड होने से और कला को कायर होने से बचा लिया। जहां तुम्हारी आवाज है वहां कान अचाहे ना पहुंच पाते हों, किंतु मन के कान सदैव उसे सुनते रह सकते हैं। अंगुलियां चाहे तुम्हारे चरणों को ना छू सके, किंतु आंखें उनमें तुम झूल सकते हो, झूल रहे हो। तुम्हें वंदन, तुम्हें अभिनंदन।

श्रोताओं, भाई आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना महात्मा गांधी एक यात्रा। विचार प्रस्तुत कर रहे थे सुमित गौतम। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। तो नीचे प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड की रचना प्रारंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने श्री शंकर तथा रघुवंश भूषण श्री रामचंद्र की स्तुति के पश्चात गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। श्री राम सहित सभी दशरथ कुमार विवाह करके अयोध्या आ चुके हैं, जहां नित्य नए मंगल हो रहे हैं, आनंद के बधावे बज रहे हैं। अयोध्या नगरी का रूप कभी उस चौदहों लोक रूपी पर्वत की तरह दिखाई देता है, जिस पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, तो कभी उस सागर की भांति जिसमें रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियों का जल उमड़ घुमड़ कर आ मिलता है। सबकी अभिलाषा है कि राजा श्री राम को युवराज पद दे दें। एक दिन दर्पण में अपनी छवि देख राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा कर रहे थे कि कानों के पास के केश सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा उपदेश कर रहा हो कि ज्येष्ठ पुत्र को युवराज पद देकर उन्हें अपना जन्म और जीवन सफल कर लेना चाहिए। अतः एक दिन शुभ समय देखकर हर्षित मन से उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना विचार जा सुनाया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:45 और 32 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा। सामायिक चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कीटनाशक रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, और जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हम फसल उत्पादित करते हैं, फसलों में कीट और व्याधि लगना स्वाभाविक है। कोई भी मौसम हो, केवल अंतर यह रहता है किसी मौसम में कीट फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और किसी मौसम में कम। जब फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप अधिक बढ़ जाता है और फसलों में नुकसान आर्थिक स्तर से अधिक होने लगता है तो कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं। इन दवाओं का प्रयोग कुछ सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फसलों में कीट या बीमारी की नुकसान पहुंचाने की स्थिति कैसी है, किस तरह फसलों को हानि हो रही है, कीट की प्रवृत्ति कैसी है, उसी के आधार पर कीटनाशक या फफूंदनाशक दवाओं का चयन करना चाहिए। कीटनाशकों का घोल हमेशा खुली जगह पर बनाएं। घोल किसी बड़े बर्तन में बनाना चाहिए। घोल की आवश्यकता के अनुसार पानी

0: एक साथ मिला लें जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। घोल बनाते समय हाथ में दस्ताने और मुंह पर मास्क पहन लेना चाहिए। साथ ही कीटनाशक दवा प्रयोग करने वाले व्यक्ति के शरीर पर किसी भी प्रकार की खरोंच या घाव न हो, अगर हो तो पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि कीटनाशक दवाएं अधिकतर जहरीली होती हैं और हानिकारक हो सकती हैं। कीटनाशक दवा हमेशा हवा को देखते हुए प्रयोग करनी चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में कभी भी दवाओं का प्रयोग न करें। अगर हवा तीव्र गति से चल रही हो तो कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दवा का प्रयोग मौसम को देखते हुए भी करना चाहिए। यदि बादल छा रहे हों, बरसात होने की संभावना हो, उस स्थिति में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। घोल को लकड़ी की सहायता से हमेशा हिलाते रहना चाहिए जिससे घोल की सांद्रता एक समान रहे। दवा का छिड़काव करने वाले व्यक्ति को कार्य करते समय किसी भी प्रकार का धूम्रपान या खाद्य पदार्थ उपयोग में न लाएं। दवाओं के घोल में स्टिकर अवश्य मिला लें जिससे दवा फसल के विभिन्न भागों पर अधिक समय तक चिपकी रह सकती है। दवा का छिड़काव करने के लिए फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग करना चाहिए जिससे फसलों में एक साथ छिड़काव होगा, और ऐसा छिड़काव करना चाहिए कि पौधा पूरी तरह भीग जाए। यदि दानेदार दवाओं का भुरकाव कर रहे हैं वहाँ पर दवा पौधों की जड़ों की कुछ दूरी पर ही प्रयोग करनी चाहिए, नहीं तो जड़ों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही दवा प्रयोग करने से पहले भूमि में नमी होना अत्यंत आवश्यक है, और दानेदार या पाउडर वाली दवाओं का प्रयोग सुबह के समय ही करें। दवा का भुरकाव हमेशा डस्टर से करना चाहिए। हाथ से दवा का भुरकाव करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है और न ही फसलों पर समान रूप से भुरकाव हो पाता है। जहाँ पर कीटनाशक छिड़काव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पर स्प्रेयर को पूरा न भरें, हमेशा 3/4 भरना चाहिए जिससे कार्य करने में सुगमता रहे। अगर किसी भी कारण से नोजल में रुकावट आ जाती है तो फूंक मारकर कभी भी साफ न करें। दवा का छिड़काव करने के बाद कृषि यंत्र, डस्टर या स्प्रेयर को तालाब में न धोएं, क्योंकि तालाबों के पानी को पशु पीते हैं और वह पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के बाद साफ करके ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जो बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर हो। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने के एक निश्चित समय तक फसलों के उत्पादों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ दवाओं के अंश उत्पादों के माध्यम से पशुओं, मनुष्यों में चले जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अगर बाड़ी की सब्जी प्रयोग कर रहे हैं तो धोकर साफ करके ही प्रयोग करनी चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत आज आपने सुना कीटनाशक रसायनों में के प्रयोग में सावधानियां, और जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:50 और 32 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05

0: मिनट से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक कार्यक्रम दर्पण। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही देर में संकेत संस्कृत समाचार आप हमारे दिल्ली केंद्र द्वारा सुनेंगे। कृपया संस्कृत समाचार के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभा हो रही है। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और उनके आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर राष्ट्र श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। इससे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। शास्त्री जी किशोरावस्था में ही देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजघाट पर गांधी जयंती और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने लोगों को अपनी यात्रा की पहले से योजना बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्राथमिकता देने की सलाह दी है। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी देश की आवश्यकता के अनुसार सुधारों पर काम करना चाहिए। नई दिल्ली में कल संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि परीक्षा का आयोजन युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मछार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मिथ मछार की वीरता और साहस को नमन किया है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप का आयोजन 2 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच किया जाएगा। भारत अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। जापान में 20वें एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। भारत अब तक 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले जानकारी हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। प्रस्तुति होगी तुलिका शर्मा की। फिल्म संगीत का आप आनंद ले पाएंगे 7:30 पर। इसके अतिरिक्त 10:05 पर व्हाट्सएप फरमाइश के अंतर्गत दोपहर दो बजे और 2:30 पर। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे कुमार शानू के लिखे हुए और गाए हुए कुछ गीत। सुबह 9:00 होगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। सूचना और समाचारों पर आधारित इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर को आप सुन सकेंगे सुबह 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे यखलेश बघेल के द्वारा ध्रुपद धमार में राग भैरव। जिले की चिट्ठी, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। यह हमारे भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होता है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि दोपहर 1:00 होगा महिला सभा कार्यक्रम। 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। यह तीनों ही कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होंगे और ये मध्य प्रदेश केंद्र के द्वारा आप तक हम लेकर आएंगे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे प्रथम सभा के समस्त कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए जानकारी ले

6:30 पर चित्रपट संगीत के अंतर्गत, रात्रि 8:30 पर और इसके अंतर्गत इसके अतिरिक्त कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 9:45 पर भी। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुन सकेंगे शाम 6:00। सात बजकर 20 मिनट पर होगा ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसके अंतर्गत आज चर्चा के विषय होंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर चर्चाएं। इसके अतिरिक्त चर्चाओं के विषय होंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, वन्य जीवन सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर तक, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप एक वार्ता भी सुन सकेंगे जिसमें आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यक्तित्व एवं कृतित्व श्री R.C. दीक्षित के द्वारा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में। साथ ही आपको अवगत कराना चाहेंगे कि रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, इन्हीं जानकारियों के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रथम सभा और द्वितीय सभा के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही देर में प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र द्वारा आप सुन सकेंगे। कृपया कार्यक्रम अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग में जरूरी सुधारों पर जोर दिया। देश आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज विशेष ग्राम सभाएं होंगी। सोयाबीन की खरीद के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर कल 3 अक्टूबर से पंजीयन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार ने किए सभी प्रबंध। और प्रतिष्ठित KF रुस्तमजी पुरस्कारों के लिए 37 पुलिस अधिकारी और 31 कर्मचारियों को चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों की देरी भी युवाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसलिए परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ

0: यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दो दिन के लिए भोपाल आएंगे। वे कल न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे, साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे। श्री शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। इस दौरान उज्जैन में 255 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए डेयरी प्लांट का भूमि पूजन और भोपाल में फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। कार्यक्रम में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ के दुग्ध उत्पादकों को करीब 12 करोड़ रुपए की बोनस राशि भी दी जाएगी। श्री शाह भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISR भोपाल के विस्तारित अत्रि परिसर का शिलान्यास करेंगे। वे परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रदेश में आज से 8 अक्टूबर तक मद्य निषेध सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान नशा मुक्ति रैलियां, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जांच शिविरों के जरिए लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को नशा ना करेंगे, न करने देंगे की शपथ दिलाई जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जनभागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों से अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और 17 सितंबर से चल रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में हो रही गतिविधियों की जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हुआ था। श्री शास्त्री जी किशोरावस्था में ही देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए थे और वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और बाद में केंद्र सरकार में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कुपोषण एवं विभिन्न बीमारियों के कारण अपने बच्चों को खो चुके पीड़ित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की। श्री गांधी ने बच्चों की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी ली। मीडिया से चर्चा में श्री गांधी ने कहा कि बीमारी और कुपोषण के कारण कई बच्चों की मृत्यु हुई है, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कल 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार इसके लिए सभी प्रबंध कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक्स पर बताया कि भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत सोयाबीन के उपार्जन के लिए 3 अक्टूबर से ई उपार्जन पोर्टल पर किसानों के पंजीयन प्रारंभ हो रहे हैं। यह किसान पंजीयन 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पंजीयन कराने के लिए सभी ग्राम पंचायत, तहसील एवं सहकारी समितियों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक

बैंक खाते में एक रुपया भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। पिछले साल करीब 7 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था और करीब 1,476 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। इस साल 7 से 10 लाख किसानों के पंजीयन और करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीदी का अनुमान है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। यह दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिष्ठित KF रुस्तमजी पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार उन पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दस्यु उन्मूलन अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, सांप्रदायिक दंगों एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियों के नियंत्रण में असाधारण कार्य करते हुए उच्च कोटि की वीरता, साहस, नेतृत्व क्षमता तथा कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया हो। परम विशिष्ट श्रेणी के लिए ATS इकाई भोपाल के उपनिरीक्षक रामविलास हुंडा को चुना गया है। अति विशिष्ट श्रेणी में 5 एवं विशिष्ट श्रेणी में 31 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुना गया है। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कल 3 अक्टूबर से विकासखंड स्तर और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन MP माइक्रोकॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में गांधी जयंती पर नगर निगम द्वारा सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वर्णनगर तक निकाली जा रही सेवा यात्रा का आज झाबुआ जिले में आगमन होगा। सेवा संकल्प यात्राएं कल मंदसौर जिले के विभिन्न ग्रामों में पहुंची। सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा मेरा योगदान अभियान आगरमालवा जिले में भी आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर से स्वच्छता ही सेवा गतिविधि से शुरू होगा। नर्मदापुरम जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत आज से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान आयोजित किया जा रहा है और जिला चिकित्सालय श्योपुर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 और 46 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा। गांधी चर्चा के अंतर्गत आज आप सुनिए, प्रस्तुति है तुलिका शर्मा की।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 20 सितंबर 1931 को गुजराती नवजीवन में प्रकाशित बापू के लेख गुजरात की खादी के अनुवादित और संपादित अंश। यदि गुजरात की खादी को गुजरात ही इस्तेमाल नहीं करता तो और कौन करेगा? गुजरात की खादी मोटी है, टिकाऊ नहीं है और महंगी है, ये कहकर यदि गुजराती उसका बहिष्कार कर देते हैं तो फिर उसे कौन इस्तेमाल करेगा? अन्य लोग उसे क्यों इस्तेमाल करें? इसी प्रकार के बहानों के कारण धर्म नष्ट हुए हैं, देश तबाह हुए हैं और मनुष्यों का पतन हुआ है। यदि गुजरात की खादी मोटी और खुरदरी लगती है तो उसे महीन और मुलायम बनाएं। यदि वो महंगी है तो उसकी खपत बढ़ जाने पर वो अवश्य सस्ती हो जाएगी। सब लोग ये जानते हैं कि 10 वर्ष पहले गुजरात में जैसी खादी बनती थी उसकी अपेक्षा

आज वो महीन, टिकाऊ और सस्ती है। यदि खपत बढ़ जाए तो उसमें और अधिक सुधार हो सकता है, किंतु सुधार होना न होना तो गुजरातियों के हाथ की बात है। वे उसे महंगी कहकर अस्वीकार कर सकते हैं या फिर महंगी होने के बावजूद अपनी मानते हुए उसे अपनाकर उसकी किस्म में सुधार कर सकते हैं और उसे सस्ता भी बना सकते हैं। इस शुभ उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक खादी भक्त ने ये सुझाव दिया है कि प्रांतीय समिति को गुजराती खादी सप्ताह मनाना चाहिए। उस सप्ताह के निमित्त से जहाँ जहाँ गुजरात की खादी इकट्ठी हो गई हो उसे वहाँ से मंगा लिया जाए और स्वयंसेवक और स्वयंसेविकाएं घर घर फेरी लगाकर उसे बेच डालें। कुल मिलाकर गुजरात में उत्पादित खादी इतनी कम है कि यदि चाहे तो अकेला अहमदाबाद ही उसे खरीद सकता है। सप्ताह किस प्रकार मनाया जाए ये बात मेरे बताने की नहीं है। पूरी खादी इकट्ठी करके और संबंधित उत्पादन केंद्रों को पैसा चुकाकर समिति को पूरी कीमत का औसत निकाल लेना चाहिए और किसी तरह का नुकसान या घाटा उठाए बिना उसे बेच देना चाहिए। व्यापार में चीज नुकसान उठाकर भी बेची जाती है, किंतु यहाँ बात व्यापार की नहीं बल्कि देश प्रेम की है। देश प्रेम के लिए खरीदार चाहे जितना दाम दे सकता है। जिस प्रकार कोई माँ अपने कुरूप या ऐसे बच्चे को जिसके पालन पोषण पर बहुत अधिक खर्च हो रहा हो छोड़ नहीं देती बल्कि उसके कल्याण के लिए तबाह तक हो जाती है, यदि गुजरात भी वैसा ही कुछ करे तो काफ़ी होगा। गुजरात को तबाह नहीं होना पड़ेगा, शायद कुछ अधिक कीमत भर देनी पड़ेगी। खादी भक्त का दूसरा सुझाव ये है कि गुजरात के कार्यकर्ताओं को गुजरात की खादी ही इस्तेमाल करनी चाहिए। गुजरात की खादी की खपत बढ़ाने के और भी बहुत से उपाय सुझाए जा सकते हैं, किंतु वैसा करने की चाह भर होनी चाहिए। जहां चाह है वहां राह निकल ही आती है। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 20 सितंबर 1931 को गुजराती नवजीवन में प्रकाशित बापू के लेख गुजरात की खादी के अनुवादित और संपादित अंश। गांधी चर्चा का समापन करते हैं बापू के इस प्रिय गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, जिसमें आज आपने सुना तुलिका शर्मा के द्वारा प्रस्तुति थी गांधी चर्चा की। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। मुझे प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि श्रोताओं, आज है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जन्मदिवस पर आज यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। पूरे भारत में इस दिवस को बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के 3 आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। इस दिन पूरे देश में सरकारी कार्यकाल, बैंक, स्कूल बंद रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम होता है बहुत खास स्वच्छता अभियान पर, क्योंकि 2 अक्टूबर को हम स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। पूरे देश में एक अलग ही सिद्धांत और एक अलग ही पूरे देश में हम महात्मा गांधी जी को याद

करते हुए आइए कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं उनके द्वारा गाया हुआ ये गीत, उनके द्वारा उनको समर्पित ये गीत आशा भोंसले की आवाज़ में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए दे दिया, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में देश के हित में सोचा, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया और खुद साधारण रूप से रहकर दूसरों को भी अपने जीवन को आसान, सरल और सीधे शब्दों में जीना सिखाया। देश के प्रति इस समर्पित व्यक्तित्व के लिए आइए, समर्पित है हमारी ओर से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम विशेष में हम आपसे बात कर रहे हैं आज 2 अक्टूबर विशेष महात्मा गांधी के जयंती के बारे में। श्रोताओं, एक सिंपल सा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जो अपने शरीर पर को भी उतना ही ढकता था जितनी आवश्यकता हो, उन्होंने अपने देश को सर्वोपरि रखा और लोगों को समझाया कि व्यक्ति अगर साधारण जीवन भी जीना चाहे तो भी अपने देश की सेवा ही करता है। एक साधारण खान पान देश को जोड़ के रखना, लोगों में सत्य और अहिंसा के बारे में जानकारी देना और आश्रम में जीवन व्यतीत करना, हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, यह केवल और केवल एक धनी व्यक्ति, एक धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति के ही कार्य हो सकते हैं, जिन्हें ना केवल हम महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जानते हैं, बल्कि इन्हें जानते हैं बापू के नाम से, बल्कि जानते हैं इन्हें उस संत के नाम से जिन्होंने अपने जीवन में हमारे सभी देशवासियों को बहुत महत्व और एक अच्छा संदेश दिया। इनके द्वारा गरीब जन लोगों को भी जोड़ने का कार्य किया गया। इनके द्वारा ये जागरूकता लाई गई कि यदि व्यक्ति अपने मन से, वचन से, सत्य कर्म से आगे बढ़ता है तो उसके लिए हर जीवन, हर स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। हर जीवन में नई उमंग, नई तरंग, और इनके द्वारा गाए गए भजनों के द्वारा तो लोगों ने मन मोहित ही हो गया। तो आइए कार्यक्रम में, इनका कहना था कि सबसे पहले देश होता है, सबसे पहले देश के बारे में सोचा जाता है, सबसे पहले एक साथ रहने के बारे में सोचा जाता है, और हम जिस देश में रहते हैं वह तो महान है, और उस देश में वो हर धन धान्य पहले से ही उपलब्ध है अगर हम उसे इस प्यार से, इस गीत के साथ सुनते हैं तो।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अल्पविराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जिसमें आज हम इस कार्यक्रम को समर्पित कर रहे हैं 2 अक्टूबर विशेष कार्यक्रम महात्मा गांधी की जयंती पर। तो श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं गीत संगीत के माध्यम से भी कि हमारा देश सर से सर्वोपरि है, ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश को हमेशा आगे रखा। वह चाहते थे कि हमारा देश भी आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़े, उसमें जो भी कष्ट परेशानियां और चीज़ें हैं वह उनको मिटाने का एकमात्र साधन समझते थे सत्य और अहिंसा, और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रयास किए। गांधी जी के अनुसार सत्य ही ईश्वर है। उनका मानना था कि सत्य का पालन मन, वचन और कर्म तीनों से ही करना चाहिए। यदि आपका मन साफ है, यदि आपके वचन साफ है और आपका कर्म साफ है, तो आपका काम सिद्ध करने में या सिद्ध होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अहिंसा का अर्थ उनके हिसाब से किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से कभी भी कष्ट ना पहुंचाना था। वह समझते थे कि ये साधारण व्यक्ति के काम नहीं होते हैं, बल्कि ये वीरों का आभूषण मानते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना।

इसलिए उन्होंने अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का उपयोग करना भी आत्मनिर्भरता की निशानी माना। उन्होंने कहा कि यदि हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाते हैं तो इसमें भी अपने देश का ही भला है और हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे। सर्वोदय का मतलब होता है, इसका अर्थ समाज के अंतिम और सबसे गरीब व्यक्ति तक उत्थान और विकास के बारे में सोचना, यानी कि न केवल देश केवल तब आगे बढ़ता है जब वह अपने हर व्यक्ति के बारे में, चाहे वो गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो, हर व्यक्ति उस देश के में रहने वाले हर व्यक्ति के पास भोजन, कपड़ा और रहने का आवास है और वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पा रहा है, तो वही देश की सही प्रगति है। और यदि आप जो है ये चाहते हैं कि हमारा देश निरंतर प्रयास करे, तो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान होता था हमारे उन प्यारे बच्चों पर, क्योंकि वे जानते थे कि देश का भविष्य ही बच्चे होते हैं। और यदि आप अपने कर्म, वचन और सत्यता से का पालन करते हैं तो वही बच्चे आपको देखकर इंसाफ की डगर पर चलते हैं, इंसाफ करना सीखते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग।

सदियों बाद पैदा होता है एक महापुरुष और हमें दिखा जाता है रोशनी की अनगिनत राहें। आइए हम सब चलें उस मार्ग पर

0: दिखाया महात्मा गांधी ने।
1: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
2: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
1: मतलब?
2: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
3: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

अल्बम राम के पास स्वागत है श्रोताओं आपका फिल्म संगीत में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं विशेष दिन यानी कि 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती के बारे में चर्चा। गांधी जी ने भारत में को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने की मुख्य भूमिका निभाई। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ सफल संघर्ष किया, भारत लौटकर देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किए जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उनके नेतृत्व में चलाए गए। ये प्रमुख आंदोलन थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। गांधी जी के जीवन में जैसा कि हमने बताया कि 2 सबसे बड़े हथियार सत्य और अहिंसा थे। उनका मानना था कि हिंसा से कभी शांति नहीं मिल सकती। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि बिना हथियार उठाए भी देश को आगे ले जाया जा सकता है, स्वतंत्र कराया जा सकता है, और इन्हीं सत्य कर्म वचन की वजह से आगे चलकर रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशवासियों की ओर से राष्ट्रपति की उपाधि भी इन्हें दी गई। बापू न केवल देश की आज़ादी के लिए ही काम किए थे बल्कि समाज सुधार में भी गहरी रुचि ली थी उन्होंने। कई सारी कुप्रथाओं को ख़त्म किया था, कई सारे स्वदेशी वस्तुओं को उन्होंने अपनाने के लिए सलाह दी थी और स्वयं को स्वच्छ स्वतंत्र बनाए रखने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए, और इनका योगदान हम पूरे जीवन भर भी नहीं उतार सकते, नहीं भूल सकते। कार्यक्रम में आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में इनके द्वारा सबसे प्रिय भजन।

श्रोताओं, भी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे और इस आज के फिल्म संगीत में आपने सुना 2 अक्टूबर विशेष महात्मा गांधी की जयंती पर ये कार्यक्रम जो हमने समर्पित किया, और इसी कार्यक्रम में उनके प्यारे भजनों और इस फिल्म संगीत के द्वारा हम उन्हें जन्मदिवस पर पुष्प अर्पित करते हैं और उन्हें उनके कर्म योगदान को याद करते रहेंगे। इसी तरह से यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, सुबह के 8 बजने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र के द्वारा अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार हैं। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और शास्त्री जी की समाधि विजयघाट पर प्रार्थना सभाएं हो रही हैं। विदेशों में भी भारतीय मिशनों में राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि गांधी जी का जीवन और आदर्श दुनिया भर में सम्मानित हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की और सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके उपरांत श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जयंती पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती

0: राज मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सके। देश भर की 2,55,000 से अधिक ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं तैयार कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करती हैं। इन ग्राम सभाओं में आम नागरिक और स्थानीय प्रतिनिधि एक साथ बैठकर सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और अपने गांवों के विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: गुजरात में इस अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने खादी और पॉली वस्त्र के उत्पादन पर 30% विशेष बाजार प्रोत्साहन की घोषणा की है।
2: यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, वोकल फॉर लोकल और हर घर स्वदेशी के संकल्प को गति देने के उद्देश्य से लिया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रोत्साहन सहायता का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अधिकृत खादी बिक्री केंद्रों पर छूट के रूप में मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन में स्थानीय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रमुख शहरों में विशेष खादी प्रदर्शनी सह बिक्री मेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाएं आसान और तेज बनाने के लिए कई सुधार शुरू किए हैं। नई दिल्ली में प्रचालन दक्षता और कामकाज में आसानी के लिए नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुधारों पर नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने बताया कि इन बड़े बदलावों का उद्देश्य कार्य प्रवाह को डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए जवाबदेही आधारित सुशासन की ओर बढ़ना है। मंत्रालय ने बताया कि ब्यूरो ने सुरक्षा मंजूरी के तरीके को आसान बना दिया है। अब सुरक्षा मंजूरी किसी विशिष्ट वर्ग या प्रक्रिया पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि विमानन संस्थाओं की 9 पहचानी की श्रेणियों पर लागू होगी। मंत्रालय ने बताया कि ये सुधार इसलिए भी आवश्यक हैं क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। सऊदी अरब ने फ्लाई दुबई के तेल अवीब जा रहे विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के कथित प्रयास के मामले में ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को सौंप दिया है। जांचकर्ताओं के अनुसार ओमानी सह पायलट को कॉकपिट में भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर हमला किया था। इस घटना के बाद बुधवार को विमान को सऊदी अरब के तबुक शहर में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी थी। विदेश मंत्रालय भारतीय नागरिक और फ्लाई दुबई विमान के बहादुर पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। सऊदी अरब के तबुक में एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद अब उन्हें अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत ने अस्पताल में कैप्टन मच्छार से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर कैप्टन स्मित मच्छार की वीरता और साहस को सलाम किया है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRnews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और सेवा के निरंतर संकल्प से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है ऐसा ही एक उदाहरण, जिसमें इस सोच को पंबन पुल के जरिए धरातल पर उतारा गया।
4: रामेश्वरम में नया बना पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। इसका उद्घाटन पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
5: द न्यू पंबन ब्रिज टू रामेश्वरम ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन टुगेदर। ए टाउन दैट इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ 21st सेंचुरी इंजीनियरिंग वंडर। फॉर मेनी डेट

0: आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए 3000 टन से ज्यादा लोहे का इस्तेमाल किया गया था। आईआईटी मद्रास और बॉम्बे के विशेषज्ञों ने नवंबर 2024 में इसके डिजाइन की जांच की थी। इस पुल से अरब सागर का शानदार नजारा भी दिखता है। खाड़ी के ऊपर बना यह सबसे लंबा पुल 1988 तक रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क मार्ग था। पुराना पंबन पुल उन बड़े चक्रवातों से भी बच गया था जिन्होंने धनुषकोडी को नष्ट कर दिया था। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री चौहान पोंडा में एक कार्यक्रम में किसानों और आम नागरिकों से संवाद करेंगे।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गोवा में गोवा फ्रेश ब्रांड की शुरुआत करेंगे। इस पहल के तहत गोवा में उत्पादित कृषि उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाएगी। राज्य सरकार ने गोवा के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें पहचान दिलाने के उद्देश्य से गोवा फ्रेश ब्रांड विकसित किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य भर के किसानों और महिलाओं को केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। इस दौरान कृषि क्षेत्र की चुनौतियों, किसानों के कल्याण, ग्रामीण आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पंजी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास से पूरा किया जाना चाहिए। श्री पुरी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।
3: सरकार ने योजना ऐसी बनाई है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर एक नया इकोसिस्टम बना जिसके द्वारा जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहते हैं उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सहायता मिलेगी 2 करोड़ की। क्रेडिट गारंटी भी है एमएसएमई के लिए, और अगर आप महिला एंटरप्राइज है आपका तो उसकी 20 करोड़ की जगह 25 करोड़ की गारंटी होगी।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाते हैं। श्री पुतिन ने कहा कि भले ही भारत का रुख इस मामले में तटस्थ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के जरिए शीघ्र शांति स्थापित करने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। जापान में 20वें एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की तीरंदाजी रिकर्व टीम स्पर्धा में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोत की भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन और 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया पर रोमांचक जीत दर्ज की। ये भारत का एशियाई खेलों में महिला रिकर्व टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक है। इस पदक के साथ ही भारत अब तक 11 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 67 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में अगले वर्ष होने वाले क्रिकेट विश्व कप कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 2 अक्टूबर से 21 नवंबर तक खेला जाएगा। प्रतियोगिता में 14 टीमों के कुल 57 मैच खेले जाएंगे। भारत का पहला मैच 7 अक्टूबर को मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई के विमान में भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के अदम्य साहस की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने शौर्य गाथा शीर्षक से दिया है कॉकपिट में जानलेवा हमले के बावजूद नहीं टूटा हौसला, भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार की सर्वत्र सराहना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 9/11 जैसी साजिश नाकाम की। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है भारतीय पायलट स्मिथ को पूरी दुनिया ने किया सलाम। जनसत्ता के अनुसार फ्लाई दुबई विमान गिराने के प्रयास की जांच शुरू। दैनिक जागरण का शीर्षक है परीक्षा तंत्र में बदलाव जरूरी, यूपीएससी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित, सुभाष चंद्र बोस ने संस्कृत में दी थी सिविल सेवा परीक्षा। अमर उजाला के अनुसार मोदी ने कहा अब सरकार माई बाप नहीं, नागरिक देवो भव। पंजाब केसरी ने वित्त मंत्रालय का बयान दिया है वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच मजबूत बनी भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरी तिमाही में 7.3% वृद्धि का अनुमान, जीएसटी संग्रह 2,03,000 करोड़ रुपए के पार, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 7 माह के उच्च स्तर पर। लोक सत्य की सुर्खी है महानदी विवाद पर दिल्ली में बड़ा मंथन, समाधान की राह में बनी सहमति, गृह मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक।

0: राजस्थान पत्रिका ने तरंग शक्ति 2026 शीर्षक दे दिया है तेजस संग उड़ान। फ्रांसीसी मेजर जनरल बोले, याद आया मिराज 2000। जोधपुर एयरबेस में भारत और फ्रांस के एयरक्रू ने साझा किए ऑपरेशनल अनुभव। रफाल की हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया भी देखी। एशियाई खेलों पर दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ग्रीको रोमन कुश्ती में 64 साल बाद रजत पदक। कभी दूध बेचते थे पानीपत के सिवाच, आज चांदी से चमके। सेलिंग में प्रिंस और मनु ने जीता रजत। बाढ़ में पिता को खोया, अब पानी पर ही रचा इतिहास। पत्र के अनुसार हॉकी में पाकिस्तान को हरा कर भारत की नजरें गोल्ड पर। क्रिकेट में पाक से होगा फाइनल मुकाबला।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। गांधी जयंती पर देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। नागर विमानन मंत्रालय ने सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की। सऊदी अरब ने तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में हमला करने वाले ओमान के सहयोगी पायलट को संयुक्त अरब अमीरात को जांच के लिए सौंपा। बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार उपचार के लिए अबू धाबी के अस्पताल में भर्ती। भारत की स्मिथ के स्वास्थ्य पर लगातार निगरानी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन संघर्ष का स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत अच्छे विचार। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on the birth anniversary today. Special Gram Sabhas to be convened across the country on the occasion of Gandhi Jayanti. Civil Aviation Ministry initiates series of reforms to make aviation security processes simpler and quicker. Saudi Arabia hands over to UAE Omani co-pilot who made abortive attempt to crash Fly Dubai's Tel Aviv-bound plane. Brave Indian pilot Smith Machar airlifted to Abu Dhabi for treatment, India closely following his health condition. Russian President Vladimir Putin says Prime Minister Narendra Modi has very good ideas to find mutually acceptable solution for Ukraine conflict. And India bags gold medal in the women's recurve archery team event at the Asian Games in Japan. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A series of functions have been organized across the country and by Indian missions abroad. A Sarva Dharma Prarthana Sabha was organized at his Samadhi Rajghat in the national capital.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम सुनवा रहे हैं आपको कुमार शानू के गाए हुए कुछ गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू के गाए हुए कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू के गाए हुए कुछ गीत। तो आइए सुनते हैं इनके द्वारा कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत, और सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन पा रहे हैं कुमार शानू के द्वारा गाए हुए कुछ गीतों को। तो आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

गुड मॉर्निंग वाले सुनने वाले सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और हर दिन की तरह इस दिन भी कुछ उमंग और तरंग के साथ शुरुआत कर रहे होंगे अपने खुशनुमा दिन की। शुरुआत तो चूँकि बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन आप और हम अभी मिले हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बातों की शुरुआत हम करते हैं इस कार्यक्रम में आपके लिए। चूँकि ये कार्यक्रम का ध्येय है कि सूचना और समाचारों के साथ आपका मनोरंजन भी कराना है, तो पहले शुरुआत करते हैं आज के विशेष दिन से, यानी कि हम बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर है एक विशेष दिन, आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत न केवल हम 2 तारीख बल्कि कुछ दिनों पहले से भी करते हैं। और आज है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें आप और हम न केवल जानते हैं बल्कि इनकी सारी चीज़ों को, सारी बातों को भी मानते हैं। इनके द्वारा कहा गया हर शब्द हमारे देश को, हमारे देशवासियों के लिए अनमोल वचन है। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया सत्य अहिंसा का, इन्होंने हमें मार्ग दिखाया अपने कर्म, वचन और देश के प्रति जो भी हितकारी हो सके उस बात के लिए आगे रहने का। इन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हमारा भावी भविष्य, यानी कि हमारे बच्चे, जिन्हें हम जो भी शिक्षा देते हैं आज, जो हम करते हैं वही वो फॉलो करते हैं। वो भी समझते हैं कि यदि हम अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने आमजन भाईचारे की भावना को अगर रखते हैं तो हमें अपने भविष्य यानी अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने समझाया अपनी आत्मनिर्भरता के बारे में, यानी कि हमारे देश को हम तब आगे या उन्नति की ओर ले जा सकते हैं जब हम अपने देश के हर चीज़, यानी कि वो केवल एक वस्तु, पानी, जल, सफाई, स्वच्छता, हम स्वयं, भाईचारा, प्रेम ही क्यों ना हो, उन सब के प्रति जितने जागरूक रहते हैं उतने ही अपने देश के लिए हितकारी हो जाते हैं। उन्होंने ध्यान दिया उस गरीब से गरीब और उस अमीर से अमीर व्यक्ति तक देश की सारी सुविधाओं को पहुँचाने के लिए शिक्षा का, एक हर व्यक्ति जिसे वो जन जागरूकता के माध्यम से जागरूक कर सकते थे, दुनिया भर में अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान व्यक्ति को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी हर कही हुई बात पर बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि वह न केवल इस वजह से हमारे लिए प्रिय थे कि उन्होंने हमारे देश में सत्य अहिंसा के लिए जागरूकता लाई, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ना बल्कि इसलिए भी कि इस देश को स्वतंत्र करने के लिए उनका महान योगदान रहा। हम हमेशा से ये जानते हैं कि स्वतंत्रता केवल एक जन की द्वारा नहीं दिलाई गई, इसमें कई सारे हमारे वीर शहीदों ने बलिदान दिया, लेकिन फिर भी हम गांधी जी का मानना था कि हिंसा के माध्यम से हम स्वतंत्रता नहीं पा सकते थे, इसलिए अहिंसा का मार्ग सर्वोपरि माना गया। और हमने 75 सालों की इस आज़ादी के बाद ये समझा कि भाई को भाई से या भाईचारे की भावना जो है वह सत्य अहिंसा के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। और आज 2 अक्टूबर इस विशेष दिन पर हम उन्हें याद करते हैं, उनकी बोले गए वचनों को अनमोल समझते हैं और उनके वचनों पर कायम रहने का भी प्रयास करते हैं। और इसी तरह कार्यक्रम में भी हम आगे बढ़ते हैं और हमेशा इस बात को, यानी कि हर बार इस बात को इसी तरह से याद रखेंगे और अपने देश के प्रति जितना भी अच्छा और सही मार्ग हम अपना सकते हैं उसे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए अपने भविष्य को देखेंगे। तो सही मायनों में हम आज के दिन को साकार करेंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, जिसमें मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र रश्मि राहुल। और अभी हमने बात की 2 अक्टूबर विशेष यानी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के बारे में। तो ना केवल आज हम केवल इनकी ही जन्मदिन यानी कि जयंती के बारे में बात करें, बल्कि आज और भी 2 अक्टूबर के

0: राजनीतिक सफ़र की बात करें तो ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, रेल मंत्री के कार्यकाल पर भी रहे। यह एक बड़ी रेल दुर्घटना के लिए एक जिम्मेदारी भी उन्होंने ली थी, उन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया था और इन्होंने जय जवान जय किसान का एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को भी हम आज के दिन याद करते हैं, उनकी सादगी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय नेतृत्व को भी हम याद करेंगे। और कार्यक्रम में आज कई सारे विशेष दिन हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ना केवल दोस्तों हम जयंतियों के बारे में बल्कि हम बात कर रहे हैं आज अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के बारे में भी। भारत में समाज के से जातिगत भेदभाव और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाला यह विशेष सप्ताह है। इस सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जयंती से ही की जाती है, क्योंकि गांधी जी ने जीवन भर अस्पृश्यता उन्मूलन और समाज के वंचित वर्ग दलितों को समानता दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। समानता का संदेश एक सीधा सा विचार होता है कि समाज के सभी वर्गों के बीच में मानवाधिकार, गरिमा और समानता की भाव को बढ़ावा दिया जाए। इन्होंने कानूनी रूप से यानी कि लोगों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की अस्पृश्यता को देखने को हमें मिलता है वहां कानूनी रूप से कड़ी कार्रवाई करते हुए लोगों को यह संदेश दिया जाए कि इस तरह की भावना का त्यागना ही हमारे देश के लिए सर्वोपरि है। इस तरह के भेदभाव पर यदि कोई नए कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा तो उसमें भी आपके सहयोग की भावना ज़रूरी होती है। जागरूकता कार्यक्रम में सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संगोष्ठियां, जागरूकता रैलियां भी आयोजित की जाती हैं। कई स्थानों पर सामाजिक एकता को बढ़ावे के लिए सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया जाता है जहाँ सभी जाति वर्ग के लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन करवाया जाता है। अगर हम संवैधानिक रूप से बात करें तो इसके अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। इसका किसी भी रूप से आचरण पूरी तरह से प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध होता है, इसलिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए और किसी को भेदभाव रंग के आधार पर अलग या दूर रखना हमारे देश के बंटवारे के रूप में ही हमने से लेंगे, इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की गतिविधियों में बिल्कुल भी भाग नहीं लेना चाहिए और बल्कि अपने मन में लोगों के प्रति अच्छा विचार, अच्छी सोच, इसी को आगे बढ़ाना ही तो हमारे देश को के भविष्य को सुरक्षित करना है। और अपने भविष्य को सुरक्षित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ की हर चीज़ पर समान रूप से सभी का अधिकार होता है। तो आइए कार्यक्रम को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उस विराम के बाद एक बार फिर से हाजिर होते हैं कार्यक्रम में।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अल्प विराम के बाद स्वागत करते हैं श्रोताओं आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जिसमें मैं आपके साथ हूँ, आपके रेडियो मित्र रश्मि राहुल। तो हमने कहा था कि आज ना केवल एक विशेष दिन बल्कि कई सारे विशेष दिनों को हम एक साथ मना रहे हैं। तो अभी हमने बात की हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के बारे में और साथ ही हमने बात की अस्पृश्यता विरोधी सप्ताह के बारे में, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर यानी कि आज से लेकर 8 अक्टूबर तक दो अक्टूबर से इसकी शुरुआत होती है, 8 अक्टूबर तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। और साथ ही अब हम बात करते हैं

आज के विशेष दिन वन्य जीव सप्ताह के बारे में, जिसकी शुरुआत भी 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मानी जाती है। और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य जो होता है, वन्य जीवों के बारे में जानकारी के साथ साथ उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इस बारे में भी। वन्य जीवन में हमारे पेड़ पौधे हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हम कई सारे, चूँकि भारत एक हरियाली वाला देश है जिसमें कई सारी औषधियाँ, पेड़ पौधे, प्राकृतिक कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, तो इस देश के वन्य जीवों, पेड़ पौधों और प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा भी हमारा संरक्षण भी हमारे हमारा जो है एक प्रति लोगों के प्रति जागरूकता फैलाना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि यह सप्ताह जो है इसीलिए मनाया जाता है कि हम अक्सर करके देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमने पहले शायद देखी होंगी वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, या फिर हमारे द्वारा ध्यान ना दिए जाने की वजह से भी विलुप्त हो जाती हैं। कई सारी औषधि पौधे, कई सारी जिनकी जानकारियां हमें नहीं होती हैं, तो इस सप्ताह के अंतर्गत हम उन्हीं की इस तरह के प्रयोगशालाएं या फिर इस तरह की रैलियां या फिर इस तरह की कुछ झांकियां लगाई जाती हैं, जहां पर कई सारी औषधि चीज़ों की जानकारी, औषधि पौधों की जानकारी और ये कौन सा पौधा किस चीज़ के लिए किस अवस्था में कार्य प्रयोग किया जा सकता है, इस चीज़ की जानकारी दी जाती है। साथ ही हमारे वन्य जीव, जैसा कि हम लोग गर्मियों में इतने जागरूक हो जाते हैं कि हमें छतों पर पेड़ पौधे लगाना चाहिए, छोटी चिड़िया का घर बनाना चाहिए, दाने डालना चाहिए, पानी रखना चाहिए, जिससे कि जो हमारे आसपास का वातावरण है बहुत खुशनुमा रहे। क्योंकि जहाँ पर हरियाली होती है वहाँ पर अक्सर करके छोटे छोटे पक्षी आते हैं और उनका ख्याल रखने के लिए हम जितने जागरूक होते हैं, लेकिन अगर वो छोटी नन्ही चिड़िया आपके आसपास नहीं हो तो कितना साधारण सिंपल सा लगेगा। तो ऐसे में हम न केवल उनके बारे में, एक उड़ता हुआ पक्षी जिसका आवाज़ हम अपने घर में बनाना चाहते हैं, ना केवल उनके बारे में बल्कि हमारे आसपास जो भी हरियाली है वहाँ पर और भी पशु पक्षी जानवर दिखाई देते हैं, उन सभी के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे घरों के आसपास कई सारी गाय घूमती हुई दिखती हैं आपको, जंगलों में जब हम सफारी के लिए जाते हैं तो कई सारे जानवरों को देखते हैं, क्या उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हमको सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो बिल्कुल सोचना चाहिए, यानी कि हमें इस सप्ताह के अंतर्गत हम जितना अच्छा हो सके, बल्कि सप्ताह को हमें केवल 2 से 8 अक्टूबर तक ही क्यों मनाएं, हम इस सप्ताह को अपने मन में हमेशा जागरूकता रखें कि हमें जब भी किसी इस तरह के जीव या पालतू हो या फिर सड़क पर मिले उनको किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, कभी जल्दबाजी में उन्हें हार्म ना करें। यदि हमारे पास पर्याप्त से ज़्यादा कुछ खाना या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनकी मदद हो सकती है तो ऐसा प्रयास करें कि उनको दे पाएँ। अगर हम बात करें सप्ताह की, तो पहली बार यह वर्ष 1957 में मनाया गया था। इस सप्ताह के दौरान स्कूलों और वन विभाग द्वारा चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, वॉकथॉन, वन्य जीवन संरक्षण से जुड़ी कई अभियान चलाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत केवल और केवल एक ही उद्देश्य होता है, जिससे कि हम कई सारे वन्य जीवों और अपनी प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। तो आइए कार्यक्रम में हम भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक विराम के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर।

0: शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: तो एक बार फिर से अल्पविराम के बाद हम हाजिर हैं आपके कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जिसमें मैं आपके साथ हूँ, आपकी मित्र रेडियो मित्र रश्मि राहुल। तो आइए, जैसा कि आपने संदेश में सुना कि हमें स्वच्छ रहना है, मन को स्वच्छ रखना है और आसपास भी हमें स्वच्छता बनाए रखनी है, उसकी शुरुआत भी आज ही की गई थी दोस्तों, यानी कि हम बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, जो कि 2 अक्टूबर 2014 से नई दिल्ली से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को समर्पित है। इसका मुख्य मंत्र है कि ना गंदगी करेंगे और ना गंदगी करने देंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य हमें जो समझ आता है या आपको समझना चाहिए, वो यह है कि हम जिस जगह पर रहते हैं अक्सर करके वहाँ पर सभी तरह की चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं, सभी तरह की चीज़ों को हम उपभोग करते हैं। तो ऐसे में हमारे द्वारा की गई उपभोग की वस्तुओं को यदि हम यूं ही यहाँ वहाँ डाल देते हैं तो हमारा देश यानी हमारे आसपास की जगह जो है गंदी लगती है। तो ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भी जागरूकता के कई सारे रैलियाँ, कई सारे नुक्कड़ नाटक, कई सारे ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि लोगों को यह जागरूकता आए कि हमारे आसपास के जो है पर्यावरण को साफ़ रखना भी हमें स्वस्थ रखने जैसा है। यानी कि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो हम भी स्वस्थ हैं, और यदि हम अपने आसपास गंदगी जमा होने दे रहे हैं या गंदगी स्वयं कर रहे हैं और उसका निपटान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप को हम बीमार कर रहे हैं, यानी कि अपने स्वास्थ्य को लेकर हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें बिल्कुल भी जो है जागरूकता रखनी चाहिए, बिल्कुल जागरूकता रखनी चाहिए कि हमें अपने आसपास की जगहों पर अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए कि किस तरह से हम अपने गली मोहल्ले परिवार के लोगों को साफ रखने के लिए समझा सकते हैं। और इस तरह के ना केवल हमें खुद ही बल्कि हमारे पास तो कई सारी सरकारी सुविधाएं, जैसे कि आजकल हर जगह पर नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन के लिए गाड़ियां आती हैं, उसमें ही कचरा डालना है, कहीं पर एकत्रित नहीं करना है, क्योंकि अनावश्यक रूप से वहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ पर पशु आएंगे, वहाँ पर बहुत सारे मक्खियाँ होंगी, मच्छर होंगे, और उसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ फैलेंगी। तो ऐसे में हम आप एकजुट होकर इस विषय पर बहुत अच्छे से संकल्प ले सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, और ना केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी यदि आप कुछ पहल कर सकते हैं तो यह अपने देश के हित में ही है। यानी कि जो लोग ग्रामीण शहरों में, आपने देखा होगा, हालांकि सरकार द्वारा कई सारे प्रबंधन किए गए इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, ग्रामीण शहरों में जहाँ पर खुले में शौच होता है वहाँ पर पूरी व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में सरकार द्वारा कई सारे नए कदम उठाए गए हैं। ठोस और तरल कचरे को अलग अलग प्रबंधन भी किया गया है। आपने देखा होगा कि कई जगह पर ग्रीन, ब्लू, येलो, हर तरह के अलग अलग कलर के जो है डस्टबिन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि आप सही कचरा सही उसमें डालें, और ना केवल कचरे को एकत्रित करना बल्कि उस कचरे को एकत्र करके और खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए भी कई जगह इस तरह की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आप उस कचरे का यदि निपटान सही सही कलर्स के बॉक्स में करते हैं तो ऐसे में आपको उसके द्वारा बनाई जाने वाली खाद भी सही समय पर और सही तरीके से उपलब्ध हो सकती है, जो कि हमारे द्वारा लगाए गए पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। यानी कि आपने सफाई के साथ साथ पर्यावरण पर भी देखा जाए तो पर्यावरण के लिए भी बहुत सहयोगपूर्ण कार्य करेंगे यदि आप इस तरह से इस दिन को मनाने का प्रयास करते हैं। साफ़ सफाई रखने से गंदा पानी और कचरा जमा नहीं होता है तो कई सारी बीमारियां तो दूर होती हैं। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस जन आंदोलन में जुड़ जाए, और जुड़ने के साथ साथ ना केवल स्वयं भी बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें। तो कितना ज़रूरी है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा, ना केवल हमारा जागरूक होना बल्कि हम लोगों को भी अगर जागरूक करते हैं तो यह कितना ज़रूरी कार्य है हमारे देश की उन्नति के लिए। तो श्रोता, अभी हम बात कर रहे थे स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी शुरुआत आज के दिन हुई थी। तो आज के दिन ही शुरुआत हुई है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की, जिसे हम 2 अक्टूबर के रूप में ही मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया था, उस दिन की शुरुआत उस

इस दिन की शुरुआत आज ही की गई थी। इसका उद्देश्य था शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से दुनिया भर में अहिंसा का संदेश का प्रसार करना। क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक वर्ड अहिंसा जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम के साथ जुड़ा सा हुआ है। जब भी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, हम सत्य अहिंसा की बात करते हैं। और इसी बात को याद रखते हुए कि सभी देशवासियों के प्रति भाईचारा, सभी देशवासियों के प्रति जागरूकता, सभी का एक साथ होना, सभी के प्रति जो है शिक्षा का भाव, शिक्षा को उन्नति के रूप में ले जाना, सभी को एक साथ रखना, ये हमारा इनका उद्देश्य रहा। किसी भी कार्य को हम शांति से अहिंसा के बिना भी कर सकते हैं। इस दिन का विशेष महत्व या विशेष जो संकल्प है यही है इसका। इसके अलावा यह दिन संघर्षों का समाधान के लिए अहिंसक प्रतिरोध, सहिष्णुता और शांति के मार्ग को अपनाने की भी प्रेरणा देता है। यानी कि हम चाहें तो कोई भी कार्य जो कि हमें कितना भी कठिन क्यों ना लगे, उस कार्य को हम शांतिपूर्वक भी कर सकते हैं। और वह कार्य ऐसा नहीं है कि हिंसा करने से कार्य जल्दी या हो ही सकता है, पूर्ण हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यदि हम किसी काम को करने के लिए यदि शांति का मार्ग अपनाते हैं और उस कार्य पर विचार करके कार्य करते हैं, तो ऐसे में आप उस कार्य को जल्दी और समय से बिना किसी परेशानी के भी पूर्ण कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम भी इस कार्यक्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारी चर्चाओं के बाद अब आपके गीत और मनोरंजन का भी प्रबंध करते हैं। और आइए कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये

बिल्कुल दोस्तों, इस गीत की तरह अब हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, लेकिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम स्वतंत्रता और आज़ादी का सही मायने में उपभोग कर सकेंगे। इसलिए आप और हम इस तरह से मिलते रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत, और इसी तरह से हम अच्छी अच्छी बातों पर चर्चाएं करते रहे। लेकिन आज आप इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि कल भी हम आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। और घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा, तो सभी श्रोताओं को रश्मि राहुल का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे सूचना और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह की 9:30 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे यक्लेश बघेल के द्वारा ध्रुपद धमार पर मैं राग भैरव। पखावत संगत की है जगत नारायण शर्मा ने। तो आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना यक्लेश बघेल के द्वारा ध्रुपद धमार में राग भैरव। पखावा संगत की थी जगत नारायण शर्मा ने। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है, कुछ ही देर में जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र द्वारा प्रसारित की जाएगी। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: چینل اب 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں ہے. اردو شیری ہے, اردو دل نشی ہے. اب آپ کے گھر آپ کو تفریح مہیا کرانے بین الاقوامی سطح پر نئے انداز میں, نرالے انداز میں حاضر خدمت ہے. بس بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف رما دما اس دور کی ضرورت اور وقت کے تقاضے کو پورا کرتا ہوا آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل.
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बैतूल जिले की चिट्ठी. आलेख मयंक भार्गव, वाचन स्वर नवनीत चौबे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. बैतूल जिले में भी गांधी जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आज से मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत हुई है. विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन जिले में किया जा रहा है. सेवा संकल्प अभियान के तहत 17 सितम्बर को जिले भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, जन भागीदारी और जन कल्याण की भावना को जन जन तक पहुँचाया गया. केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों की सहभागिता से जिले में 9,77,000 से अधिक दीपों का प्रज्वलन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया. जिला मुख्यालय के साथ सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों को दीपों से रोशन किया गया. लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में शाम 7 बजे 1,00,000 दीपों का भव्य प्रज्वलन किया गया. कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य मंगल सिंह ध्रुवे, नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बाई बारस्कर सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे. सेवा संकल्प अभियान के तहत मुलताई स्थित माँ ताप्ती उद्गम स्थल पर लगभग 50,000 दीप प्रज्वलित किए गए. जिले भर में 9,77,000 से अधिक दीपों की रोशनी ने सेवा, जनभागीदारी और विकसित भारत के संकल्प का संदेश दिया. शासकीय सांदीपनी कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार में शनिवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे. श्री गणेशोत्सव पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास और धूमधाम से जिले में मनाया गया. गणेशोत्सव पर्व पर जिले के शहरी सहित ग्रामीण इलाकों में धार्मिक मंडलों एवं श्रद्धालुओं ने श्री गणेश जी की स्थापना कर 12 दिनों तक विधि विधान से पूजा अर्चना की. 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर श्री गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया. बैतूल के वीरांगना रानी दुर्गावती कॉलेज में 30 सितंबर को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सघन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार हुरमाडे ने बताया कि कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई, जिसमें एड्स और नशा मुक्ति जैसे गंभीर विषय पर प्रस्तुति दी गई. इस अवसर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत संचालित मिशन एड्स सुरक्षा कार्यक्रम की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों, रणनीतिक प्राथमिकताओं तथा जिला स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में अद्यतन जानकारी एवं जिले में एड्स नियंत्रण अंतर्गत गतिविधियों की स्क्रीनिंग, टीबी से सह संक्रमण, वायरल लोड मॉनिटरिंग, हाई रिस्क ग्रुप आदि पर चर्चा की गई. जिले में वर्ष 2026-27 के रबी सिंचाई कार्यक्रम के निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय जल उपयोगिता समिति की बैठक 1 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष बैतूल में आयोजित की गई. बैठक में मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार उपस्थित रहे. 30 सितंबर तक बैतूल जिले में औसत 731 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल इस अवधि तक 979 मिलीमीटर बारिश हुई थी. इस तरह इस साल गत वर्ष की अपेक्षा करीब 27% कम बारिश हुई है. कम बारिश से नदी नालों और जल स्रोतों में पर्याप्त जल भराव नहीं होने से रबी सीजन फसलों की सिंचाई का संकट बढ़ने की स्थिति नजर आ रही है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार जिले में 21 से 27 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह मनाया गया. अंतर्राष्ट्रीय बधिरता सप्ताह मनाने का उद्देश्य बधिर व्यक्तियों एवं श्रवण बाधित व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के प्रति जन जागरूकता को रेखांकित करना है. 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित सेवा से संकल्प अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर एवं रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इस क्रम में 28 सितंबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मासोद में स्वास्थ्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. सीहोर में आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में बैतूल जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण पदक प्राप्त किए. प्रतियोगिता में बैतूल जिले के 11 खिलाड़ियों ने 17 एवं 19 वर्ष आयु वर्ग में कुश्ती एवं वेटलिफ्टिंग में सहभागिता की. वेटलिफ्टिंग में बैतूल ओवरऑल स्टेट चैंपियन रहा। इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवणे ने खिलाड़ियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा उन्हें सम्मानित किया। जिला शिक्षा अधिकारी पूनम वरकड़े ने बताया कि सीहोर में आयोजित राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में बैतूल जिले के खिलाड़ियों ने कुश्ती एवं वेटलिफ्टिंग में सहभागिता की थी। बैतूल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
2: अभी आप सुन रहे थे बैतूल जिले की चिट्ठी। आलेख था मयंक भार्गव का, वाचन स्वर नवनीत चौबे का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
3: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आई सुनते हैं के और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में ये पहला गीत, और साथ ही बता दें कि इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बरकरण शर्मा, अंजलि चित्रेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद, उमेश धनेश्वरी वर्मा ने। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश कुमार, मुकेश कुमार साहू। इस गीत को सुनना चाहते हैं बरबट बकाल बुलढावा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे। इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुशर्रत जहां नाज, तलअत जहां नाज, फरहत जहां नाज, रिफअत जहां नाज, नहजत जहां नाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमिन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर ने। लोहेड़ी मुहावा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी रिया रेनू और रोनिका यादव ने। बुलढावा इस्लामापुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन, अनमोल शोभाताई, श्लोक अनमोल, दीपावली, इन सभी ने हमें लिख भेजा है। अगले हमारे श्रोता हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवानी, दुरवंश सिंह जोड़ा। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म साया का ये गीत, के और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए
0: तो बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम

0: आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
1: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये अगला गीत, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस गीत को सुनने की हमें फरमाइश की है। साकरा सोमनी जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ नारायण लाल साहू कुलवंतनी देवी साहू डी विजेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार इन सभी ने साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं। राजकुमार डोढ़ी प्रमोद कुमार डोढ़ी पुष्पेंद्र कुमार डोढ़ी पांडु चंदन उषा चंदन रानी चंदन प्रतीक्षा चंदन अभिषेक सार्थक प्रथमेश संतोष पांडुरंगन कुम्हार गली कोलगांव से लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मारवी प्रमिला मारवी नेहा मारवी पुष्पराज मारवी ऋषभ मारवी। इस गीत के अगले फरमाइश करता है मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज वर्मा आयुषी वर्मा रमेश चंद्र शेखा मूसा भाईजान और राजकुमार बड़ौना सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश और इन सभी ने इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है। उनकी पसंद का गीत है फिल्म बचना ए हसीनों से के और शिल्पा राव की आवाज़ों में। साथ ही बता दें कि इस गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है नई बस्ती गंज डुंडवारा से यासीन हाशमी नाजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी तैमूर हाशमी और कलीम अंसारी की ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज फरदीन सुहाना अरजान अबान सभी अब्बासी परिवार के द्वारा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित राय हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल गीतिका कोरवाल भानु प्रकाश इन सभी ने गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल स्वाति जायसवाल देव कुमार जायसवाल आर्य कुमार जायसवाल जामिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल ने। तो आइए इनकी फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म बचना है हसीनों का ये गीत।

श्रोताओं में आप सुन रहे हैं वार्सा फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, शादी में ज़रूर आना। इस गीत को हमने लिया है इस फिल्म से और आवाज़ है अरिजीत सिंह की। और साथ ही बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की गई है बीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, अंजलि, बाला साहेब, जयश्री, राम निवास, धनंजय, पीवी घटे, इन सभी घटे परिवार की तरफ से। साथ ही इसी गीत के लिए हमें लिखा है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातुनी अंसारी, सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा, दानिश अंसारी ने, गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य ने, सारिमपुर बक्सर से राज एच डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, इकबाल मस्तान ने, पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, आलौकिक चंसोलिया, इन सभी ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहर, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहर, कुणाल मेहरा, इन सभी ने। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, इन सभी ने। पिंकी लवली मिट्टू, आरती अरोड़ा, इन सभी ने पंजाब से। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाड़ो कोयल, पापा नानक चंद मल्होत्रा, शिवा जी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का, इन सभी ने। तो इन सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं फिल्म शादी में ज़रूर आना से लिया हुआ ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी फरमाइश किए हुए गीतों को लेकर आए हैं। तो आइए कार्यक्रम में सुनवाते हैं आपको अगला गीत, और साथ ही बताते हैं कि इस गीत की हमें फरमाइश की है हमारे श्रोताओं ने। अगला गीत जिसे हमने लिया है विक्की डोनर से, सुकन्या पंडित की आवाज़ में। वो इस गीत को पसंद किया है बुलढावा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली ने। इसी गीत के लिए हमारे अगले फरमाइशकर्ता हैं धनौरा बिटाली से, तहसील नांदुरा, जिला बुलढावा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल। दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने। इसी गीत के लिए अगले फरमाइशकर्ता मलकापुर महाराष्ट्र से सतदन धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नेनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, इन सभी ने। साथ ही इसी गीत के लिए डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू, इन सभी ने पटेल नगर महलोट से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमिता आहूजा ने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया ने। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव ने। छत्तीसगढ़ से दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति वर्मा, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा ने। तो इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म विक्की डोनर का ये गीत।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: और प्रोग्राम के बाद स्वागत है श्रोताओं आपका। व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम में, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारे अगले गीत को जिसे हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से, इस गीत को आतिफ असलाम और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज़ों में, और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि व्हाट्सएप फरमाइश पर हमें इस गीत के लिए फरमाइश की है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह रोहतांग से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने इसी गीत के लिए हमें लिंक भेजा है। वंसीपुरा लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कहना, श्रीमती मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं मन भावन नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई, ये सभी जो है इसी गीत को फरमाइश कर रहे हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई से ही। अगले फरमाइश करता है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, कीर्ति भारती, मेघा राशि, माधुरी किरण, अनुराग मोहन, इसी गीत के लिए चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीर धाम।

छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमार साहू, श्रीमती इंद्राणी साहू, माया साहू। इसी गीत के लिए अगले फरमाइश करता है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। मलकापुरा महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुहरकर। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर प्रीत, गुरप्रीत, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, इन सभी ने इस गीत के लिए फरमाइश की है। तो आइए इन सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का।

श्रोताओं, वही आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म वीर जारा से, जिसे हमने लिया है उदित नारायण की आवाज़ में। और साथ ही बताना चाहेंगे कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है शिवाजी नगर मड़ाली देशमुख से राजेश खोरखेड़े, शिव सागर खोरखेड़े, इंदिराताई खोरखेड़े, छकूताई खोरखेड़े ने। खांडवी बुढ़ावा से दिवाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, थिरोरी रामधाड़े, सुनैना पवन भोंडे, तनुज पवन भोंडे ने। इसी गीत के लिए सहावा रोड गुंज डुडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, शमसुल कमर राही ने। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश करता है हमारे सुमान मुनाड़ी, समीर मुनाड़ी, सलमा मुनाड़ी, मुमताज मुनाड़ी, दिलसाद मुनाड़ी, नशीर मुनाड़ी, जाकिर मुनाड़ी और सुमैया मुनाड़ी, पुल चिचौली, तालुका पंढरपुर से, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टीडी मल्होत्रा, रितिका मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल कुमार मल्होत्रा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और विठल बजाज ने इसी गीत की फरमाइश की है। तो आइए इन सभी की गीत की फरमाइश को हम पूरा करते हैं और इन्हें सुनवाते हैं फिल्म वीर जारा का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं वार्ड्स ऑफ फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो आइए कार्यक्रम में अब सुनते हैं हमारा अगला गीत, जिसे हमने लिया है पुष्पा द राइज इस फिल्म से। और साथ ही बता दें कि इस गीत के लिए हमें फरमाइश की है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश वर्मा, गौरव वर्मा और गरिमा वर्मा ने। इसी गीत के लिए हमारे अगले श्रोता हैं नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन ने, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा और रॉबिन राणा ने, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन, दीक्षा कूस इन सभी ने, यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, विनोद खड़से ने, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, बब्बल मल्होत्रा, एसएम जावेद, नजमुल होदा ने। इसी गीत के लिए अगले श्रोता है पश्चिम सिंह भूम, चाईबासा झारखंड से शिव गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली गोप इन सभी ने। अगली फरमाइश करता है हमारे सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजानिया इन सभी ने, जिला सिरसा हरियाणा से। राजधानी जयपुर से नीलू मेघ यानी नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार ने। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा ने। पटियाला रोड गुंज डुंडवारा से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, बेबी अरीबा हबीबा ने। गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बच खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल इन सभी ने इस गीत के लिए फरमाइश की है। तो आइए इनकी फरमाइश को पूरा करते हैं और आपको सुनवाते हैं पुष्पा द राइज ये गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। इसी अंतिम गीत के साथ ही व्हाट्सएप फरमाइश का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:58 होने को है। कुछ ही देर में इस घंटे की खास खबरें आप सुनेंगे। कृपया अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्यमंत्री ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश में आज से मद्य निषेध सप्ताह शुरू हो रहा है और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा सेवा मेरा योगदान अभियान में पहले दिन स्वच्छता कर्मियों के सम्मान के साथ प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के लिए संकल्प लिया जा रहा है। प्रदेश में कल से सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कल विकास खंड स्तर और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविरों में सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में बड़ी आदर्श गौशालाओं के संचालन की तरह भोपाल में इस मॉडल पर आदर्श गौशाला स्थापित करने पर बल दिया है। भोपाल स्थित रविंद्र भवन में एक राम रहीम भजन संध्या के अंतर्गत युवा बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी एवं दल के भजनों का कार्यक्रम होगा। भोपाल के

0: ट्रक लूट और दोहरे हत्याकांड के 8 साल पुराने मामले में अदालत ने 2 आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और आज जापान के आईची नागोया में हो रहे एशियाई खेलों में भारत ने रिकर्व मिक्स्ड टीम तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। कुमकुम मोहद और धीरज बोम्मा देवरा की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में चीन से 3-5 से हारने के बाद सिल्वर मेडल हासिल किया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। और हमारे जो श्रोता हैं हम उनको अपना एक बार नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। हमारे जो नए श्रोता हैं उन्होंने नंबर नोट कर लिया, और जो हमारे पुराने श्रोता हैं हम उनसे कहना चाहेंगे कि यदि आपका फ़ोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया नए श्रोताओं को मौका दीजिए और नए श्रोताओं की बातचीत भी सुनिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारे पहले श्रोता कौन हैं। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
3: मैं अरविंद अग्रवाल बोल रहा हूँ।
2: अरविंद अग्रवाल साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
3: जी श्रीनगर जिला महोबा।
2: श्रीनगर जिला महोबा से, क्या बात है। चलिए ठीक है, तो अब ये बताइए कि जिस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है उस कार्यक्रम का नाम है फोन करेगी सुने
3: जी,
2: और आपको कौन कौन से कार्यक्रम इसके अलावा अच्छे लगते हैं वो भी बता दीजिए।
3: और कोई नहीं सुनता हूँ मैं जावेद भाई, यही बार सुनता हूँ फोन इन।
2: अच्छा फोन इन कार्यक्रम,
3: अब पहले लाइव आता था जब।
2: अच्छा चलिए ठीक है, तो मगर सुनते हैं। देखिए सब चीजों का एक तरीका होता है और बदलाव जो है प्रकृति का नियम है, है ना। तो वो सारी चीजें बदलाव होते रहेंगे, होते रहे हैं और होते रहे थे। कौन सा गाना सुनेंगे?
3: दलाल का सुना दीजिए।
2: अच्छा दलाल फिल्म का गाना सुनेंगे। कौन सा दलाल फिल्म का गाना?
3: मर गए फोकट में हम कोई तो हम खोली जाएगा।
2: अरे क्या बात है, तो मतलब
3: ये हमारे महोबा के प्रसिद्ध लोग गीत है जी।
2: हाँ हाँ
3: हाँ बोलते हैं से।
2: हाँ हाँ
3: की तर्ज पर है जी गाना।
2: हाँ बहुत अच्छा गाना है, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज है और बपी लहरी जी का संगीत है। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गाना, जरूर सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है, और हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि गाना पहले से आप सिलेक्ट करके रखिएगा कि आपको कौन सा गाना सुनना है। अब हम देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ महाराज जी, मैं बोल रहा हूँ मूलचंद कुशवाहा, जिला महोबा यूपी।
0: क्या बात है, आज महोबा यूपी से ही दूसरा कॉल आया है।
1: ये अलाउदल की नगरी है महोबा हमारी, और मैं आपसे बताऊं पहले जिंदगी में पहली पहल जोड़ा हूं आपसे आज।
0: अच्छा,
1: उम्र मेरी 63 साल।
0: क्या बात है,
1: और मैं पहले पहल आपसे बात हुई है मेरी। और मैं यहाँ राजस्थान में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हम।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: मेहंदीपुर बालाजी के पास में है, यही बगल में।
0: तो अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि पहली बार जो बात हुई है ये लगातार बात होती रहेगी।
1: अच्छा, मैं रेडियो बजाता रहा लेकिन बात आज तक कभी नहीं की मैंने आपसे। और मेरे साथ ही एक फूलचंद जी मणकारी वाले एमपी से, तो उन्होंने प्रेरणा दी इस बात की, तो मुझे शौक हुए, तो मैंने कहा मैं ही

0: लगाऊं महाराज जी के पास।
1: अरे बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया। तो अब
0: हाँ
1: ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे।
0: गाना महाराज जी, मैं देखो फिल्म मेलम का नाम तो जानते हैं, मुझे गीत देवी गीत सुनना है, बहुत अच्छा से अच्छा, जिसमें मैं नाच लूं थोड़ी, फिरकी
1: अच्छा
0: लगा दूं।

0: हाँ जी, सब नाम बताइए आप महाराज जी अपना।
1: मेरा नाम जावेद खान है।
0: अच्छा अच्छा जावेद खान जी महाराज जी, और आपको सत्तर नमन।
1: नमन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कॉल किया। ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आवाज मोहम्मद रफी और आशा भोसले की है, आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: जी सर जी, आपकी बात मांगीलाल चंदेल जी से हो रही है, ग्राम सनोतिया जिला गुना से।
0: अब वाह क्या बात है। तो मांगीलाल जी, अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने पिछली बार कितने दिन पहले फोन लगाया था?
1: जी 10 दिन होगा सर, आप देख लो भले ही।
0: अच्छा 10 दिन हो गए ना, फिर ठीक है, कोई
1: ऐसा नहीं लगाता हूँ मैं, बिल्कुल जो आपने बताया है ना वो 10 दिन के ऊपर ही ऊपर लगाता हूँ, अंदर नहीं लगाया। अपनी बात वही थी 10 दिन पहले।
0: वाह क्या बात है मांगीलाल जी। अच्छा ये बताइए कि देखिए मौसम में कुछ बदलाव आ गया?
1: हाँ बदलाव है ना सर जी, बदल नहीं है, धूप है लेकिन।
0: हाँ लेकिन आपके बोलने में भी थोड़ा सा अंतर आ गया तो मौसम के साथ आप भी बदल जाते
1: हैं। बोलने में वो अच्छा। बात नहीं रही, नरमी नहीं है।
0: हाँ वही मैं कह रहा था कि आज आपकी बातों में नरमी नहीं है। चलिए
1: अच्छा मैं बताऊँ आप सर, क्या इस समय धूप पड़ रही भयंकर और काम कर रहे हैं हम खेतों में, मक्का की कटाई चल रही है।
0: वाह क्या बात है क्या बात है, इसका भी एक अलग मजा है है ना। तो अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो शहर के जो चाहते हैं कि वो खेतों में जाकर इस तरह के काम करें।
1: हाँ,
0: देखें
1: इच्छा रहती है शहर के हाँ, लोगों को इच्छा रहती है कि हम भी खेतों में जाकर काम करें।
0: बिल्कुल, और गांव के लोगों की इच्छा होती है कि शहर में आके कुछ करें,
1: हम शहर में चले जाएं।
0: हाँ हाँ कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है, तो उनमें ख्वाहिशों में होता है। अच्छा चलिए ये बातें हो गई बहुत सारी, आप ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: सर जी पहले मैं तो आपको धन्यवाद दे दूं एक बात की कि आप जब आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आप हमारे पत्र पढ़ते हैं तो इतना अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है खान जी बिल्कुल हमारे आंगन में बैठी है और बातें कर रहे हैं, हमारा नाम बोल रहे हैं।
0: तो अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे?
1: उनका नाम तो रहेगा आंखें, और गाने के बोल रहेंगे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि ये मोहब्बत कभी कभी क्यों मिलती है, बाद में बार बार क्यों नहीं मिलती
1: अब इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।
0: अच्छा कुछ नहीं कह रहे, तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर। धन्यवाद।

0: कभी कभी।
1: कार्यक्रम फोन करेंगे सुनने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
2: जी, परमलाल साहू बोल रहा हूँ सर।
1: साहू जी, क्या हाल चाल?
2: नेगई सिलोनी, जिला कटनी से बोल रहा सर।
1: कटनी से बोल रहे हैं,
2: और वो जिला एक्चुअली में हमारे जबलपुर करीब है सर।
1: अच्छा, जबलपुर के पास से बोल रहे हैं आप।
2: जी जी।
1: तो अब यह है कि मौसम बहुत ज्यादा बदल गया है, हमारे भोपाल का भी बदल गया है, आपके वहाँ का भी बदल गया होगा।
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी भी अच्छा गिरा सर इस वर्ष।
1: हाँ, तो पानी क्या है, प्रकृति अपने आप सारी चीजों को मैनेज कर लेती है, कभी ज्यादा कभी कम
2: जी,
1: करती
2: जी।
1: जरूर है। तो चलिए, देखिए आपने कॉल किया है तो आपके मन में कोई सा गाना होगा जिसे आपके सुनने की फरमाइश होगी।
2: जी जी, फिल्म का नाम है सर घायल।
1: घायल, क्या बात है,
2: घायल।
1: हाँ,
2: और
1: हाँ।
2: गीत के बोले सर, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा।
1: तो सोचना क्या, आशा भोसले और शबीर कुमार की आवाज है, और कुमार सानू की भी आवाज इसमें, इंदीवर का लिखा हुआ।
2: जावेद सर जी बोल रहे हैं?
1: जी जी, जावेद बात कर रहा हूँ
2: सर। सर बहुत बहुत नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
2: और सर मैं अपने एक प्रिय मित्र का नाम लेना चाहूंगा।
1: आप एक नहीं दो का नाम ले सकते हैं।
2: जी जी सर, हमारे रमेश राय अन्नू जी हैं सिलोंडी से, और हमारे एक आकाश नामदेव जी हैं। जी
1: तो चलिए, आप सुनिएगा घायल फिल्म का ये गाना, सोचना क्या, आशा भोसले शबीर।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने। इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है, कौन बोल रहे हैं?
1: सर जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर जी, दुलेर सिंह यादव बोल रहा हूँ, ग्राम बापचा, जिला आगरमालवा से।
0: आगरमालवा से?
1: हाँ सर।
0: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है सर, आप कैसे हो?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ
1: सर, अभी काम में लग रहे थे, निपट चुका है हमारा सभी काम सोयाबीन का।
0: अच्छा,
1: और मौसम बिल्कुल साफ है सर, गर्मी पड़ रही है अब तो इस समय।
0: हाँ गर्मी पड़ रही है, गर्मी आने भी जरूरी है ना।
1: हाँ सर,
0: तो हमेशा बरसात तो नहीं रह सकती और ना हमेशा सर्दी रह सकती है, प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से सारी चीजें होती रहेंगी।
1: सर इस साल हमारी तरफ बारिश बहुत कम हुई है सर, इस साल।
0: अच्छा,
1: पश्चिम मध्य प्रदेश में जो बारिश का पूरा इलाका है, मतलब बहुत कम बारिश हुई सर।
0: अच्छा ऐसा क्यों हुआ?
1: क्या पता सर, क्या मालूम,
0: हाँ
1: मेरे ख्याल से कम बारिश है मतलब।
0: अच्छा, देखिए इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे हमारे देश में बहुत अच्छी बरसात हुई है।
1: हाँ हुई नहीं सर, पूरब की साइड ज्यादा हुई सर बारिश।
0: हाँ
1: ये हमारे आगर से इंदौर उज्जैन की सारी पट्टी, मंदसौर नीमच, इधर सब दूर कम बारिश है सर।
0: हाँ होता है कभी कभी, अगली बार अच्छी हो
1: हाँ
0: जाएगी, मालिक से यही उम्मीद है।
1: हाँ
0: तो अब ये बताइए कि जिस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया है, उस कार्यक्रम का नाम है कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: तो सर, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का ही देश प्रदेश का और टाइटल सॉन्ग सुनना सुना दो सर।
0: देश परदेश का? हाँ ये गाना हम आपको सुनवा देते हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कार्यक्रम फोन करेगी सुने। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्ते सर, ग्राम बारा तहसील खनीराना जिला सीपी मध्य प्रदेश हरदयाल जाटव।
0: जाटव जी क्या हालचाल है?
1: सब बढ़िया सर, मौसम बढ़िया है, धूप निकली है।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है कि पूछने से पहले ही बता देना, ये भी बड़ी एक कला है।
1: आप जावेद खान बोल रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज़ बड़ी सुंदर लगती है, आपका स्टाइल ही बोलने का कहने का बड़ा अंदाज अलग है सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोगों की नजरें इनायत है जिसकी वजह से आपको अच्छा लगता।
1: फरमाइश, आपका बोलने का अंदाज अच्छा लगता हमें। हाँ जी,
0: तो अच्छा ये बताइए, धूप निकली हुई है, आप धूप में खड़े हैं कि साया में खड़े हैं?
1: नहीं, एकदम माने उसके रुख के नीचे खड़े हैं, छाया में।
0: छाया में खड़े हुए हैं, तो आपके मन में कैसा आया सवाल कि आप साय में खड़े खड़े कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हम सुनना चाहते हैं सर अजूबा फिल्म का।
0: अजूबा, अमिताभ बच्चन वाली अजूबा?
1: हाँ जी, हाँ जी
0: जी। अजूबा फिल्म का कौन सा गाना?
1: तू सोने की गुड़िया में माटी का गुड्डा।
0: हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं, कुछ और भी कहना चाहते हैं?
1: सर ये कहना चाहता हूँ कि आजकल ये प्रोग्राम आते हैं बहुत अच्छे आते हैं और सुनने में भी अच्छा लगता है।
0: हाँ हाँ,
1: और फोन ही बहुत टाइम से लगता है, बहुत बेस्ट कॉल जाती है, तो बड़ी दिन में दो दिन से ट्राई कर रहा हूँ मैं।
0: अच्छा देखिए, होता क्या है

0: नंबर एक है, श्रोता बहुत सारे हैं
1: हाँ जी, हाँ
0: और
1: जी,
0: टाइम भी जो है, समय भी वो है, एक निश्चित समय है। तो होता है अक्सर कि हम जिस वक्त कॉल कर रहे होते हैं, या तो किसी से
1: हाँ
0: बात
1: जी,
0: चल रही होती है या गाना चल रहा होता है, कुछ ना कुछ होता
1: हाँ
0: है।
1: जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसी तरह कॉल करते रहिएगा और सुनवाते हैं हम आपको फिल्म
1: नमस्ते
0: अजूबा का
1: सर,
0: ये गाना।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: कार्यक्रम फोन
1: हेलो,
0: करें गीत सुने में स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: नमस्कार सर जी, मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहेटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: क्या बात है, और सुनाइए।
1: बस स्वास्थ्य है, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मतलब बाकी चलता रहता है, बाकी सब
0: हाँ
1: ठीक है। और दुकान पर बैठा बैठा मैंने याद आया, आज फोन लगाता हूँ तो लग भी गया है।
0: वाह क्या बात है। देखिए, जब मन से कोई चीज़ की चाह होती है ना, तो अपने आप वो चीज़ हमारे पास में आ जाती है। एक शाहरुख खान का डायलॉग है, शायद किस फिल्म का है मुझे नहीं मालूम, उसमें है ना, शिद्दत से अगर
1: जी
0: हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो कुदरत भी उसको मिलवाने से के रास्ते तलाशती है, ऐसा ही कुछ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, मगर वो डायलॉग बहुत अच्छा है इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। तो अब देखिए, क्या आपने कॉल किया, आपका कॉल लग भी गया और आपके मन में एक गाना होगा जिसको आप सुनना चाहते होंगे।
1: जी फिल्म का नाम है दुश्मन।
0: देखिए, दुश्मन, इतनी दुश्मनी क्या बात है कि आपने गाना भी चुना तो दुश्मन फिल्म का
1: तूने देखा मैंने देखा उसने देखा सबने देखा, क्या देखा क्या देखा, कि दुश्मन दुश्मन दोस्तों से भी प्यारा है।
0: चुना। वाह क्या बात है, मतलब किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज वाला ये गाना आनंद बख्शी और का लिखा हुआ है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। तो सुनवाते हैं हम आपको ये गाना, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: जी
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।

ये था कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, प्रस्तुत करता थे जावेद खान। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।

आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह इस सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजयघाट स्थित उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रदेश में आज से मद्य निषेध सप्ताह शुरू हो रहा है और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय यात्रा पर भोपाल आएंगे और कल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंटकर जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया। प्रदेश में शुरू सेवा मेरा योगदान अभियान में पहले दिन आज स्वच्छता कर्मियों के सम्मान के साथ प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आज भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी अवलोकन जन जागरूकता कार्यशाला, मध्य प्रदेश के वन्य जीव विषय पर स्टोन पेंटिंग, वुडन टाइल पेंटिंग, कहानी प्रतियोगिता एवं खजाने की खोज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में एके राम रहीम भजन संध्या अंतर्गत युवा बुंदेली लोक गायक सुनील लोधी एवं साथियों के भजनों का कार्यक्रम होगा। और जापान में एशियाई खेलों में आज 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10वीं बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 12 स्वर्ण, 24 रजत और 34 कांस्य पदक सहित पदक तालिका में 70 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए पहली फरमाइश है तिवर्ता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जोगेंद्र गजेंद्र मरकाम, जयंती मरकाम और ये साथी हैं शुभ, सुमित, भाई पूरन लाल विश्वकर्मा, विजय मिश्रा, परसराम विश्वकर्मा,

ये साथी हमारे ग्राम बिछवा राजमार्ग से, और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा, इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नूरी का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर, नितिन मुकेश के, गीतकार हैं जहां निसार अख्तर और संगीत है खय्याम का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है इंदौर सपना संगीता रोड से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन तानिया और बक्सर से श्रद्धा नंदार्य अभय नंदार्य परमानंद पंकज प्रमोद रोहित मोहित आर्य और ये साथी हैं कवाई सालपुरा बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव हिमलता श्रीवास्तव हिमानी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव ग्राम सनोतिया जिला गुना से मांगीलाल चंदेल अरविंद अशोक राजकुमार हिमांशु इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मुकद्दर का सिकंदर इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार की गीतकार है अनजान और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका से प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सरमति पंचोलिया, और ये साथी हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जय विजय, वीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी, मीनू राज श्रीमाली। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है छलिया फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है मुकेश की, गीतकार है कमर जलालाबादी और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और ये अगली फरमाइश है, भेजी है धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदर्श डेरे, किरण डेरे, प्रज्वल अनुत डेरे, और बुरहानपुर से मुशरफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक परवेज और रोज़मीन तैमूर तड़वी, और रीना मुशर्रफ, रोजूबाई, सनी बाबू, परु तड़वी, और गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, अमरावती महाराष्ट्र से करमुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, सायमा खान, मुस्ताबा खान, अफिया खान, राउफ भाई शहीद, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है आखिर क्यों, इस फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर की और अमित कुमार की, गीतकार है इंदीवर और संगीत है राजेश रोशन का।

और आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश है गोपाल नगर बुरहानपुर से, संजय सोनवड़े, किशोर सोनवड़े, यमुना नथुजी सोनवड़े, प्रियंका नंदनी सोनवड़े, और इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी कामले, पारस तपस्या, करिश्मा कामले, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म पुकार का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति साथियों की, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है ए आर रहमान का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति भाग 1।

मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी, लेकिन उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़ थी। धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है, इसको वो चरितार्थ करती थी। इसलिए गोदावरी दिल पर हजार जबर करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों को व्यवहार में लाती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय

0: अपनी परवशता पर दुखी होता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियां पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। वो सोचती थी,
1: मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत संसार में शायद कोई नहीं हो। मैं अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती।
2: शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वो कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वो पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती कि वो यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई है। होली का दिन था, 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियाँ लगाने की तैयारियाँ होने लगीं। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी ये समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी।
1: एक वो है जो यो खुश खुश आज़ादी के नशे में मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तीलियों को कैसे तोड़ दूँ?
0: उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीजें विदेशी थी, स्वदेशी का एक सूत भी न था। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और यही चीजें यहां उसके हृदय में संचित ग्लानि की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दें ताकि उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा,
3: अरे जरा इन सिरफिरों को तो देखो, कपड़े जला रहे हैं। ये पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? अरे किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों को ना कल आई है ना आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं है।
1: तुम भी तो हिंदुस्तानी हो।
3: हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ मैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा रीति नीति कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का ताना दे। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदें? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता नहीं होना चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहां जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता ना तो सभी को जहन्नुम रसीद कर देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता इन्हें।
1: अरे तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरे जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए ये लज्जा की बात नहीं है कि वो अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे?
3: अपने भाई? अरे मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता हूँ।
1: आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वो इन्हीं की जेब से तो आता है।
3: मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वो मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। अरे क्या आध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब ये मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती तो ये कैसे मुमकिन है कि ये इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो? इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा।
1: तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगा। अरे बीमार होते हो तो क्यों दौड़े दौड़े वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
3: बेशक करता है, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना ऐसे काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता।
1: तो क्या यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए?
3: नहीं, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अरे इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं।
2: सहसा होली जली, आग की शाखाएं आसमान से बातें करने लगी। मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए

आकाश में देवताओं से गले मिलने जा रही है। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए वो दृश्य ही असह्य था। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खिंडी बजाकर गा रहा था, वतन की देख ये तकदीर कब बदलती है।

0: बदलती है।
1: वो खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा,
2: ओ बच्चे रुकना।
3: अंधा बच्चा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे मगर अंधे बच्चे को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही ना था। पैसे अभी दो चार मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती, पर वहां एक ही पैसा था, वो भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था, किसी दुकानदार ने ना लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वो जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही, तभी उसने बच्चे को बुलाया और पैसा दे दिया।
4: माता जी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया।
2: दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता?
4: क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता।
2: ले इस पैसे का चबेना लेकर खा लेना।
4: खा लूंगा माता जी, भगवान आपको खुशी रखे, अब जाता हूँ।
1: दूसरे दिन प्रातःकाल काम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूर धारण करके विलायती सिगरेट मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वो सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर ना हुआ। खुद भी तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर राजी नहीं हुए और यहाँ तक कि गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत नहीं हुए। गोदावरी स्वाभिमानी थी, इसलिए उसने मिस्टर सेठ से कभी कोई चीज़ न मांगने की कसम खा ली। क्रोध और गिलानी ने उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा,
2: जब ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो फिर मैं क्यों इनके इशारे पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की नौकरानी बनी रहूं? मैंने इनके हाथ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उसकी सजा ये खुद झेलेंगे, उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का इख्तियार ये है कि ये अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ें। मुझे क्या गरज है कि उसमें इनका सहयोग करूं? जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अरे ये नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वो नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे अपशब्द कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं। उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। अरे सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजों को न खरीदो? इनसे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निषेध नहीं करती, फिर भी ये महाशय सुर्ख रू बनने की फिक्र में सरकार से भी दो अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं।
5: वो कल फ्लावर शो देखने चलोगी?
2: नहीं।
5: अरे बहुत अच्छा तमाशा है।
2: मैं गांधी जी के जल

0: से मैं जा रही हूँ।
1: मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वो इतने बदहवास ना होते। आंखें फाड़ कर बोले,
2: तुम गांधी के जलसे में जाओगी?
0: हाँ जरूर जाऊंगी।
2: मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ।
0: देखिए, अगर आप मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं।
2: नतीजा बुरा होगा।
0: मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तुम कोई ईश्वर नहीं हो।
3: मिस्टर सेठ खूब गर्म हुए, बहुत उल्टा सीधा कहा, धमकी दी और रात में भी पलंग पर मुंह फेर कर लेट रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय उन्होंने गोदावरी से कुछ नहीं कहा।
1: गोदावरी जिस समय गांधी जी के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग दो दो चार चार आना ही दे रहे थे, वहां ऐसा धनवान था ही कौन। उसने अपनी जेब टटोली तो एक रुपया निकला। उसने समझा यही काफी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आए तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे उसने पैसा दिया था ना जाने किधर से आ गया और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कौतूहल हो रहा था कि अंधे बच्चे ने क्या दिया, कहीं एकाध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना सास के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे बच्चे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा। वतन

0: कब बदलती।
1: मित्रों देखिए, ये वो पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के 1,000 रुपए से कम नहीं है। शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह नहीं मालूम होता। हमारे यहाँ क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं? या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण ये अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए वो गा रहा है,
0: वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है।
1: इस पीड़ित हृदय में देश के लिए कितनी तमन्ना है।
2: सभापति जी, अंधे बच्चे द्वारा दिया पैसा उठाकर सभा में उपस्थित जन समूह से पूछते हैं,
1: आप में से कौन इस रत्न को खरीद सकता है?
3: गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या ये वही तो पैसा नहीं है जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ खाया कि नहीं? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से रह गया। ये वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी। कांपते हुए स्वर में बोली,
4: अब मुझे आप ये पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपए दूंगी।
1: एक बहन इस पैसे के 5 रुपए दे रही है, 5।
5: 5 रुपए?
3: 10 रुपए।
6: मेरी तरफ से 20 रुपए।
2: गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो, यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके? गोदावरी के मन में इस स्पर्धा का भाव जाग उठा। चाहे कुछ हो जाए, इसके हाथ में यह पैसा न जाए। समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार को मोड़ ले लिया।
4: 40 रुपए?
7: 50 रुपए?
4: 50 रुपए?
3: हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हो, अब आप ही हमारी लाज रखिए।
4: 100 रुपए?
7: 120 रुपए?
4: 120 रुपए? अरे क्या बात है।
3: लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर ज्यों ही गोदावरी के मुंह से निकला,
4: 150।
3: चारों तरफ तालियां पड़ने लगीं। ऐसा लगा मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हों।
7: 200 रुपए?
4: 200 रुपए?
7: भारत माता की, भारत माता की।
2: फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी कुशल समझी।
7: भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम,
8: वंदे मातरम, वंदे
3: मातरम। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी।
7: भारत माता की, भारत माता की।
2: जब लोगों को मालूम हुआ कि ये देवी मिस्टर सेठ की बीवी हैं, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुठ्ठियां बांध ली, दांत पीसे, होंठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर पर कदम रखते ही उन्होंने चिंगारों भरी आंखों से देखते हुए कहा,
9: अरे सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए दिए क्यों?
4: इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ।
5: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है।
4: बिल्कुल गलत, तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना इख्तियार है उतना मुझको भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब न रहेगा।
5: गोदावरी!
3: मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि वो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले,
5: मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है। जानती हो तुम्हारी इस उद्दंडता का क्या नतीजा होगा? अरे मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बताओ बताओ क्या जवाब दूंगा? जब ये जाहिर है कि आजादी चाहने वाले सरकार से दुश्मनी कर रहे हैं तो उनकी मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है।
4: अरे तुमने तो नहीं की आजादी के मत वालों की मदद।
5: अरे पर तुमने तो की है।
4: तो इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे?
5: सुनो, चोरी की बात और है, ये बात और है।
4: तो फिर क्या गांधी जी के हाथ मजबूत करना चोरी या डाके से भी बुरा है?
5: हाँ हाँ, सरकारी नौकर के लिए ये चोरी या डाके से कहीं बुरा है।
4: मैंने ये नहीं समझा था।
5: अगर तुमने ये नहीं समझा था तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम था। रोज अखबारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो। यदि एक आजादी चाहने वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। आजादी चाहने वाली पार्टी के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम भी यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती, इसलिए हजारों चोरियां डाके और खून रोज होते रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता और न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को किसी मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है तो फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एडीओ तक का जोर लगा देते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं है, चोर सरकार पर चोट नहीं करता, मगर आजादी चाहने वाली पार्टी सरकार के इख्तियार पर हमला करती है, इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने इख्तियार से काम लेती है। ये तो प्रकृति का नियम है।
2: मिस्टर सेठ आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे, जाने आज वहां क्या हाल हो। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से आकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कि कई तलवारें सिर पर लटक रही हैं। साहब की मोटरसाइकिल की आवाज सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज वो अपने कमरे में बैठे रहते थे, जब साहब आकर बैठ जाते तब आधा घंटे बाद फाइलें लेकर पहुंचते थे। आज वो बरामदे में खड़े थे, साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया मगर साहब ने मुंह फेर लिया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो शेर साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जा रही थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब जी हुई कुर्सी पर बैठे, सेठ ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी। यकायक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज कर बोले,
9: हे सेठ, हे दूर रहो, तुम दगाबाज आदमी है
5: जी,
9: सुना नहीं, तुम दगाबाज आदमी है।
5: ये आपका इल्जाम गलत है, मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में न होगा।
9: फॉरगेट यू ब्लडी, तुम नमक हराम आदमी है।
5: आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं साहब।
9: क्या? तुम शैतान आदमी है।
5: आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं साहब, मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है।
9: शट अप, चुप रहो यू ब्लडी। तुमको सरकार 500 रुपया इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से आजादी चाहने वाली पार्टी का चंदा दिलवाए है। तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता।
5: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब, मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मैंने मिस फ्रैंक का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहां से लौटा तो तब मुझे ये खबर मिली।
9: Shut up! I will kill you! तुम हमको बेवकूफ बनाता है।
3: ये बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ बनाए। वो जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ बनाए? उनके लिए वह असह था। रूल उठाकर दौड़ा, लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूं वो हर तरह की खुशामत किया करते थे, लेकिन ये अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा चांटा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे इस प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी फिर हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था कि इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वो अपने इस साहस पर बहुत प्रसन्न थे।
5: इसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। अरे मेम यारों के लिए घूमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझ पर शेर बन गया था। अब दौड़ेगा दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर नहीं छोड़ेगा। ये सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो गई, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा। उससे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज है। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है, मगर अंग्रेजों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी का बुखार चल जाएगा। न्याय की किसी से आशा नहीं, अब यहां से निकल जाने में ही कुशल है।
2: उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त।
3: दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा,
4: आज जल्दी कैसे आ गए?
5: अरे जिस बात पर लगी थी वो हो गई। अब

0: अब रो सिर पर हाथ रख के।
1: बात क्या हुई, कुछ कहो भी तो।
0: बात क्या हुई? अरे बात क्या हुई, उसने आंखें दिखा दी, मैंने चांटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया।
1: अरे तो इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी?
0: और क्या, सिर के बाल नचवाता। तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ता।
1: खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आज से तुम भी गांधी जी के साथ शरीक हो जाओ।
0: तुम लजाओगी तो नहीं, ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हूँ।
1: लजाऊ क्यों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियां कट गई।
0: अरे आखिर कुछ सोचा है, काम कैसे चलेगा?
1: हाँ जी सब सोच लिया है, सब सोच लिया है, मैं चलाकर दिखा दूंगी। हाँ मैं जो कुछ कहूँ वो तुम किए जाना बस। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी ना, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं किया करती थी, तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे पहनती थी, महल में रखते महल में रहती, झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती, उसी तरह तुम भी रहना जी, जो काम करने को कहूँ वही करना, फिर देखूँ कैसे काम नहीं चलता। देखिए बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है जी, जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे और आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
2: सेठ जी उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े।
3: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से में मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति भाग एक। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
4: आज देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लिया और राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट स्थित उनकी समाधि स्थल पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश भर में आज से मद्य निषेध सप्ताह शुरू हो रहा है और विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। सेवा मेरा योगदान अभियान में पहले दिन आज स्वच्छता कर्मियों के सम्मान के साथ प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दो दिवसीय यात्रा पर भोपाल आएंगे और कल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट कर जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि में वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया। सोयाबीन की खरीदी इस साल भी भावांतर योजना में होगी। किसान ई उपार्जन पोर्टल पर कल से 17 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। भोपाल स्थित रविन्द्र भवन में बुंदेली लोकगायक सुनील लोधी और दल का भजनों का कार्यक्रम होगा। और जापान में एशियाई खेलों में आज 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए अब सुनते हैं महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

किसी भी व्यक्ति के विचार ही सब कुछ हैं। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इसी सुविचार के साथ महिला सभा कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को प्रतिभा चतुर्वेदी का सा स्नेह नमस्कार। बहनों, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसका एकमात्र रास्ता शांति ही है। ये कथन है महात्मा गांधी का। उन्होंने इस कथन को न सिर्फ कहा बल्कि अपने

जीवन में चरितार्थ करके भी दिखाया। महात्मा गांधी जी वो नाम है जो ना सिर्फ स्वदेश में बल्कि पूरे विश्व में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे अपने देश से जब लोग विदेश जाते हैं तो अपने परिचय में ये जरूर बताते हैं कि हम महात्मा गांधी जी के देश से आए हैं। बहनों, आज का दिन भारतीय इतिहास में अमर है, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में माता पुतलीबाई और पिता करमचंद गांधी के घर मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। राजकोट और भावनगर में स्कूली पढ़ाई के बाद वे बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए सन 1888 में लंदन गए। सन 1893 में गांधी जी वकालत करने दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी ने श्वेत शासित दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष का शानदार नेतृत्व किया। उन्हें महात्मा की उपाधि 1914 में दक्षिण अफ्रीका में दी गई। 1915 में स्वदेश लौटने पर समाज सुधारक के रूप में छुआछूत और अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया। अंततः प्रेम, शांति और पारस्परिक सामंजस्य के अपने संदेश को हिंदू मुस्लिम सद्भाव के लिए समर्पित कर दिया।

करो या मरो का नारा दिया। उनकी तीन यात्राओं ने गांधी जी को जनता से जोड़ा। वो थी भारत यात्रा। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर गांधी जी ने भारत का दौरा किया ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव प्राप्त कर सकें। दूसरी थी चंपारण यात्रा और तीसरी थी दांडी यात्रा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एकजुट कर सन 1920 में असहयोग आंदोलन, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी। आखिर 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रणेता थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का दिन महात्मा गांधी की शिक्षाओं को याद करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन ने लाखों भारतीयों को उनकी विचारधारा की ओर आकर्षित किया, जिसे बाद में गांधीवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने स्वयं कहा कि मैं शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मुझे किसी भी कीमत पर वो शांति नहीं चाहिए जो कब्र में मिलती है। यही वो तत्व है जो गांधी जी को शांति प्रिय व्यक्ति के रूप में परिभाषित करने के लिए उपयुक्त है। गांधी जी की अहिंसा की रणनीति ने व्यक्तियों को बर्बरता के रास्ते के बिना अवसर के लिए लड़ने का सामाजिक दृष्टिकोण दिया। इसलिए आज के दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और याद किया जाता है। महात्मा गांधी ने दुनिया को संदेश दिया कि प्रेम सत्य अहिंसा से भी जीता जा सकता है। महात्मा गांधी अमर थे, अमर हैं और अमर रहेंगे। भारत माता के सपूत और ऐसी महान विभूति को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। और चलिए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में बापू की अमर कहानी फिल्म से ये गीत। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था हुस्नलाल भगतराम ने। और अब रुक करते हैं साहित्य की ओर। बहनों, महात्मा गांधी वो शख्सियत हैं, उन पर जितना लिखा गया शायद ही दूसरा कोई हो जिनकी अच्छाइयों, उसूलों और आदर्शों पर रचनाकारों ने अपनी कलम चलाई। चलिए सुनते हैं मालती श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ।
1: बापू के चरणों में मेरी ये पंक्तियां समर्पित हैं। जय

0: अभी आपने मालती श्रीवास्तव से उनका काव्य पाठ सुना। बहनों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। बहनों, जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का साया सिर से उठ गया। आगे उनका पालन पोषण नाना के घर पर हुआ। बचपन में उन्हें सब नन्हे कहकर पुकारते थे। उच्च विद्यालयीन शिक्षा के लिए उन्हें चाचा के पास पहुंचा दिया गया। बहनों, बड़े होने के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री देश की आजादी के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई छोड़ देने का निर्णय लिया। लाल बहादुर शास्त्री जी राष्ट्रीय संस्थानों में से एक वाराणसी की काशी विद्यापीठ में शामिल हुए। यहाँ वे महान विद्वान एवं देश के राष्ट्रवादियों से प्रभावित हुए। विद्यापीठ द्वारा उन्हें प्रदत्त स्नातक की डिग्री का नाम शास्त्री था, जो उनके नाम के साथ जुड़ गया। बहनों, सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा की। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हुए। कुल 7 वर्षों तक देश की आजादी के लिए ब्रिटिश जेलों में रहे। देश की आजादी के बाद 1946 में सरकार का गठन हुआ। तब उन्हें गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। 1951 में वे दिल्ली आ गए। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। अपने मंत्रालय के कामकाज के दौरान भी वे कांग्रेस पार्टी से संबंधित मामलों को देखते रहे। 1952 से 1957 एवं 1962 के आम चुनावों में पार्टी की निर्णायक एवं जबरदस्त सफलता में उनकी सांगठनिक प्रतिभा एवं चीजों को नजदीक से परखने की उनकी अद्भुत क्षमता का बड़ा योगदान रहा। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, विनम्रता, दृढ़ता, सहिष्णुता, दूरदर्शी एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी ने लोगों की भावनाओं को समझा। लाल बहादुर शास्त्री जी महात्मा गांधी की राजनीतिक शिक्षाओं से बेहद प्रभावित थे। एक बार उन्होंने गांधी जी के लहजे में कहा, मेहनत प्रार्थना के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। ऐसी महान विभूति की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो देश की महान विभूतियों को समर्पित है।
1: आज है

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में परिवार फिल्म से ये गीत। गुलशन बाबरा की रचना को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। महात्मा गांधी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी ज्यादा जरूरी है। बापू का मानना था कि यदि हम आजादी पालें लेकिन अपने आसपास गंदगी रखें तो उस आज़ादी का कोई मोल नहीं है। स्वच्छता की शुरुआत हर व्यक्ति को खुद से करनी चाहिए। महात्मा गांधी स्वच्छता को केवल काम नहीं बल्कि एक संस्कार और आदत मानते थे जिसे जीवन में ढालना जरूरी है। बापू के अनुसार जो व्यक्ति आंतरिक रूप से पवित्र है वह बाहरी गंदगी के साथ नहीं रह सकता। इसलिए बहनों, घर के अंदर की स्वच्छता के साथ साथ घर के बाहर साफ स्वच्छ रखना भी जरूरी है। बहनों का अधिकांश किचन में गुजरता है, इसलिए घर के अन्य स्थानों कमरों की तरह किचन या रसोई घर को भी साफ स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। बहनों, किचन का कोई भी सामान छूने या काम शुरू करने के पहले हाथों को अच्छी तरह अवश्य धोएं। भोजन पकाने के बाद किचन की स्लैब पर फैले सामान को हटाकर माइक्रोफाइबर या सूती कपड़े से साफ करें जिससे पानी और हल्दी तेल ना रहे और सभी सामानों को व्यवस्थित रखें। बहनों, भोजन पकाने के बाद गैस चूल्हा हल्का ठंडा होने पर डिश वॉश के घोल से पोंछ लें ताकि चिकनाई अच्छी तरह साफ हो जाए। बहनों, सिंक में रात भर के लिए जूठे बर्तन ना छोड़ें, उन्हें तुरंत साफ करके रखें और हर इस्तेमाल के बाद सिंक को पानी से धोकर साफ स्वच्छ रखें। गीले और सूखे कचरे के डिब्बे को रोजाना खाली करें और धोकर साफ रखें ताकि कीड़े और बदबू ना आए। बहनों, एग्जॉस्ट फैन और चिमनी पर जमी चिकनाई को नियमित रूप से साफ करें। सप्ताह में एक बार फ्रिज अंदर से साफ करें। साथ ही बहनों, किचन में उपयोग होने वाले कपड़े और टॉवल को नियमित रूप से बदलें और समय समय पर गर्म पानी में धोकर इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाएं। भोजन व पीने का पानी हमेशा ढककर रखें और पीने का पानी घड़े से निकालने के लिए लंबी डंडी वाले बर्तन का उपयोग करें। बहनों, हम साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बापू ने कहा है, असली धन स्वास्थ्य है, सोने चांदी के टुकड़े नहीं। बहनों, धर्म जाति भेदभाव भूलकर सभी आपस में मिलजुल कर प्रेम भाईचारे से रहें। हर धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्र धर्म सर्वोपरि हो, इंसानियत जिंदा रहे। ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बहनों, देश में अमन चैन और शांति रहे, इसी कामना के साथ अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, और अब समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है। इसमें आप पहले सुनेंगे नवल किशोर तिवारी के स्वर में भजन।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। लीजिए आप सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है। इसमें पहले सुनिए सोनाली जलोटा के स्वर में गीत।

इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

लगे रहो मुन्ना भाई इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का।

पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत अभी आपने सुना, महेंद्र कपूर मनहर दास के स्वर में गीतकार थे, गीतकार थे

0: आनंद मठ फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी और उनके सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के विचारों को याद किया। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी का जीवन आज भी शांति, सेवा और मानवता की प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गांधी नेहरू कक्ष में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया। इस दौरान उनके सत्य, अहिंसा, सादगी और राष्ट्र सेवा के आदर्शों को याद किया गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई विमान की घटना के बाद घायल पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दरअसल दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में कोपायलट ने कैप्टन मछार पर चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद उन्होंने विमान को सुरक्षित संभाला और यात्रियों की मदद से हमलावर पर काबू पाया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे। वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली गौपालक दीदियों को भी सम्मानित करेंगे। श्री शाह डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु

0: हारमोनिका वादन को बढ़ावा देना और संगीत प्रेमियों को मंच देना है। भोपाल में गांधी जयंती और स्वच्छ भारत दिवस पर फिट इंडिया फ्रीडम रन और प्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य क्षेत्रीय केंद्र की ओर से हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने दौड़ के साथ सार्वजनिक जगहों की सफाई की। कार्यक्रम में फिटनेस, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साई के क्षेत्रीय निदेशक गौरव रावत ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज से श्रद्धालुओं को रोजाना मुफ्त प्रसाद बांटा जा रहा है। मंदिर के इतिहास में पहली बार आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। दर्शन के बाद दो निकास द्वारों पर बने काउंटर से भक्तों को चने, चिरौंजी और रेवड़ी का प्रसाद मिल रहा है। प्रदेश में आज से मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत हो रही है। गांधी जयंती के मौके पर 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। एशियन गेम्स में पदक जीतकर लौटे प्रदेश के निशानेबाज आशीष चौकसे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर से खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में मुलाकात की। दोनों खिलाड़ियों ने शूटिंग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं। मंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में कुल 8 पदक हासिल किए हैं। खिलाड़ियों के लिए जल्द भव्य सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में मानसून की विदाई जल्द होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर तक मानसून पूरी तरह विदा हो सकता है। आगर मालवा में कल हुई जिला स्तरीय बैठक में कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने जिले के 372 गांवों में हर घर नल से जल प्रदाय के कार्यों की समीक्षा की। शिवपुरी में महिला और बाल विकास परियोजना पिछोर के अंतर्गत सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कार्रवाई की है। झाबुआ में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी और जिला प्रबंध समिति तथा राज्य शाखा के प्रतिनिधि का निर्वाचन 14 अक्टूबर को होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस, कनाडा, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मौसम विज्ञान ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 12 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या बढ़कर 72 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। कैप्टन मच्छार ने प्रधानमंत्री को अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि उस घटना के दौरान उन्हें किस बात से साहस मिला। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश उनकी कुशलता के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्मिथ के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि देश गर्व से कह सकता है कि भारतीय वे नहीं हैं जो जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं।
3: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
2: बातचीत के दौरान भावुक कैप्टन स्मिथ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके सबसे बड़े आदर्श हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री का फोन आने पर अपनी खुशी और गर्व का अनुभव किया।
3: मैं
4: उस मोमेंट में सर मैं अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा था, बट एक ऐसा मोमेंट था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि अगर मैंने कुछ

0: नीचे गिरा हुआ था तब मुझे एहसास हो रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे जा रहा है और बाकी सबकी भी उतनी उसमें रोल था बट जान के
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग फ्रांस कनाडा सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में संबंधित देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस के विदेश व्यापार और आर्थिक मामलों के मंत्री निकोलस फोर्सिए के साथ बैठक में श्री गोयल ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने तथा विमान निर्माण UPI के एकीकरण और संयुक्त नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ बैठक में दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर जारी वार्ता की समीक्षा की और इसे जल्द आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मार्च में इस समझौते की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना है। सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी के साथ बैठक में श्री गोयल ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अनुपम मिश्र।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए श्री मोदी के विचार बहुत अच्छे हैं। एक सार्वजनिक मंच पर राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से की गई सराहना से प्रत्येक भारतीय को अपार गर्व महसूस होता है। श्री शाह ने कहा कि महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर आया पुतिन का ये बयान दर्शाता है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक शांति के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और संघर्ष के माहौल में गांधी जी का शांति और अहिंसा का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी का अटूट विश्वास, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हर व्यक्ति की गरिमा में उनका गहरा विश्वास मानवता को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी युगों में बापू के आदर्श मानवता के लिए पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। महात्मा गांधी की जयंती आज वैश्विक स्तर पर भी मनाई जा रही है। कई देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों ने इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की और सत्य, अहिंसा तथा शांति के उनके संदेश को याद किया। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण

0: कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने विजय घाट स्थित समाधि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और एल मुरुगन सहित कई अन्य मंत्रियों, सांसदों तथा विद्यार्थियों ने आज नई दिल्ली स्थित संविधान सदन में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी दोनों महान नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज नई दिल्ली में खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12-13 वर्षों में खादी ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं।
1: खादी युवाओं के लिए फैशन स्टेटमेंट बन गया है। आज खादी के देश भर में फैशन शो हो रहे हैं। युवा मोदी जैकेट पहन रहा है, मोदी कुर्ता पहन रहा है। युवा हमारी खादी की कॉस्मेटिक खरीद रहा है, खादी के ग्रामोद्योग उत्पाद खरीद रहा है। खादी की कुर्ती हो, जैकेट हो, वो उत्पाद जो कभी गांव गलियों से बाहर नहीं निकल पाते थे, आज वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अपना जलवा पूरे देश में बिखेर रही है। पिछले 12-13 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी कई गुना बढ़ी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज थिरु के कामराज की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि थिरु के कामराज ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा और आम जनता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको अटल सुरंग के माध्यम से इस दृष्टि को साकार रूप देने का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।
2: विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे के नीचे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में निर्मित अटल टनल आधुनिक इंजीनियरिंग और सीमा सड़क संगठन की तकनीकी क्षमता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देश की महत्वपूर्ण आधारभूत और सामरिक परियोजनाओं में शामिल अटल टनल, जहां प्रदेश के कुल्लू व जनजातीय जिला लाहौल स्पीति को वर्ष भर हर मौसम में जोड़े रखती है, वहीं आज हिमाचल प्रदेश के विकास, पर्यटन और सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 9 किलोमीटर से अधिक लंबी अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को किया था। इस पर करीब 3,200 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल टनल के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक बदलाव आया है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलांग निवासी सोनम जांगपो ने बताया कि अटल टनल स्थानीय लोगों के लिए परिवहन, व्यापार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इस ऐतिहासिक सौगात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
3: अटल टनल जो खुलने से पहले हमें रोहतांग टॉप होके कुल्लू मनाली जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे ही टनल खुला, उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं भी हम इजिली, इमरजेंसी कभी भी कुछ भी रहता है, हम इमीडिएट 1-2 घंटे के अंदर कुल्लू पहुंच जाते हैं। हमारे जो फसलें हैं, जो किसान बागवान भाई है, उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा आसानी हो गई है। हम केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
2: अटल टनल रोहतांग के बनने से जहां हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं इसके माध्यम सीमावर्ती क्षेत्रों, खासतौर पर लेह लद्दाख के लिए वर्ष भर आवागमन और अधिक सुगम हो गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में पंजाब के हॉकी ओलंपियन राजेंद्र सिंह सीनियर के प्रयासों की सराहना की थी। एक रिपोर्ट।
4: ओलंपियन राजेंद्र सिंह 1980 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडियन हॉकी टीम का हिस्सा थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 1982 चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, जिसे इंडिया ने राजेंद्र सिंह द्वारा 3 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान से जीता था और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। वह 1990 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई से जुड़े और अपना कोचिंग करियर शुरू किया। उनके समय में सब जूनियर और जूनियर हॉकी टीमों ने कई नेशनल अवार्ड जीते। उन्होंने आकाशवाणी को बताया कि राउंड ग्लास अकादमी पंजाब में 60 हॉकी अकादमियां चला रही है, जिसमें 6 से 8 साल की उम्र के लड़कियों समेत 3000 खिलाड़ी इस राष्ट्रीय खेल की बारीकियां सीख रहे हैं।

0: मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मन की बात में मेरा जिक्र किया और मुझे मेरे काम की सराहना की। मैं पिछले 5 वर्षों से राउंड ग्लास स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ युवाओं को हॉकी को आगे ले जाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के ये प्रेरणादायी शब्द सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे और साथी कोचेस ओलंपियन को भी प्रेरणा दे।
1: उन्होंने भारत के लिए मजबूत हॉकी टीम बनाने के लिए काबिलियत वाले युवाओं को कोचिंग देते रहने का भरोसा दिया। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
2: और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लवलीना ने चीन की बाऊ जी को हराकर भारत के लिए महिला मुक्केबाजी में 12 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। ये एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी में भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। हालांकि पुरुष रिकर्व टीम को फाइनल में दक्षिण कोरिया से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। पुरुषों की सेपक टकरा के सेमीफाइनल में भारत को जापान से हारकर कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। भारत पदक तालिका में 72 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इनमें 12 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार से बात की। उन्होंने कैप्टन की बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। एशियाई खेलों में लवलीना बोरगोहाइन ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है इंदौर से, वंदना नगर इंदौर से। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण, गणेश कार्तिक, संजना परी, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी ने। भाटापारा दतरंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर। नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश और कुमारी ध्वनि गवाणकर। इन सभी श्रोताओं ने सुनना चाहा है देवता फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है आरडी बर्मन का।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन, इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और रफ़ी मंसूरी, रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है आंधी फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार लता मंगेशकर की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र और धर्मेंद्र मालाकार, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, और ये साथी हैं धमतरी छत्तीसगढ़ से सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा, शेफाली, सरखो, नैला, जांजगीर से राजेश, रेखा साहू, कमलेश, रावी साहू, हनी, हिमांशी, डिम्पी, सेजल साहू, और बठेना ग्राम से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चौटौदा सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म स्वामी का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है किशोर कुमार की, गीतकार है अमित खन्ना और संगीत है राजेश रोशन का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश के लिए ये अगली फरमाइश भेजी है हमारे इन श्रोता साथियों ने। ये है, बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता, सानवी गुप्ता। डुमराव बिहार से डॉक्टर ब्लू अंसारी, सोनम, अदीबा, दानिश अंसारी, एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सामले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म मौसम का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर भूपेंद्र की और गीतकार हैं गुलजार, संगीत है मदन मोहन का।

और ये अगली फरमाइश है दुर्गाई सेल से चंद्रू कुलकर्णी हेमलता और सी आर कुलकर्णी, और ये हैं राजकोट से आरती जासमीन प्रयागराज भट्ट मधुसूदन भट्ट, बक्सर से ज्योत गुप्ता आशीष गुप्ता सतीश गुप्ता आयुष आयुषी सानवी। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लम्हे फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है लता मंगेशकर ए हरिहरन की, गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है शिव हरि का।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी और उनके सत्य, अहिंसा और सर्वोदय के विचारों को याद किया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गांधी नेहरू कक्ष में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाई दुबई विमान की घटना के बाद घायल पायलट कैप्टन स्मित मछार से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कल भोपाल आएंगे। वे भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे। भोपाल में भारतीय हारमोनिका महोत्सव के 13वें संस्करण का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों ने हारमोनिका पर मधुर धुनें पेश की और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज से श्रद्धालुओं को रोजाना मुफ्त प्रसाद बांटा जा रहा है। मंदिर के इतिहास में पहली बार आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। आज शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान होगा। शाम 6 बजे सुनिए एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। 6:30 पर होगा फिल्म संगीत।

रात 8 बजे सुनिए विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 9:30 पर सुनिए खेल जगत में भेंटवार्ता, खेलों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। वार्ताकार हैं पंकज जैन। 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। रात 10 बजे सुनिए एशियन गेम्स 2026 पर आधारित दिल्ली हाइलाइट्स।

10:20 पर आप सुनिए फिल्म संगीत और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राग बिहाग में मनोज कुमार से ध्रुपद गायन।

और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनिए 7:21 पर। इसमें सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत।

तो ये थी जानकारी शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज पर डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है। इस कार्यक्रम में पहले आप सुनेंगे नवल किशोर तिवारी से ये भजन।

इसके साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। लीजिए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है। इसमें आप पहले आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के स्वर में गीत।

ये था सुगम संगीत का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम छतरपुर का, आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

आशा भोसले विनोद राठौड़ के स्वर में अभी आपने बाजीगर इस फिल्म का गीत सुना। गीतकार थे जफर गोरखपुरी और संगीत था अनु मलिक का।

कभी हाँ कभी ना, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं, जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू की, गीतकार है मजरू और संगीत है जतिन ललित का।

इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। फिल्म है चमत्कार और जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू, अलका याग्निक की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है अनु मलिक का।

0: ये था चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि लवलीना की ताकत सटीक

0: नैतिकता और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कटरा बनिहाल सेक्शन पर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और वंदे भारत ने चिनाब और अंजी पुलों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार किया। भोपाल में गांधी जयंती और स्वच्छ भारत दिवस पर फिट इंडिया फ्रीडम रन और ब्लॉगिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों ने दौड़ के साथ सार्वजनिक जगहों की सफाई की। प्रदेश में आज से मद्य निषेध सप्ताह की शुरुआत हो रही है। गांधी जयंती के मौके पर 2 से 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में आज से ग्रामीण इलाकों में रिफॉर्म उत्सव की भी शुरुआत हो रही है। वाटरशेड विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं के जरिए किसानों और ग्रामीणों को नई तकनीक और सुधारों की जानकारी दी जाएगी। और एशियन गेम्स में पदक जीतकर लौटे प्रदेश के निशानेबाज आशीष चौकसे और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में मुलाकात की। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएस के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

0: और लीजिए आप सुनिए परिचर्चा गांधी में भारत और भारत में गांधी। प्रतिभागी हैं डॉक्टर कैलाश चंद्रपन, डॉक्टर राकेश पालीवाल, डॉक्टर सुरेश मिश्र। संचालन है डॉक्टर कैलाश चंद्र पंत का।
1: आज हम आकाशवाणी भोपाल के शब्द सागर कार्यक्रम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय गांधी में भारत और भारत में गांधी पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ गांधीवादी सिद्धांतों के प्रखर प्रचारक और विचारक श्री आर के पालीवाल जी मौजूद हैं और दूसरे इतिहास के विद्वान प्रोफेसर मिश्रा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं इस आयोजन में।
2: धन्यवाद।
1: जैसा आप जानते हैं कि आज पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व में गांधी जी के 150वें वर्ष के समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कुछ लोग इसे बा बापू 150 के नाम से भी आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि उस गांधी के बारे में हमारे नई पीढ़ियों को जानकारी होनी चाहिए जिसने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि विश्व सभ्यता में एक जबरदस्त हस्तक्षेप किया और विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया कि शस्त्र शक्ति के सामने आत्मबल की शक्ति या अहिंसा की शक्ति ज़्यादा प्रखर और प्रबल होकर सामने आ सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी गांधी जी ने अनेक विषयों पर अपने जो मौलिक विचार रखे उस विचारों को अगर हम याद करें तो हमें लगेगा कि हम भारत में गांधी से दूर हो रहे हैं जबकि गांधी विश्व में प्रिय होते चले जा रहे हैं।
3: सही कह रहे हैं।
1: तो यह विरोधाभास समाप्त होना ही चाहिए और मैं इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए श्री पालीवाल जी से अनुरोध करूं। इसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूं
2: जी
1: कि गांधी जी ने स्वयं ये स्वीकार किया
2: जी
1: कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं।
2: बिल्कुल।
1: जो कुछ मैं कह रहा हूं वो हमारी ज्ञान परंपरा में मौजूद है और वह भारत है।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए वो भारत के स्वराज्य को केवल राजनीतिक स्वराज्य नहीं मानते थे बल्कि गांधी जी के अनुसार उस भारत को स्वतंत्र करना चाहते थे जो स्व पर जोर देता है।
2: बिल्कुल।
1: इस विषय को लेकर आपके विचार का स्वागत है
2: जी। जैसे आज का विषय ही रखा है आपने गांधी में भारत और भारत में गांधी, बहुत प्रासंगिक विषय है कि गांधी में किस तरह की भारतीयता थी। आपने खुद कहा

0: कि वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे। मैं आपको उस समय ले जाना चाहूँगा जब देश आज़ाद हुआ और गांधी जी से पूछा गया कि अब तो आप पूरी तरह खुश हैं क्योंकि देश आज़ाद हो गया, अब तो हमको पूरी सफलता मिल गई। तब गांधी जी ने कहा कि नहीं, अभी देश को एक चौथाई आज़ादी मिली है, मेरे हिसाब से केवल राजनीतिक आज़ादी मिली है, हमारे देश को अभी तीन चौथाई आज़ादी और चाहिए। और जब उनसे पूछा कि वो कौन सी आज़ादी हैं, तो उन्होंने कहा सामाजिक आज़ादी, जो वो छुआछूत वगैरह की तरफ इंगित कर रहे थे कि वो सामाजिक आज़ादी अभी एक बड़े वर्ग को नहीं मिली। दूसरा उन्होंने कहा आर्थिक आज़ादी। जब वो आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं तो वो स्वावलंबन की, जो स्व आपने कहा, वो स्वावलंबन की बात करते हैं कि अभी भी बहुत से मजदूर वो बिल्कुल वो गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। और तीसरे को उन्होंने शब्द दिया है आध्यात्मिक आज़ादी या धार्मिक आज़ादी।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं
0: जी। तो वो जो धार्मिक भाईचारा और सबको आज़ादी, जो अपना धर्म, सभ्यता, संस्कृति, क्योंकि विविधताओं का देश भारत शुरू से रहा है, तो उनका कहना ये था कि असली आज़ादी तो मैं तब मानूंगा जब हमको राजनीतिक के साथ
1: धार्मिक,
0: सामाजिक और आर्थिक
1: तीनों,
0: ये तीनों आज़ादी भी। और ये कह रहे थे कि अंतिम जन तक जब ये आज़ादी पहुंच जाएंगी
1: तब मैं संतुष्ट हूँ। मिश्र जी,
2: जी
1: अभी जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब राजनीतिक स्वतंत्रता मिली उसको वो एक चौथाई स्वतंत्रता कहते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब वो स्वराज्य शब्द का प्रयोग कर रहे थे उसमें ये तीनों चीज़ें और भी शामिल थीं।
0: बिल्कुल,
1: वो स्व क्या है और गांधी जी का वो स्व या धर्म की बात भी अभी आपने कही, तो धर्म के बारे में तो गांधी जी ने स्वयं कहा था, मैं जब धर्म कहता हूँ तो यह हिंदू, मुसलमान, यहूदी, पारसी, सिख, ईसाई नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: यह उससे बहुत बड़ी चीज़, वह बड़ी चीज़ गांधी की समझ में तो थी, लेकिन क्या हम आज अपने भारत में उस बड़ी चीज़ को समझ पा रहे हैं?
2: पंती जी, आपने गांधी जी के बारे में जो बात कही बड़ी सटीक है, और जो आपने स्व की बात कही, स्वराज की बात कही, तो हिंद स्वराज में उनके विचारों का पूरा प्रतिबिंब हमें मिलता है कि आज़ादी के बाद देश कैसा होना चाहिए और देश में क्या क्या चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो कि देश को वास्तविक रूप से स्वावलंबी या स्वतंत्र बनाती हैं। हम लोग सिद्धांतों की बहुत बात करते हैं, लेकिन गांधी जी के व्यक्तित्व के कुछ पहलू हैं वो हमारे सामने कम आ पाते हैं
0: जी।
2: जैसे मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा कि गांधी जी ने किस प्रकार खादी को एक व्यक्तित्व बना दिया, गांधी को खादी को एक पहचान बना दी। 1941 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ तो उस सत्याग्रह के दौरान बम्बई में आंदोलन हुआ। संक्षेप में कहानी ये है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तारी दे रहे थे, तो एक महिला भी गिरफ्तारी दे रही थी, और जब पुलिस वाले उसको ले जाने लगे तो उसने कहा कि ज़रा रुको, मैं अपने ऑर्नामेंट्स अपने घर भेज दूँ। उसने सारे ऑर्नामेंट, सारे अलंकार, सारे गहने उतारे और बाजू वाले को एक पोर्ट्री में बनाकर दे दिया कि अमुक अमुक पते पर भेजा देना। उस व्यक्ति ने पूछा कि मैडम, ये बताइए कि आप तो मुझे जानते नहीं हैं, फिर भी आपने मुझ पर विश्वास कैसे कर लिया कि आपके अलंकार में आपके घर पहुंचा दूंगा? तो उस महिला ने कहा, देखिए, मुझे आपके लिए कुछ प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आप खादी पहने हैं ना, यही आपका प्रमाण पत्र है।
1: बहुत बड़ी,
2: तो मेरा कहना यह,
0: मैंने भी ये घटना
2: कि किस प्रकार खादी को उन्होंने एक ऐसा बना दिया कि उसके पहनने वाला ही श्रेष्ठ व्यक्ति का, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो गांधी जी के खुद के जीवन के हैं और गांधी जी ने जिन सिद्धांतों को उतारा उनको अपनाने वालों के जीवन में आते हैं। और मुझे लगता है कि इनका
1: आपने बहुत सही बात पर इशारा किया कि जब पालीवाल जी स्वराज्य की बात कर रहे थे, आर्थिक स्वराज्य, और उसके साथ गांधी की बात कर रहे थे, तो उन्होंने चरखे की बात की और श्रम के महत्व को प्रतिस्थापित किया था। आपने उस बात को और अधिक बढ़ाकर उसको पहचान बना दिया। भारत की पहचान केवल खादी नहीं है,
2: जाहिर
1: इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। विषय है कि गांधी का भारत और भारत में गांधी, उसने भारत को कैसे आत्मसात किया था, यह प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें श्रम की प्रतिष्ठा भी थी, उसमें सामाजिक भेदभाव के लिए निषेध भी था, उसमें आर्थिक पहलू भी जुड़े थे, लेकिन उन सबसे बड़ी बात, वो क्यों कहते थे कि मैं भारत के साथ जुड़ा हूँ, क्या कारण था, उसके लिए गांधी स्वयं ने लिखा है कि मैं उस भारत को पहचानता हूँ जो विश्व को नया प्रकाश, नई रोशनी दे सकता है। मैं उस भारत को पहचानता हूँ जिसने अध्यात्म को बहुत ऊंचे धरातल पर लिया है। वो उनका, मैंने भारत को वो भी देखा है जिसमें वह सामाजिक पतनशीलता के उसमें है, लेकिन इसमें अभी भी वो ऊर्जा शेष है जब वो अपनी बुराइयों को दूर करके फिर दुनिया को एक नया संकेत देगा। मैं समझता हूँ पालीवाल जी इस विषय को ज़्यादा विस्तार से बोलेंगे।
0: फिर से मैं आपको गांधी की जो बीज कृति है, जो गांधी बार बार कहा, जिसके बारे में मिश्र जी ने भी कहा, हिंद स्वराज, हम को सारी इन प्रश्नों के उत्तर हिंद स्वराज में मिलते हैं।
2: जी,
0: हिंद स्वराज में वो बहुत कड़े शब्दों में पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को बहुत सतही और खोखली बताते हैं, और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, जैसा आपने कहा, आध्यात्मिक धरातल पे बहुत ऊंची वो बताते हैं। और उस समय जबकि वो तो इंग्लैंड में बैरिस्ट्री किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत समय रह चुके थे ये लिखते समय, 1909 में लिखा हिंद स्वराज, तो उनके बहुत से साथी उस समय उनसे प्रश्न करते थे कि देखिए दुनिया तो पश्चिम की तरफ देख रही है, नए नए फैशन, नई नई तकनीक, नई नई औद्योगिक क्रांति, और आप इसके बरक्स भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महान बताते हैं। यहाँ तक कि गोखले जी जो उनके गुरु थे, उन्होंने भी कुछ प्रश्न चिन्ह लगाया था हिंद स्वराज के ऊपर, आपको ध्यान होगा। लेकिन उसी समय टॉलस्टॉय जो एक तीसरे मुल्क में, बड़े मुल्क में, रूस में बैठ के गांधी को देख रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंद स्वराज एक ऐसी किताब है जिसको विश्व के हर अच्छे नागरिक को पढ़ना चाहिए। तो वो प्रभावित हो रहे हैं। यहीं से आप देखिए कि पूरा विश्व उस समय भी जो प्रबुद्ध लोग थे,
1: वो सुर आकर्षित हो रहे थे,
0: वो आकर्षित हो रहे थे हिंद स्वराज को, जहां वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महानता की बात कर रहे थे। लेकिन टॉलस्टॉय ने साथ साथ गांधी जी को चेताया भी, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपकी सभ्यता महान है, लेकिन उसकी कुछ खामियां भी हैं जिसकी वजह से आप इतने लंबे समय से गुलाम हैं। तब गांधी जी ने कहा कि हाँ, मैं उन कमियों को जानता हूँ और उन कमियों को हम दूर करेंगे। तो जो हाँ, आपने कहा कि वो छुआछूत वाली कमी थी, स्त्री अशिक्षा की कमी थी, वो पर्दादारी की,
1: ये गांधी ने पहचान लिया था
0: तो उन्होंने ये कहा कि हम उस भारतीयता को अपनाएंगे जिसमें हमारी पुरातन अच्छी अच्छी चीजें, सभ्यता संस्कृति को रखेंगे और खराब खराब को निकाल देंगे।
1: आपने पालीवाल जी ने देखी, मिश्र जी, पालीवाल जी ने अभी हमारे सामने ये बात प्रस्तुत की कि गांधी जी की बात को, सिद्धांतों को समझने की उत्सुकता पश्चिमी विद्वत वर्ग में हो रही थी
0: जी, बिल्कुल,
1: जबकि भारत में ही कुछ लोग मौजूद थे जो संदेह कर रहे थे। अब गांधी के जो हिंद स्वराज में, तो गांधी ने पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था और शोषण का औजार बताया था। यहाँ पर गांधी की दृष्टि पूरी स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ आप औजार बना रहे हो शोषण का। मैं इस समय उद्धृत करना चाहूँगा फ्रेडरिक फिशर को
0: जी,
1: वो पादरी था, गांधी जी साथ यहाँ 12-14 साल बिताए उन्होंने
0: जी।
1: उसके बाद वो अमेरिका लौट कर जो बिशप था
0: जी,
1: वो कहता है कि आप पश्चिमी दुनिया के लोग नहीं समझ पा रहे हो कि वो अहिंसक सत्याग्रह करने की जो बात करता है वो केवल बात नहीं है, वो दुनिया को एक नया संदेश दे रहा है कि शक्ति तो क्रूरता और शस्त्र शक्ति के बल पर, औद्योगिक शक्ति के बल पर तुम मनुष्यता को स्थापित नहीं कर सकोगे। वह उस सभ्यता को चुनौती दे रहा है, इस तरफ सचेत हो, ये बात गांधी कह रहा है। तो ये अगर आपने फ्रेडरिक फिशर को देखा हो तो शायद मिश्र जी आप इस पर कुछ बोलेंगे।
2: आपने बहुत अच्छी बात कही कि पश्चिम के लोग प्रभावित उनसे हुए, और टॉलस्टॉय का आपने जिक्र किया
0: जी।
2: तो मुझे लगता है कि टॉलस्टॉय की बात करते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि कैसे टॉलस्टॉय की किताब ने, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, ये टॉलस्टॉय की किताब थी, और गांधी जी जो हमको मिले अफ्रीका से लौट के, तो गांधी कैसे बन के लौटे, उसमें ये टॉलस्टॉय की किताब का भी प्रभाव है, रस्किन की किताब की का भी
1: स्वीकार कर रहे हैं
2: वो किताबों है। और आपको याद दिलाऊं कि जब नेल्सन मंडेला यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि आपने तो हमको मोहनदास करमचंद गांधी दिया था, हमने आपको महात्मा गांधी दिया।
0: बिल्कुल,
2: तो पश्चिम के प्रभाव को आप छोड़ नहीं सकते। और ये सबसे महत्व की बात यह है कि गांधी हमको जो मिले, तो सारा जो उनका गढ़े गए वो तो यहाँ नहीं, तो दक्षिण अफ्रीका में गढ़े गए।
1: नहीं, इसमें मिश्रा जी मेरा थोड़ा सा आपसे असहमति है कि गांधी ने विश्व गए और विश्व से बहुत कुछ सीखा, पर उस सीखे हुए को उन्होंने भारतीय परंपराओं में तोला।
0: बिल्कुल
1: सही बात। और उस तोलने के बाद जैसा अभी पालीवाल जी

0: उसी को स्वीकार किया जो हमारी प्रकृति के अनुरूप है।
1: तो प्रयोगशाला अवश्य उन्होंने बनाया दक्षिण अफ्रीका को और वहाँ सारे प्रयोग किए और फिर बाद में लौट के भारत में आकर।
0: ये बात बिल्कुल सच है कि गांधी को अफ्रीकावासी बड़े, हम जब 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे वहाँ एक गांधी चौक भी स्थापित है, वहाँ पर उन्होंने बड़े, वहाँ के प्रेसिडेंट ने
2: जी
0: बड़े उद्घोष से कहा कि अगर भारत ने हमें गांधी भेजने का उपकार किया था तो हमने बैरिस्टर गांधी को महात्मा गांधी बना के आपको लौटा दिया।
2: बिल्कुल। और पंत जी, गांधी जी को हम नई पीढ़ी को अगर समझाना चाहते हैं तो उनके दो तीन उन बीज वाक्यों को भी उनको बताना पड़ेगा। जैसे एक उन्होंने कहा कि इस धरती के पास बहुत सारे संसाधन हैं, अगर हम उनका संयम के साथ उपभोग करें तो यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन ये धरती एक भी व्यक्ति के लालच को सहन नहीं कर सकती।
0: और इसको उन्होंने कहा कि ये भारतीय परंपरा में ईशावास्योपनिषद के पहले श्लोक में मौजूद है ये दर्शन, जिसमें तेन त्यक्तेन भुंजिता की बात की गई।
2: तो जो वो कहते हैं उसको नीड बेस्ड और ग्रीड बेस्ड अंग्रेजी में कहा गया है कि आवश्यकता के अनुसार और लालच के हिसाब से। तो पश्चिम को वो जो
0: लालच
2: नकारते हैं वो लालच वहाँ पे संग्रह उसके
0: और
2: विरोध में उन्होंने अपरिग्रह कहा। जी
0: दूसरे पर अधिकार करना, अपना वर्चस्व स्थापित करने की जो प्रवृत्ति है उसको चुनौती देते हैं और वो भारतीय परंपरा में उसको जोड़कर बोलते हैं।
2: बिल्कुल। और भारत में भी वो ग्राम संस्कृति की बात करते हैं, ये भी हमें कहना होगा। एक बात उन्होंने और कही थी कि भारत की आत्मा भारत के गाँव में बसती है।
0: ये बिल्कुल ठीक।
2: वो बड़े शहरों महानगरों की विकृतियां पश्चिम में देख चुके थे, इसलिए वो भारत को आगाह करते थे कि आप अपने यहाँ ये बड़े बड़े महानगर, ये झुग्गी बस्तियां, ये सब मत कीजिए, अपने गाँव को स्वावलंबी बनाइए। भारत की सभ्यता संस्कृति तब तक जीवित बचेगी जब तक भारत के गाँव अपनी ग्राम में संस्कृति के साथ जीवित हैं।
0: देखिए, गांधी की भारत में सफलता का एक बहुत बड़ा कारण यही था
2: जी
0: कि उसने हमारे ग्रामीण जीवन के अनुरूप अपने जीवन को बना लिया था और उस जीवन को अपना कर जब वो गए और आपने ऐसा कहा कि राम की संस्कृति
2: जी,
0: राम का बात कही उनने, रघुपति राघव राजा राम कहा और वो कहते हुए गांधी भारत की आत्मा को छू गए कि गांधी में भारत, गांधी में यही भारत समा गया था। अभी भी उनका जो गांधी का अध्ययन करते हैं वो इसी रूप में करते हैं कि अहिंसात्मक सत्याग्रह के द्वारा ब्रिटिश सत्ता की फौलादी ताकत को पराजित कर सका, ये कौन सा चमत्कार था।
1: आपने पंत जी बहुत अच्छे अच्छे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और पालीवाल जी ने भी। मैं फिर लौट के कुछ ऐसी बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो आमतौर पर कम होती है। जैसे यहाँ की राजनीति में जो बड़े प्रखर नेता थे, महापुरुष थे, उनसे गांधी जी के रिश्ते कैसे थे? और हम बार बार ये कहेंगे तमाम मतभेदों के बीच में भी राष्ट्रहित सबसे ऊपर रहा उनके सामने। मतभेद रहे, वैचारिक मतभेद रहा, मुझे लगता है ये जो पहलू हैं छोटी छोटी घटनाओं के उनके व्यक्तित्व को निखार के सामने पेश करती हैं, सैद्धांतिकता के समानांतर।
0: ये इसको आप इस रूप में लीजिए कि वो जो समन्वयवादी दृष्टि थी गांधी
2: की, बिल्कुल वही मैं कहने जा रहा था,
0: वो समन्वयवादी दृष्टि भारत की है।
1: जी जी।
2: और वो केवल राजनीति तक सीमित नहीं
0: नहीं है,
2: वो अध्यात्म में भी उसको लाते थे, समाज में भी लाते थे और आर्थिक उसमें भी लाते थे कि सब एक दूसरे के सहयोगी बने।
1: हाँ, मतभेद के बावजूद भी देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए था।
2: स्वावलंबन का उनका मतलब ये नहीं था कि हर आदमी केवल अपना अपना करे, नहीं,
0: सामूहिकता
2: थी उसमें। जो आश्रम संस्कृति उनकी थी कि आश्रम में सामूहिकता थी, व्यक्तिगत वहाँ कुछ नहीं था।
0: ये जो अध्यात्म की बात अभी पालीवाल जी कर रहे हैं मिश्र जी, यही है कि भारत की सही आत्मा जहाँ पर हम एको अहम बहुत श्याम में विश्वास करते हैं कि मैं जो हूँ वह इनसे भिन्न नहीं हूँ, और वो पशु पक्षी और पौधों में भी वही बात देखते हैं। गांधी की यह वैश्विक दृष्टि जो हमारी सर्वे भवंतु सुखिनः की जो आधारशिला है उसमें जन्मी हुई है
1: और पृथ्वी को
0: स्वीकार करते हैं।
2: बिल्कुल, आपने जो कहा उसी में मैं कहूँगा, शुरू में उन्होंने अंतोदय अपने कार्यक्रम को कहा था, बाद में परिवर्तित करके सर्वोदय उन्होंने कहा, वो सर्वे भवंतु सुखिने वही बुलाए कि केवल एक का नहीं, अंतिम का ही नहीं, सबका भला हो।
0: और वो जय विश्व का जो नारा
2: बिल्कुल
0: विनोबा ने बाद में
2: लगाया।

0: जगत,
1: उसी का विस्तार था,
0: का विस्तार था
1: जी जी। ये तो एक बात हो गई जी कि गांधी में भारत किस रूप में था जी, भारत में गांधी किस रूप में है, और इसके लिए इन्होंने प्रसंग तो छेड़ा था लेकिन उसको गांधी से ही जोड़ दिया। भारत में गांधी क्या है? क्या ये सच नहीं है कि भारत ने आज़ादी के बाद गांधी को भुलाने की पूरी कोशिश की? कहाँ है वो खादी, कहाँ है वो स्वावलंबन, कहाँ है वो सामाजिक विषमता,
2: कहाँ सर्वोदय के सिद्धांत कहाँ हैं
1: आज? कहाँ हैं? हम धर्म को अभी भी उसी अर्थ में ले रहे हैं जिसमें आम तौर पर रिलीजन और अन्य मजहबों को समझा जाता है। ये सब बातें गांधी को हम आगे बढ़ा कहाँ पाए, उस सिद्धांत को गांव तक पहुंचा कहाँ पाए? हम लोग तो बाजारवाद के चकाचौंध में, अभी जैसे कुछ देर पहले चर्चा में पालीवाल जी कह रहे थे और आप भी स्वीकार कर रहे थे कि गांव गांव में लोग आजकल टीवी में जो जो नई बातें देखते हैं उसकी ओर दौड़ रहे हैं। यह लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली संस्कृति को हम अपना रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांधी ये भी कहते थे जो देश के लिए नहीं मिट सकता वो मानवता के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो विश्व का काम है।
2: आपने जो शुरुआत की, मैं पूछा ना कि भारत में गांधी की शुरुआत कैसे हुई, तो मुझे गांधी जी का पहला व्याख्यान याद आता है। आपको पता होगा कि उनको ये कहा गया था भी एक साल आप भ्रमण कीजिए भारत का, फिर भारत को समझिए।
0: गोखले जी ने उनको सलाह दिया था।
2: तो उसके बाद पहला व्याख्यान जो उन्होंने दिया था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था, और मंच में सारे लोग तो राजे महाराजे थे, अलंकार पहने हुए थे, लेकिन गांधी अपने पगड़ी लगाए हुए और सादे वेशभूषा, भारत जैसा बैठा, ऐसा लगा भारत किनारे बैठा हुआ है, वैभव इधर बैठा हुआ है। और तब गांधी जी ने जो व्याख्यान दिया बनारस में, उसमें दो तीन बातें जो उन्होंने कही, ऐसा लगता था भविष्य का संकेत लोगों को मिल गया कि एक नई किस्म की ऊर्जा लेकर एक व्यक्ति आ रहा है भारत में नई बात कहने के लिए। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो राजे महाराजे बैठे हैं इतने अलंकार पहने हुए, तो हिंदुस्तान की गरीबी की क्या बात करें, और इनको चाहिए कि सारे ऑर्नामेंट्स अपने सारे अलंकार गरीबों के लिए दे दें।
0: बिल्कुल।
2: फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बड़ी शर्म आ रही कि मुझे अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा है, मुझे मजबूर किया गया कि मैं अंग्रेजी में बोलूं, समझने वाले और हमारे देश की भाषा तो हिंदी है, इस पर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा कि लॉर्ड हार्डिन जो यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, तो वो सुरक्षा का इंतज़ाम बहुत बड़ा चल रहा है, तो उनको इतना डर क्यों है मौत से? अगर वो अलोकप्रिय हैं तो हैं, और उनको तो शर्म से मर जाना चाहिए अगर वो इतनी सुरक्षा की व्यवस्था चाहते हैं। ये तीन बातें उन्होंने कही।
1: एक और जोड़ दीजिए,
2: बोली बोली,
1: टेम्स में गंगा को क्यों मिला रहे हो?
0: हाँ, बिल्कुल,
1: इससे बड़ा व्यंग
2: हाँ
1: नहीं, मालवीय जी को कहा उन्होंने,
2: पहला व्याख्यान था वो,
0: बहुत चर्चा हुई उस व्याख्यान की,
2: 1916 की।
1: ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी कि उसी समय उन्होंने कह दिया, वो इसमें संकेत दे दिया कि यह विश्वविद्यालय अगर बनना चाहिए तो शुद्ध भारतीय परंपरा पर
0: बनना चाहिए,
1: लेकिन भारत ने वो स्वीकार कहाँ किया? आज हमारा सारा पैटर्न
2: आज बदल गया है,
1: जो जो भी हमने व्यवस्थाएं सांचे बनाए हैं वो सारे विदेशी आधारों पर निर्भर करते हैं। शिक्षा प्रणाली, विश्वविद्यालय को वैश्विक दृष्टि दे पाए हम? हमने गांधी तक को विषयों से हटा दिया, प्राथमिक शालाओं से,
2: जबकि आज प्रासंगिक सबसे ज्यादा गांधी हैं।
0: तो निश्चित बात ये लग रहा है कि गांधी लौट तो रहे हैं, और मुझे तो बहुत उम्मीद है पंत जी की 150वीं जयंती हम जो बा बापू की मना रहे हैं,
1: कम से कम कुछ सिद्धांतों को जीवन में उतारवा लेंगे।
0: इस बहाने गांधी दोबारा आ रहे हैं। और मैं थोड़ा सा एक चीज और कहूँगा, एक मुहावरा चलता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये बड़ा गलत है। इसको इस तरह से कहा जाए कि अगर हम स्वेच्छा से गांधी को अपना लें तो हम बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। ऐसा ना हो कि मजबूरी में हमको गांधी जी को अपनाना पड़े जब सब चीजें खराब हो जाएं।
2: मैं कहूँ कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ने, मजबूती का नाम महात्मा,
0: मजबूती का नाम महात्मा गांधी हो,
1: यानी आपके स्वावलंबन
0: जी,
1: आपके पुरुषार्थ
0: जी,
1: आपकी देशभक्ति, सबको गांधी चुनौती देते हैं।
0: बिल्कुल
2: जी जी,
1: वो बिल्कुल आपको इस बात की अनुमति नहीं देते कि आप देश में जातिगत दंगे कराने को सोचें, क्षेत्रीयता के हिसाब से बांटने की सोचें। हिंद स्वराज की बात आपने की थी मिश्र जी, लेकिन हिंद स्वराज में उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जब प्रश्नकर्ता पूछता है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही, अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत एक राष्ट्र बना, तो उन्होंने कहा यह तुमको आधुनिक शिक्षा ने समझाया है। आधुनिक शिक्षा ने समझाया है, और उस आधुनिक शिक्षा के कारण तुम ये समझ पाने में असमर्थ हो कि ये जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने बद्रीनाथ जगन्नाथ और रामेश्वरम की यात्रा और द्वारका की यात्रा तय की थी, वो क्या मूर्ख थे?
0: बिल्कुल,
1: यानी राष्ट्र की सांस्कृतिक कल्पना गांधी रख रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: और गांधी जो आपने कहा ना गांधी लौट रहे हैं
0: जी,
1: वो इसलिए लौट रहे हैं कि इस देश की प्रकृति
0: बिल्कुल
1: वही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बस उस प्रकृति को छूने की जरूरत
2: है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, और इसी में एक बात पे मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब ये बात आई आजादी के बाद भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा, कामकाज की भाषा क्या होनी चाहिए, तो गांधी जी हिंदी भाषी नहीं थे, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा की बात की।
2: सही कह रहे हैं।
0: उनके कुछ गुजराती मराठी साथियों ने कहा कि आप तो अपनी मातृभाषा की भी बात नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत की भाषा की बात कर रहे हैं। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा देखो, दक्षिण अफ्रीका में जब मैं रहा तो तमिलनाडु के भी भारतीय थे वहाँ, गुजरात के भी थे, बिहार के भी थे, बंगाल के भी थे। जब वो आपस में बात करते थे एक बंगाली दूसरे बंगाली से, तो बंगाली भाषा बोलते थे, लेकिन जब बंगाली तमिल से बात करता था तो वो हिंदुस्तानी भाषा में बात करता था। तो जब दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में भारत के लोग हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, तो मेरे अपने देश के लिए सबसे उचित भाषा वही हिंदुस्तानी है।
1: विषय जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए।
2: एक बार किसी ने उनसे पूछा कि बापू, आपको इतनी ताकत और इतने विश्वास किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो कुछ क्षण खामोश रहे वो, फिर उन्होंने कहा, देखिए मुझे अपनी जनता की जो ताकत, जनता है ना, वो मेरी ताकत है। और एक बार और उन्होंने कहा, जब बंगाल में जब वो थे तो किसी ने कहा कि आप इस मौके पर जबकि देश उथल पुथल से गुजर रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? विदेशी था वो, तो उन दोनों बंगला सीख रहे थे गांधी जी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे जो विचार हैं वही मेरा संदेश है,
1: मेरा जीवन है। मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बातें उभर के आई इस चर्चा में कि हम भारत में गांधी को वापस लौटा कैसे सकते हैं, और मौजूद है गांधी। वैसी प्रकार आपने भी बताया कि गांधी उदार थे और उन्होंने पूरे देश को बांधने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था उन्होंने 1918 में। बाद में उन्होंने अपने को बदला और हिंदुस्तानी पर आ गए थे और हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की थी। उसके पहले वो हिंदी के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, इनकी स्थापना कर चुके थे। ये गांधी की दृष्टि थी कि सर्वव्यापी दृष्टि, एक लोकव्यापी दृष्टि, वह हिंदुस्तान में अगर लौटेगी तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र, जिसकी बात कम हो पाई हमारे आज की चर्चा में, वह लोकतंत्र, विकेंद्रित लोकतंत्र फिर से एक बार उभर कर सामने आएगा और भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों के आधार पर पुनः खड़ा होगा।
0: बिल्कुल, और भारत विश्व गुरु बनने की भी क्षमता रखता है अगर हम उन गांधीवादी मूल्यों को अपनाते हैं। सबसे पहले अपने लिए
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।
3: शब्द सागर में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, गांधी में भारत और भारत में गांधी। इस विषय पर प्रतिभागी थे डॉक्टर कैलाश चंद्रपन, डॉक्टर राकेश पालीवाल, डॉक्टर सुरेश मिश्र। संचालन कर रहे थे डॉक्टर कैलाश चंद्रपन।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनते हैं संग्रहालय से इस कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों का भाग एक।

0: मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीजों से नफरत थी, लेकिन उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीजों से चिढ़ थी। धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है, इसको वो चरितार्थ करती थी। इसलिए गोदावरी दिल पर हजार जबर करके पति की लाई हुई विदेशी चीजों को व्यवहार में लाती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवशता पर दुखी होता था। वो जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियां पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती थी। वो सोचती थी,
1: मुझसे ज्यादा बदनसीब औरत संसार में शायद कोई नहीं हो। मैं अपने स्वदेश वासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती।
2: शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह करने पर वो कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वो पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाती कि वो यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई है। होली का दिन था, 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियाँ लगाने की तैयारियाँ होने लगीं। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी ये समारोह देखती थी और दिल महसूस कर रह जाती थी।
1: एक वो है जो यो खुश खुश आज़ादी के नशे में मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तीलियों को कैसे तोड़ दूँ?
0: उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीजें विदेशी थी, स्वदेशी का एक सूत भी न था। यही चीजें वहां जलाई जा रही थी और यही चीजें यहां उसके हृदय में संचित ग्लानी की भांति संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीजों को उठाकर उसी होली में डाल दें ताकि उसकी सारी ग्लानी और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय ने उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा,
3: अरे जरा इन सिरफिरों को तो देखो, कपड़े जला रहे हैं। ये पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? अरे किसी ने सच कहा है, हिंदुस्तानियों को ना कल आई है ना आएगी। कोई कल भी तो सीधी नहीं है।
1: तुम भी तो हिंदुस्तानी हो।
3: हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ मैं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार वेशभूषा रीति नीति कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का ताना दे। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों

0: टाट खरीदें। इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता नहीं होना चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट ने इन दुष्टों को यहां जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता ना तो सभी को जहन्नुम रसीद कर देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता इन्हें।
1: अरे तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरे जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए ये लज्जा की बात नहीं है कि वो अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने भाइयों के साथ अन्याय करे?
0: अपने भाई? अरे मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता हूँ।
1: आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वो इन्हीं की जेब से तो आता है।
0: मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वो मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। अरे क्या अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब ये मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो ये कैसे मुमकिन है कि ये इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो? इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बाका नहीं कर सकेगा।
1: तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो आप ही आप भोजन मिल जाएगा। अरे बीमार होते हो तो क्यों दौड़े दौड़े वैद्य के घर जाते हो? परमात्मा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं।
0: बेशक करता है, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीजों को जला देना, ऐसे काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता।
1: तो क्या यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठे रहना चाहिए?
0: नहीं, रोना चाहिए, रोना चाहिए। अरे इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं।
2: सहसा होली जली, आग की शाखाएं आसमान से बातें करने लगी। मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश में देवताओं से गले मिलने जा रही है। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए वो दृश्य ही असह्य था। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खिंडी बजाकर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। वतन

0: आती है।
1: वो खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा,
2: ओ बच्चे रुकना।
3: अंधा बच्चा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपए थे मगर अंधे बच्चे को नोट या रुपए देने का तो सवाल ही ना था। पैसे अभी दो चार मिल जाते तो इस वक्त वह जरूर दे देती, पर वहां एक ही पैसा था, वो भी इतना घिसा हुआ कि कहार बाजार से लौटा लाया था, किसी दुकानदार ने ना लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वो जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय में खड़ी रही, तभी उसने बच्चे को बुलाया और पैसा दे दिया।
4: माता जी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया।
2: दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता?
4: क्या करूं माता, कोई खाने को नहीं देता।
2: ले इस पैसे का चबेना लेकर खा लेना।
4: खा लूंगा माता जी, भगवान आपको खुशी रखे, अब जाता हूँ।
1: दूसरे दिन प्रातःकाल काम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूट पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्कुट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूर धारण करके विलायती सिगरेट मुंह में दबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। दुराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर शेर को अपने प्रभाव में लाने की उसने वो सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव मृद मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर ना हुआ। खुद भी तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर राजी नहीं हुए और यहाँ तक कि गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत नहीं हुए। गोदावरी स्वाभिमानी थी, इसलिए उसने मिस्टर सेठ से कभी कोई चीज न मांगने की कसम खा ली। क्रोध और गिलानी ने उसकी सद्भावनाओं को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा,
2: जब ये मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते तो फिर मैं क्यों इनके इशारे पर चलूं? क्यों इनकी इच्छाओं की नौकरानी बनी रहूं? मैंने इनके हाथ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करें तो क्या मैं सजा पाऊंगी? उसकी सजा ये खुद झेलेंगे, उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का इख्तियार ये है कि ये अपनी सरकार की गुलामी करें, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़ें। मुझे क्या गरज है कि उसमें इनका सहयोग करूं? जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ के हाथों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अरे ये नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है, वो नियम स्वामी और सेवक दोनों पर ही लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे अपशब्द कहे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं है, लेकिन गुलाम के लिए कोई शर्त नहीं। उसकी दैहिक गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले ही हो जाती है। अरे सरकार ने इनसे कब कहा है कि देशी चीजों को न खरीदो? इनसे विदित है कि सरकार देशी चीजों का निषेध नहीं करती, फिर भी ये महाशय सुर्ख रू बनने की फिक्र में सरकार से भी दो अंगुल आगे बढ़ना चाहते हैं।
5: वो कल फ्लावर शो देखने चलोगी?
2: नहीं।
5: अरे बहुत अच्छा तमाशा है।
2: मैं गांधी जी के जलसे में जा रही हूँ।
3: मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्होंने बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वो इतने बदहवास ना होते। आंखें फाड़ कर बोले,
5: तुम गांधी के जलसे में जाओगी?
2: हाँ जरूर जाऊंगी।
5: मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ।
2: देखिए अगर आप मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं।
5: नतीजा बुरा होगा।
2: मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, तुम कोई ईश्वर नहीं हो।
1: मिस्टर सेठ खूब गर्म हुए, बहुत उल्टा सीधा कहा, धमकी दी और रात में भी पलंग पर मुंह फेर कर लेट रहे। प्रातःकाल फ्लावर शो जाते समय उन्होंने गोदावरी से कुछ नहीं कहा।
3: गोदावरी जिस समय गांधी जी के जलसे में पहुंची तो कई हजार मर्दों और औरतों का जमाव था। मंत्री ने चंदे की अपील की थी और कुछ लोग चंदा दे रहे थे। गोदावरी उस जगह खड़ी हो गई जहां और स्त्रियां जमा थीं और देखने लगी कि लोग क्या देते हैं। अधिकांश लोग दो दो चार चार आना ही दे रहे थे। वहां ऐसा धनवान था ही कौन। उसने अपनी जेब टटोली तो एक रुपया निकला। उसने समझा यही काफी है। इसी इंतजार में थी कि झोली सामने आए तो उसमें डाल दूं। सहसा वही अंधा लड़का जिसे उसने पैसा दिया था ना जाने किधर से आ गया, और ज्यों ही चंदे की झोली उसके सामने पहुंची उसने उसमें कुछ डाल दिया। सबकी आंखें उसकी तरफ उठ गईं। सबको कौतूहल हो रहा था कि अंधे बच्चे ने क्या दिया, कहीं एकाध पैसा मिल गया होगा। दिन भर गला फाड़ता है तब भी तो उस बेचारे को रोटी नहीं मिलती। अगर यही गाना सास के साथ किसी महफिल में होता तो रुपए बरसते, लेकिन सड़क पर गाने वाले अंधे बच्चे की कौन परवाह करता है। झोली में पैसा डालकर अंधा वहां से चल दिया और कुछ दूर जाकर गाने लगा।
4: वतन की

0: बदलती।
1: मित्रों देखिए, ये वो पैसा है जो एक गरीब अंधा लड़का इस झोली में डाल गया है। मेरी आंखों में इस एक पैसे की कीमत किसी अमीर के 1,000 रुपए से कम नहीं है। शायद यही इस गरीब की सारी बिसात होगी। जब ऐसे गरीबों की सहानुभूति हमारे साथ है तो मुझे सत्य की विजय में कोई संदेह

0: नहीं मालूम होता हमारे यहां क्यों इतने फकीर दिखाई देते हैं। या तो इसलिए कि समाज में इन्हें कोई काम नहीं मिलता, या दरिद्रता से पैदा हुई बीमारियों के कारण ये अब इस योग्य ही नहीं रह गए कि कुछ काम करें, या भिक्षावृत्ति ने इनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं छोड़ी। स्वराज के सिवा इन गरीबों का अब उद्धार कौन कर सकता है? देखिए वो गा रहा है,
1: वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है।
0: इस पीड़ित हृदय में देश के लिए कितनी तमन्ना है।
2: सभापति जी, अंधे बच्चे द्वारा दिया पैसा उठाकर सभा में उपस्थित जन समूह से पूछते हैं,
0: आप में से कौन इस रत्न को खरीद सकता है?
3: गोदावरी के मन में जिज्ञासा हुई, क्या ये वही तो पैसा नहीं है जो रात मैंने उसे दिया था? क्या उसने सचमुच रात को कुछ खाया कि नहीं? उसने जाकर समीप से पैसे को देखा जो मेज पर रख दिया गया था। उसका हृदय धक से रह गया, ये वही घिसा हुआ पैसा था। उस अंधे की दशा, उसके त्याग का स्मरण करके गोदावरी अनुरक्त हो उठी, कांपते हुए स्वर में बोली,
4: अब मुझे आप ये पैसा दे दीजिए, मैं 5 रुपए दूंगी।
0: एक बहन इस पैसे के 5 रुपए दे रही है, 5।
5: 5 रुपए?
3: 10 रुपए।
6: मेरी तरफ से 20 रुपए।
2: गोदावरी ने इस अंतिम व्यक्ति की ओर देखा, उसके मुख पर आत्माभिमान झलक रहा था, मानो कह रहा हो, यहाँ कौन है जो मेरी बराबरी कर सके। गोदावरी के मन में स्पर्धा का भाव जाग उठा, चाहे कुछ हो जाए इसके हाथ में यह पैसा न जाए। समझता है इसने 20 रुपए क्या कह दिए, सारे संसार को मोड़ ले लिया।
4: 40 रुपए?
7: 50 रुपए?
4: 50 रुपए?
3: हजारों आंखें गोदावरी की ओर उठ गईं, मानो कह रही हो, अब आप ही हमारी लाज रखिए।
4: 100 रुपए?
7: 120 रुपए?
4: 120 रुपए? अरे क्या बात
3: है। लोगों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, समझ गए इसी के हाथ विजय रही। निराश आंखों से गोदावरी की ओर ताकने लगे, मगर जो ही गोदावरी के मुंह से निकला,
4: 150।
3: चारों तरफ तालियां पड़ने लगीं। ऐसा लगा मानो किसी दंगल के दर्शक अपने पहलवान की विजय पर मतवाले हो गए हों।
7: 200 रुपए?
4: 200 रुपए?
7: भारत माता की, भारत माता की।
2: फिर चारों तरफ से तालियां पड़ी। प्रतिद्वंदी ने अब मैदान से हट जाने में ही अपनी कुशल समझी।
7: भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम,
8: वंदे मातरम, वंदे
3: मातरम। गोदावरी विजय के गर्व पर नम्रता का पर्दा डाले हुए खड़ी थी, और हजारों शुभकामनाएं उस पर फूलों की तरह बरस रही थी।
7: भारत माता की जय, भारत माता की जय।
2: जब लोगों को मालूम हुआ कि ये देवी मिस्टर सेठ की बीवी हैं, तो उन्हें ईर्ष्यामय आनंद के साथ उस पर दया आई। मिस्टर सेठ अभी फ्लावर शो में ही थे कि एक पुलिस के अफसर ने उन्हें यह घातक संवाद सुनाया। मिस्टर सेठ सकते में पड़ गए, मानो सारी देह शून्य पड़ गई हो। फिर दोनों मुठ्ठियां बांध लीं, दांत पीसे, होंठ चबाए और उसी वक्त घर चले। उनकी मोटरसाइकिल कभी इतनी तेज न चली थी। घर पर कदम रखते ही उन्होंने चिंगारों भरी आंखों से देखते हुए कहा,
9: अरे सारे शहर में तूफान मचा हुआ है, तुमने मेरे रुपए दिए क्यों?
4: इसलिए कि मैं उसे अपना ही रुपया समझती हूँ।
9: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें मेरा रुपया खर्च करने का कोई हक नहीं है।
4: बिल्कुल गलत, तुम्हारे खर्च करने का तुम्हें जितना इख्तियार है उतना मुझको भी है। हाँ, जब तलाक का कानून पास करा लोगे और तलाक दे दोगे तब न रहेगा।
9: गोदावरी!
3: मिस्टर सेठ ने अपना हैट इतने जोर से मेज पर फेंका कि वो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और बोले,
9: मुझे तुम्हारी अक्ल पर अफसोस होता है।

0: जानती हो तुम्हारी सुदृढ़ता का क्या नतीजा होगा? अरे मुझसे मुझसे जवाब तलब हो जाएगा। बताओ बताओ क्या जवाब दूंगा? जब ये जाहिर है कि आजादी चाहने वाले सरकार से दुश्मनी कर रहे हैं तो उनकी मदद करना सरकार के साथ दुश्मनी करना है।
1: अरे तुमने तो नहीं की आजादी के मत वालों की मदद।
0: अरे पर तुमने तो की है।
1: तो इसकी सजा मुझे मिलेगी या तुम्हें? अगर मैं चोरी करूं तो क्या तुम जेल जाओगे?
0: सुनो चोरी की बात और है ये बात और है।
1: तो फिर क्या गांधी जी के हाथ मजबूत करना चोरी या डाके से भी बुरा है?
0: हाँ हाँ सरकारी नौकर के लिए ये चोरी या डाके से कहीं बुरा है।
1: मैंने ये नहीं समझा था।
0: अगर तुमने ये नहीं समझा था तो ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम था। रोज अखबारों में देखती हो फिर भी मुझसे पूछती हो। यदि एक आजादी चाहने वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर बोलने खड़ा होता है तो बीसियों सादे कपड़े वाले पुलिस अफसर उसकी रिपोर्ट लेने बैठते हैं। आजादी चाहने वाली पार्टी के सरगनाओं के पीछे कई कई मुखबिर लगा दिए जाते हैं जिनका काम भी यही है कि उन पर कड़ी निगाह रखें। चोरों के साथ तो इतनी सख्ती कभी नहीं की जाती, इसलिए हजारों चोरियां डाके और खून रोज होते रहते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता और न पुलिस इसकी परवाह करती है। मगर पुलिस को किसी मामले में राजनीति की गंध भी आ जाती है तो फिर देखो पुलिस की मुस्तैदी। इंस्पेक्टर जनरल से लेकर कांस्टेबल तक एडियो तक का जोर लगा देते हैं। सरकार को चोरों से भय नहीं है, चोर सरकार पर चोट नहीं करता, मगर आजादी चाहने वाली पार्टी सरकार के इख्तियार पर हमला करती है। इसलिए सरकार भी अपनी रक्षा के लिए अपने इख्तियार से काम लेती है। ये तो प्रकृति का नियम है।
2: मिस्टर शेष आज दफ्तर चले तो उनके कदम पीछे रह जाते थे। जाने आज वहां क्या हाल हो। रोज की तरह दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने चपरासियों को डांटा नहीं, क्लर्कों पर रोब नहीं जमाया, चुपके से आकर कुर्सी पर बैठ गए। ऐसा मालूम होता था कि कई तलवारें सिर पर लटक रही हैं। साहब की मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते ही उनके प्राण सूख गए। रोज़ वह अपने कमरे में बैठे रहते थे, जब साहब आकर बैठ जाते तब आधा घंटे बाद फाइलें लेकर पहुँचते थे। आज वो बरामदे में खड़े थे, साहब उतरे तो झुककर उन्होंने सलाम किया, मगर साहब ने मुंह फेर लिया। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़कर पर्दा हटा दिया। साहब कमरे में गए तो शेर साहब ने पंखा खोल दिया, मगर जान सूखी जा रही थी कि देखें कब सिर पर तलवार गिरती है। साहब जिंहू कुर्सी पर बैठे, शेर ने लपक कर सिगार केस और दिया सलाई मेज पर रख दी। यकायक ऐसा मालूम हुआ मानो आसमान फट गया हो। साहब गरज कर बोले,
3: हे सेठ, हे दूर रहो, तुम दगाबाज आदमी है
0: जी,
3: सुना नहीं, तुम दगाबाज आदमी है।
0: ये आपका इल्जाम गलत है, मुझसे बड़ा राजभक्त इस देश में न होगा।
3: फॉरगेट यू ब्लडी, तुम नमक हराम आदमी है।
0: आप व्यर्थ ही अपनी जबान खराब कर रहे हैं।
3: चुप, तुम शैतान आदमी है।
0: आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं साहब, मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं है।
3: शट अप, चुप रहो, ये ब्लडी, तुमको सरकार 500 रुपया इसलिए नहीं देता कि तुम अपने वाइफ के हाथ से आजादी चाहने वाली पार्टी का चंदा दिलवाए है। तुमको इसलिए सरकार रुपया नहीं देता।
0: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब, मेरी वाइफ ने सरासर मेरी मर्जी के खिलाफ रुपए दिए हैं। मैं तो उस वक्त फ्लावर शो देखने गया था जहाँ मैंने मिस फ्रैंक का गुलदस्ता 5 रुपए में लिया। वहां से लौटा तो तब मुझे ये खबर मिली।
3: Shut up! I will kill you! तुम हमको बिल्कुल बनाता है।
4: ये बात अग्निशिला की भांति जो ही साहब के मस्तिष्क में घुसी उनके मिजाज का पारा उबाल के दर्जे तक पहुंच गया। किसी हिंदुस्तानी की इतनी मजाल कि उन्हें बेवकूफ बनाए। वो जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं, जिनके पास बड़े बड़े तालुकेदार सलाम करने आते हैं, जिनके नौकरों को बड़े बड़े रईस नजराना देते हैं, उन्हीं को कोई बेवकूफ बनाए, उनके लिए वह असह्य था। रूल उठाकर दौड़ा, लेकिन मिस्टर सेठ भी मजबूत आदमी थे। यूं वो हर तरह की खुशामत किया करते थे, लेकिन ये अपमान स्वीकार न कर सके। उन्होंने रूल को हाथ पर लिया और एक डग आगे बढ़कर ऐसा चांटा साहब के मुंह पर रसीद किया कि साहब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे इस प्रहार के लिए तैयार न थे। उन्हें कई बार इसका अनुभव हो चुका था कि नेटिव बहुत शांत, दब्बू और गमखोर होता है। विशेषकर साहबों के सामने तो उसकी जबान तक नहीं खुलती। कुर्सी पर बैठकर नाक का खून पोंछने लगा। फिर मिस्टर सेठ से उलझने की उसकी फिर हिम्मत नहीं पड़ी, मगर दिल में सोच रहा था कि इसे कैसे नीचा दिखाऊं। मिस्टर सेठ भी अपने कमरे में आकर इस परिस्थिति पर विचार करने लगे। उन्हें बिल्कुल खेद न था, बल्कि वो अपने इस साहस पर बहुत प्रसन्न थे।
0: इसकी बदमाशी तो देखो, मुझ पर रूल चला दिया। जितना दबता था उतना ही दबाया जाता था। अरे मेम यारों के लिए घूमा करती है, उससे बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। मुझ पर शेर बन गया था। अब दौड़ेगा दौड़ेगा कमिश्नर के पास, मुझे बर्खास्त कराए बगैर नहीं छोड़ेगा। ये सब कुछ गोदावरी के कारण हो रहा है। बेइज्जती तो हो गई, अब रोटियों को भी मोहताज होना पड़ेगा। मुझसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, बर्खास्तगी का परवाना आ जाएगा। अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी है हिंदुस्तानी, मगर अंग्रेजों से भी ज्यादा अंग्रेज है। होम मेंबर भी हिंदुस्तानी है, मगर अंग्रेजों के गुलाम। गोदावरी के चंदे का हाल सुनते ही उन्हें जूड़ी का बुखार चल जाएगा। न्याय की किसी से आशा नहीं, अब यहां से निकल जाने में ही कुशल है।
2: उन्होंने तुरंत एक इस्तीफा लिखा और साहब के पास भेज दिया। साहब ने उस पर लिख दिया, बर्खास्त।
4: दोपहर को जब मिस्टर सेठ मुंह लटकाए घर पहुंचे तो गोदावरी ने पूछा,
1: आज जल्दी कैसे आ गए?
0: अरे जिस बात पर लगी थी वो हो गई। अब रो सिर पर हाथ रख के।
1: बात क्या हुई, कुछ कहो भी तो।
0: बात क्या हुई? अरे बात क्या हुई, उसने आंखें दिखा दी। मैंने चांटा जमाया और इस्तीफा देकर चला आया।
1: अरे तो इस्तीफा देने की क्या जल्दी थी?
0: और क्या, सिर के बाल नचवा था। तुम्हारा यही हाल है तो आज नहीं तो कल अलग होना ही पड़ता।
1: खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आज से तुम भी गांधी जी के साथ शरीक हो जाओ।
0: तुम लजाओगी तो नहीं? ऊपर से घाव पर नमक छिड़कती हूँ।
1: लजाऊं क्यों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारी बेड़ियां कट गई।
0: अरे आखिर कुछ सोचा है काम कैसे चलेगा?
1: हाँ जी सब सोच लिया है, सब सोच लिया है। मैं चलाकर दिखा दूंगी। हाँ मैं जो कुछ कहूँ वो तुम किए जाना बस। अब तक मैं तुम्हारे इशारों पर चलती थी ना, अब से तुम मेरे इशारों पर चलना। मैं तुमसे किसी बात की शिकायत नहीं किया करती थी। तुम जो कुछ खिलाते थे खाती थी, जो कुछ पहनाते थे पहनती थी। महल में रखते महल में रहती, झोपड़ी में रखते झोपड़ी में रहती। उसी तरह तुम भी रहना जी। जो काम करने को कहूँ वही करना। फिर देखूँ कैसे काम नहीं चलता। देखिए बड़प्पन सूट बूट और ठाट बाट में नहीं है जी। जिसकी आत्मा पवित्र हो वही ऊंचा है। आज तक तुम मेरे पति थे और आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
2: सेठ जी उसकी ओर स्नेह की आंखों से देखकर हंस पड़े।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जप्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की पहली कड़ी। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, शाम के 5 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम को भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने अंकिता भाकत, कुमकुम अनिल मोहद और कीर्ति को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि गांधी जयंती केवल महात्मा गांधी को स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि उनके उच्चादर्शों को अपने आचरण में उतारने का प्रेरणा दिवस है। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित भारतीय हारमोनिका महोत्सव 2026 के 13वें संस्करण के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। कटरा बनिहाल सेक्शन पर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है और वंदे भारत ने चिनाब और अंची पुलों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। और जापान में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने चीनी ताइपे की नियेन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं रहूंगी आपके साथ सौम्या शर्मा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी हथियार के भी दुनिया को बदल सकती है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद सच्चाई, शांति और अहिंसा। और इन्हीं विचारों को अपने जीवन में उतारकर एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी की। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं। ये दिन केवल गांधी जी की जयंती मनाने का दिन नहीं, बल्कि उनके विचारों को याद करने और उनसे कुछ सीखने का अवसर भी है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1969 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वे एक समाज सुधारक थे, एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उन्होंने हमें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, जिसे आज हम स्वच्छ भारत के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा ताकत या हथियार की जरूरत नहीं होती, मजबूत इरादे, सच्चाई और अहिंसा भी बदलाव का रास्ता बन सकते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया। उन्होंने लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाया। और गांधी जी के इसी विचार से जुड़ा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी एक ही दिन हमें दो महत्वपूर्ण संदेश देता है, सत्य का साथ और अहिंसा का रास्ता। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2007 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया और गांधी जी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। जरा सोचिए, जो विचार भारत की मिट्टी में जन्मा, आज पूरी दुनिया उसे नमन कर रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि गांधी जी के सिद्धांत सार्वभौमिक है। साथियों, अहिंसा का मतलब केवल लड़ाई झगड़े से दूर रहना नहीं है। अहिंसा हमारी बातों, व्यवहार और सोच में भी दिखाई देती है। किसी को अपमानित ना करना, गुस्से में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करना, सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल या परेशान ना करना और किसी से विचार अलग होने पर भी उसका सम्मान करना, ये भी अहिंसा के ही छोटे छोटे रूप हैं। दोस्तों, गांधी जी ने हमें सिर्फ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में अपने मूल्यों को कैसे कायम रखा जाए। साथियों, भी हमने आपसे बात की महात्मा गांधी जी की जयंती, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। साथियों, 2 अक्टूबर एक ऐसा दिन है जब भारत दो महान विभूतियों को स्मरण करता है। आज हम महात्मा गांधी जी के साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते हैं। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर वर्ष 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल था। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत सरल था, लेकिन उनके संकल्प बेहद मजबूत थे। वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश का नेतृत्व दृढ़ता से किया। इसी समय उनका दिया हुआ प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान देश के जन जन की आवाज बन गया। इसमें भारत की दो महत्वपूर्ण शक्तियों, देश की रक्षा करने वाले जवान और देश का पेट भरने वाले किसान के प्रति सम्मान और उनके महत्व का संदेश छिपा था। आज के युवाओं के लिए शास्त्री जी का जीवन एक महत्वपूर्ण प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि बड़ा पद व्यक्ति को महान नहीं बनाता, बल्कि उसके विचार, कर्म और चरित्र उसे महान बनाते हैं। आज जब हम शास्त्री जी को याद कर रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अपने काम को ईमानदारी से करना, अनुशासन बनाए रखना और देश की प्रगति में अपना योगदान देना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए, उनकी जयंती पर हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक मजबूत, आत्मनिर्भर और बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हमने आपसे चर्चा की। अब सुनवाते हैं आपको सत्याग्रह फिल्म का ये गीत।

0: साथियों, भी आप सुन रहे थे फिल्म सत्याग्रह का ये गीत, जिसमें आवाज थी राजीव सुदर्शन, शिवम पाठक, श्वेता पंडित की, गीतकार थे प्रशून जोशी और संगीतकार थे सलीम सुलेमान। और कार्यक्रम श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, मुश्किल समय में सकारात्मक कैसे रहें, इस विषय पर डॉक्टर अवनींद्र कौशिक से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत।
1: हमारी युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। हम उनके लिए महत्वपूर्ण भेंट वार्ताएं लेकर आते रहते हैं, और ऐसा ही जो आज हमने विषय रखा है, मुश्किल समय में हम सकारात्मक कैसे रहें। और इस विषय से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी के चित परिचित हैं डॉक्टर अवनींद्र कौशिक जी, जो झांसी से पधारे हुए हैं हमारे बीच में, जो कैरियर काउंसलर हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में।
2: थैंक यू सर।
1: जैसा कि हमारा विषय है कि मुश्किल समय में हम सकारात्मक कैसे रहें, तो जो मुश्किल शब्द इसमें आया है, क्या वास्तव में मुश्किल समय होता है या हमारी सोच उसको मुश्किल या सरल या सुखद या दुखद ये फील कर लेती है?
2: हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। क्या है, जब सब कुछ हमारे प्लान से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो समय मुश्किल नहीं होगा।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जब चीज़ें हमारे प्लान से नहीं चलेंगी, तो फिर हमें वो मुश्किल लगने लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, हमारे रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो वो फिर समय मुश्किल हो जाता। और मुश्किल तब बढ़ती है जब हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं कि ये दिक्कत है, और उस समय एक पॉजिटिव बनने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सब सही है, ठीक है, और अंतर घुटन हो रही है लेकिन बाहर हम नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर समय मुश्किल हो जाता।
1: देखिए, मतलब परिस्थितियां वही रहती हैं, केवल मना स्थिति जिस तरह से सोच ले, अगर उसको अच्छा सोच ले तो वो अच्छा समय है, और उसको कठिन सोच ले तो वो मुश्किल समय है।
2: हाँ, क्या है कि जो हमारे प्लान है और जिंदगी के प्लान है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, जिंदगी और कुछ प्लान कर रहे हैं,
1: जी हाँ जी,
2: और हम उसी प्लान पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें यही करना है, तो फिर वो समय मुश्किल होते चला जाता है। जैसे कोई बहुत कोशिश कर रहा है नौकरी के लिए, और कोशिश के बाद उसका नहीं हो रहा है, लेकिन लाइफ हो सकता है दूसरा प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे हमें ये रियलाइज करना होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है।
1: जी हाँ, जी हाँ,
2: या तो हमारी मेहनत पे कमी है, या जो हमारे लक्ष्य है वो हमारी क्षमताओं के ऊपर है।
1: जी हाँ, जी।
2: और जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा, तब तक चीज़ें और बिगड़ती चली जाएंगी।
1: बिल्कुल। हम अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पूछना चाहेंगे कि जब मुश्किल समय होता है तो व्यक्ति सकारात्मक क्यों नहीं रह पाता है, वो नकारात्मक विचारों में ही क्यों ज़्यादा जाता है?
2: देखिए, क्या है, जो हमारा दिमाग है ना, वो बड़ा कमाल का किस्सा गो है,
1: जी,
2: स्टोरी टेलर। और दिमाग, अगर हमारे पास पूरे दिन में 10 चीज़ें हुई हैं, 10 में से 7 बहुत अच्छी हुई हैं, 1 ठीक ठाक हुई है, 2 गड़बड़ हो गई, तो जो हमारा दिमाग है वो जो कहानियाँ सुनाना शुरू करेगा, वो सिर्फ उन 2 की सुनाएगा।
1: जी हाँ।
2: और 2 की इतनी नेगेटिव सुनाएगा कि बाकी जो 8 अच्छे हुए हैं वो हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे।
1: जी जी।
2: हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, तो वो हमें सिर्फ 2 दिखेंगे।
1: जी हाँ, जी हाँ, जी।
2: और दूसरा क्या हो रहा है कि हमें ये देखना है कि जो हमने अभी बात की थी रियलाइजेशन की,
1: जी हाँ,
2: तो अगर हम ये रियलाइज कर लेंगे कि ये नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, और फिर हम उसमें देखें कि हम किन किन चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: जी हाँ, जी।
2: अक्सर हम कोशिश ये करते हैं कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं, हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे हम नेगेटिव हो, कुछ भी हो, अनकंट्रोलेबल। अगर आप कहीं पर ट्रैफिक में जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस गए, आप कितना भी हॉर्न बजा लें, हूटर बजा लें, आपके और आप कितने ही चिल्ला लें, वो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आप शांत बैठ जाएँ, लाइट के ग्रीन होने का इंतज़ार करें, कुछ गाने सुन लें, वो आपके कंट्रोल में है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो दिक्कत यही हो रही है कि जो हम

0: उन चीज़ों को कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं, तो और नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है।
1: तो जो मुश्किल समय जब आता है तो जो हमारा मानसिक संतुलन है या मानसिक स्वास्थ्य है किस तरह से प्रभावित करता है ये मुश्किल समय?
0: देखिए, जो मुश्किल

0: तो वो वाई मी,
1: हम्म,
0: तो मैं ही क्यों फेल हो रहा हूँ, मैं ही क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ।
1: जी
0: और उसके बजाय अगर हम ये बात करें कि अब क्या करें, व्हाट नाउ, अब क्या करें कि स्थितियां सुधर सकें, तो वो एक्शन है।
1: जी हाँ, जी
0: और
1: हाँ,
0: जब आप ऐसे दुखी होकर बैठते रहेंगे, कोसते रहेंगे अपने आप को, अपने भाग्य को, तो चीजें बिगड़ेंगी। तो उसके बजाय कोशिश ये होने चाहिए कि अब हम क्या एक्शन लें,
1: जी
0: ताकि हम धीरे धीरे, अचानक एक दिन में बिगड़ी हुई परिस्थितियां नहीं सुधरेंगे, ना रिश्ते सुधरेंगे, ना जो आप लगातार असफल हो रहे हैं वो एक रातों रात आप सफल नहीं होंगे। लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा मन पॉजिटिव होगा कि हमने एक एक्शन लिया, भले आपने एक कदम बढ़ाया
1: बिल्कुल
0: हो,
1: बिल्कुल
0: लेकिन आपको ये लगेगा कि नहीं, अब हम परिस्थितियों को सुधार सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में हैं, तब तो हम बहुत अच्छे से सकारात्मक रहते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं। लेकिन जब हम विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं और जो नियंत्रण है वो हमारे काबू में नहीं रहता है, उस समय हमें अपने आप को सकारात्मक बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। तो कैसे अपना जो पहलू है सकारात्मक, उसको बरकरार रखें
0: हाँ,
1: मुश्किल समय में?
0: ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम 24 घंटे ना तो पॉजिटिव रह सकते ना नेगेटिव रह सकते। कभी ना कभी हम पॉजिटिव होंगे, कभी ना कभी हम नेगेटिव होंगे।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: जो आपने पूछा है,
1: जी
0: तो जब जब हमारा प्लान फेल होगा तो हम नेगेटिव होंगे, और
1: जी
0: जब
1: हाँ
0: नेगेटिव
1: बिल्कुल
0: होंगे तो हम सिर्फ नेगेटिव पक्ष को ही सोचेंगे, कि उस पॉजिटिव को नहीं सोचेंगे। वो बात वही आएगी कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। और उसके बजाय अगर हम थोड़ा सा ये रियलाइज कर लें कि हाँ, गड़बड़ हो रहा है,
1: जी
0: और जो हम हमसे ज़्यादा जानने वाला है, या सिर्फ वो व्यक्ति जो आपको बड़ी शिद्दत के साथ सुन सके बगैर जजमेंट के, उसे आप अपने मन की बात कह सकें बस, तो आपको लगेगा कि अब हमने जितना भी गुबार भरा हुआ था हमारे अंदर, वो हमने निकाल दिया। और उसके बाद फिर आप एक्शन लेना शुरू करें। देखिए, जो बात शुरू हुई थी कि हमारे प्लान और ज़िंदगी के प्लान बिल्कुल डिफरेंट है,
1: डिफरेंट है
0: नहीं होंगे। आपने कुछ सोचा है, जिंदगी ने कुछ और सोचा है, तो अब तो आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन क्या किया जा सकता है। या तो हम अपना टारगेट बदल लें, कुछ अपना सोच बदल लें, जो हमारी प्लानिंग है उस प्लानिंग को हम मॉडिफाई कर लें, तब जाके हम परिस्थितियां सुधार सकते। लेकिन आप एज इट इज रहे, सिर्फ आप सोचते रहे, तो नहीं होगा।
1: बिल्कुल
0: तो बस आपको तो ये देखना है कि हम इसमें से क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अभी बारिश हो रही है, तो बारिश रोकना आपके नियंत्रण में नहीं है,
1: बिल्कुल
0: आप
1: बिल्कुल
0: कितनी चिल्लाते रहे,
1: हाँ,
0: लेकिन छाता खोलना आपके नियंत्रण
1: नियंत्रण
0: में
1: में
0: है,
1: है
0: तो आप कम से कम छाते तो खोल सकते हैं।
1: जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ
0: तो हमें, जब हमारी परिस्थितियां खराब हो, तो हम रातों रात नहीं सुधार सकते, लेकिन हम वो छोटे छोटे स्टेप्स जो हमारे कंट्रोल में है, हम अपना टारगेट थोड़ा सा डाउन कर लें, हम अपने प्रयास को थोड़ा सा बढ़ा दें,
1: जी हाँ
0: तो हम थोड़ा सा, जब थोड़ी सी परिस्थितियां चेंज होंगी, तो फिर हमें लगेगा कि अब थोड़ा सा मन पॉजिटिव हो रहा है।
1: जी हाँ, जी हाँ। कई बार जो हमारे युवा हैं बहुत मुश्किल समय में होते हैं, नकारात्मक जो स्थिति है उससे गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए उनके जो परिवार वाले हैं, मित्रगण हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस परिस्थिति से उबारने के लिए?
0: हाँ, देखिए, जब कोई भी युवा नकारात्मक हो, तो सिर्फ उस समय जरूरत होती है कि कोई उसको सुनने वाला हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अब कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, मैं भी हूँ, तो हम लोगों को सुनते हैं,
1: जी
0: और बगैर जजमेंट के और बगैर कमेंट के सुनते हैं। काउंसलिंग बाद में होते, पहले उसको सुन लेते
1: सुना
0: हैं, कि
1: जाता
0: उसके मन का जो भरा हुआ है वो निकल जाए
1: पहले
0: एक
1: निकाल
0: बार।
1: जाए।
0: और लोग इसलिए अपने मन की बात नहीं कहते किसी से, उन्हें लगता है सामने वाला उन्हें जज करेगा, उनकी कमियों को हाईलाइट करेगा। तो उनके परिजनों से, उनके दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपको लगे कि बहुत ही नकारात्मक हो रहा है, डिप्रेशन में जाने जैसी संभावनाएं हो रही हैं, तो सिर्फ आप उसके दिल की बात सुन लें। जो वो बोल रहा है, आप बगैर जजमेंट के, बगैर किसी सवाल जवाब के उसको सुने। और वो आपसे सलाह लेने नहीं आया है, वो सिर्फ अपने दिल की बात कहने आपसे आया है, तो आप बिल्कुल सुने, फिर आप उसकी हेल्प करें।
1: जी हाँ, जी हाँ
0: और वो आपके पास हेल्प के लिए आया है, वो आपके कमेंट सुनने के लिए नहीं आया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आज चूंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये एक बहुत गहरा सवाल है। कई बार माता पिता अपने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने लगते हैं, आप स्वयं जाइए, स्वयं ये काम कराइए, और उनका कहना ये होता है कि छोटी छोटी मुश्किलों से आप गुजरेंगे तो मजबूत बनेंगे, तो बहुत सारी समस्याओं से आप निकलेंगे तो मजबूत बनेंगे। तो क्या मानना है आपका इस बारे में?
0: देखिए, हमें ये बात सही है कि हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देनी चाहिए, उन्हें थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए।

0: छोटी समस्याएं देना चाहिए जिससे वो डिसीजन ले सके। अगर
1: जी
0: डिसीजन गलत भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: लेकिन आप उस
1: लगातार।
0: हाँ आप उसको ये मान के नहीं चलें कि वो आपके बराबर का है,
1: हाँ
0: तो आप उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दें कि जो उसकी उम्र से और अनुभव से बहुत ज़्यादा हो।
1: हाँ
0: और अगर लगातार वो उसमें फेल हुआ तो वो नेगेटिव होगा,
1: नेगेटिव होगा।
0: फिर आपके कमेंट्स होंगे, नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो वो और नेगेटिव हो जाएगा, फिर उसका कॉन्फिडेंस भी डैमेज हो जाएगा, उसको लगेगा मैं इतना सा काम भी नहीं कर सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी देना है हमें उसकी उम्र और अनुभव और जो एक्सपोजर मिला है उसके हिसाब से देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या संकेत ऐसे शुरुआती मिलते हैं कि जो व्यक्ति है वो नकारात्मक दिशा की ओर ज्यादा बढ़ रहा है?
0: हाँ देखिए, अगर बड़ा सीधा सा रहता है कि अगर आप नकारात्मक थे तो सबसे पहले तो ये देखें आप किन के साथ ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसी सोच के हो जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: और जब आदमी सिर्फ फेल होने की बात करे, असफलताओं की बात करे, छोटी छोटी चीज़ों में हाथ खड़े कर दे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो जब उसका सेल्फ एस्टीम डाउन होने लगे, वो सिर्फ अपनी कमियाँ देखने लगे कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप उसको कुछ भी काम के लिए बोले, मैं अक्सर देखता हूँ बच्चों को कि ठीक है तुम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ लो थोड़ा बहुत। सर इंग्लिश नहीं आती, तो उन्होंने ये मान लिया है कि हम इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो वो किसी न किसी सराउंडिंग में रहे हैं जहाँ पे उन्होंने ये सुना है कि इंग्लिश बड़ा मुश्किल है। अगर लोग सिर्फ अपनी कमियों का जिक्र कर रहे हैं, फेल होने का जिक्र कर रहे हैं, छोटे छोटे जो प्रयास हैं उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि ये वो नकारात्मकता की तरफ जा रहा है।
1: बिल्कुल। देखिए, मुश्किल समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने रख सकता है। हो सकता है कोई धन के उसमें फंस गया हो, अर्थ में फंस गया हो, वो भी उसके लिए मुश्किल समय है। कोई विद्यार्थी है, उसका एग्ज़ाम ना निकल रहा हो, बार बार प्रयास करने का, वो भी उसका मुश्किल समय है। तो हर व्यक्ति के लिए मुश्किल समय अलग अलग हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति इन मुश्किल समयों में फंसा हुआ है, अब वो किस तरह से बाहर निकले, अपने आप में किस तरह से प्रयास करे कि वो सकारात्मक हो सके?
0: हाँ आपने बिल्कुल सही बोला है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा है मुश्किल की।
1: जी हाँ
0: किसी बहुत बड़े उद्योगपति के लिए 50 करोड़ का घाटा कुछ भी नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: और किसी के लिए 10 हज़ार का नुकसान बहुत बड़ी
1: बहुत
0: बात हो
1: बड़ी
0: जाती
1: मायने
0: है।
1: रखती।
0: एक एक बच्चा उसके 2% कम हो गए तो उसको लगता है सब कुछ बिगड़ गया, और
1: जी
0: एक
1: हाँ
0: 50% में भी खुश है।
1: खुश है।
0: तो यही है कि जो मुश्किल समय है ये हमारा एक माइंडसेट कि हमने उसको मुश्किल मान लिया। ठीक है आपके 2% कम आए हैं, कोई
1: जी
0: दिक्कत
1: हाँ
0: नहीं, अगले एग्जाम में आ जाएंगे।
1: बिल्कुल
0: और अगर अगर किसी को घाटा हो गया है तो अगर आप सिर्फ घाटे के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आप उस घाटे को कभी कवर नहीं कर
1: कभी नहीं।
0: पाएंगे। तो अगर आप ये सोचें इसको कैसे कवर करना है और जो जो नुकसान हुए हैं उसको, जिन जो कारण थे उन कारणों को कैसे हटाया जा सकता है, वैसे ही उस छात्र के साथ है कि अगर उसके 2% कम आए हैं तो वो एक एनालाइज करे। पहले तो वो रियलाइज कर ले कि उसके 2% कम आए हैं,
1: जी हाँ
0: और वो ये नहीं कि मेरी किस्मत खराब है, 2% कम आए हैं तो वो एक एनालाइज उसको करना होगा कि 2% कम क्यों आए हैं। और आप आ गए हैं तो आ गए हैं, अब आपके कंट्रोल के बाहर है वो। अब आप 2% तो आपके नहीं बढ़ेंगे कैसे भी,
1: जी
0: आगे 2% और 4% बढ़ जाए वो आपके नियंत्रण में। तो बड़ा सीधा सा है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण के बाहर हैं,
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल
0: उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं।
1: जी हाँ जी हाँ। मुश्किल समय में सकारात्मक कैसे रहें, आज जो हमने विषय रखा था, तो इस विषय के बारे में अंत में क्या कहना चाहेंगे, साइकोलॉजिस्ट होने के नाते क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे 2-3 पॉइंट में हमारे सुनने वाले श्रोताओं के
0: देखिए
1: लिए?
0: सबसे पहले तो मैं युवाओं से ये बोलूँगा कि आप 24 घंटे ना तो पॉजिटिव रह सकते हैं ना नेगेटिव रह
1: जी हाँ जी
0: सकते हैं।
1: हाँ
0: और दूसरा बात है, जो हो गया सो हो गया,
1: जी
0: आगे नहीं हो उसके बारे में सोचें। बहुत सी बार असफलताओं में हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो हो जाती परिस्थितिवश हो जाती, तो आप अपने आप को दोष देना बंद करें।
1: जी
0: जो हो गया सो छोड़ो,
1: बिल्कुल
0: आगे नहीं हो उसके बारे में सोचेंगे, और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपके नियंत्रण में है। नौकरी मिलना नहीं मिलना वो आपके हाथ में नहीं है, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना नहीं होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना
1: वो आपके हाथ में
0: वो
1: है,
0: आपके हाथ में, उसकी तैयारी करना वो आपके हाथ में है।
1: बिल्कुल
0: आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं परिजनों से, आपके लाइफ पार्टनर से हैं, तो हो सकता है आपको अपने स्वभाव बदलने की ज़रूरत हो, वो आपके नियंत्रण में, आप सामने वाले के स्वभाव बदलने पर लगे हुए हैं।

0: आप अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें पहले,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: मेरा उनसे यही कहना है जो बचपन है सिर्फ वही कर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए हमारे सुनने वाले श्रोता ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे डॉक्टर अवनींद्र कौशिक जी ने बताई, जो झांसी से पधारे हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हैं, कैरियर काउंसलर हैं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुश्किल समय में सकारात्मक कैसे रहें। हमारे सुनने वाले साथी युवा जरूर लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी छतरपुर के स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता मुश्किल समय में सकारात्मक कैसे रहें विषय पर डॉक्टर अवनींद्र कौशिक से रविंद्र कुमार प्रजापति की बातचीत। जंगल की खामोशी में भी एक आवाज होती है, पत्तों की सरसराहट में भी एक कहानी होती है, और हर वन्य जीव के अस्तित्व में हमारी धरती की एक सांस छिपी होती है। साथियों, आज की बात एक ऐसे विषय की जो केवल जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे हम सबके भविष्य से जुड़ा है। विषय है वन्य जीव सप्ताह, जो हर वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत की धरती जैव विविधता से भरपूर है। कहीं जंगलों में बाघ की दहाड़ सुनाई देती है, कहीं हाथियों के झुंड दिखाई देते हैं, तो कहीं रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट प्रकृति को जीवंत बना देती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जंगल कम होते गए तो इन जीवों का घर कहाँ बचेगा? अगर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता गया तो इसका असर हम इंसानों पर भी पड़ेगा। वन्य जीव हमारे पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जंगल और वन्य जीव एक दूसरे से जुड़े हैं, और यही प्राकृतिक व्यवस्था हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है। आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी में से एक है प्रकृति के साथ विकास का संतुलन बनाए रखना। हम वन्य जीवों की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? साथियों, बहुत कुछ, और शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। जंगलों और प्राकृतिक स्थानों पर कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, वन्य जीवों को परेशान न करें और उनके प्राकृतिक आवास का सम्मान करें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, और अगर कहीं वन्य जीवों के अवैध शिकार या तस्करी जैसी गतिविधियों की जानकारी मिले तो संबंधित अधिकारियों को सूचित जरूर करें। साथियों, प्रकृति को बचाइए, वन्य जीवों को बचाइए, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। साथियों, अभी हमने आपसे बात की वन्य जीव सप्ताह, जो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, और वक्त है आज की रोजगार सूचना का। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है पैरा मेडिकल स्टाफ, पदों की संख्या है 590। शैक्षणिक योग्यता, पदों से संबंधित डिग्री और डिप्लोमा। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.rrb.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी आज की रोजगार सूचना, और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सौम्या शर्मा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
6: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं उपान्या पांड्या और अलाप मुझगांवकर की आवाज में फिल्म मकड़ी से।

विशाल भारद्वाज का संगीत गुलजार के लिखे बोल, उपाना पांड्या और अलाप मचगांवकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मकड़ी से। और कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा देते हैं अमित त्रिवेदी, अरमान मलिक, तन्मय चौधरी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में गीत सुनते हैं, चलिए फिल्म चिल्लर पार्टी से।

अमित त्रिवेदी का संगीत नितेश तिवारी के लिखे बोल, अमित त्रिवेदी, अरमान मलिक, तन्मय चौधरी और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में ये गीत सुना आपने फिल्म चिल्लर पार्टी से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। विशेष कार्यक्रम केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत लीजिए सुनते हैं विशेषज्ञ श्री प्रशस्त कुमार दीक्षित सीईओ केबीएलपीए से दीपा सिंह की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका जहां पानी कभी उम्मीद बनकर आता है तो कभी इंतजार बनकर रह जाता है। सूखे की मार, खेती के लिए पानी की कमी और पलायन की चुनौती ने लंबे समय से इस क्षेत्र के विकास को प्रभावित किया है। ऐसे में केनबेतवा लिंक परियोजना को बुंदेलखंड के लिए एक बड़ी जल परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जुड़ी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी के बेसिन तक पहुंचाना है। परियोजना से सिंचाई, पेयजल और जल उपलब्धता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही इससे बुंदेलखंड के कई जिलों में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलने की संभावना है। लेकिन किसी भी बड़ी परियोजना के साथ कुछ सवाल और कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। पानी का बंटवारा कैसे होगा, पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, स्थानीय लोगों और वन्य जीवों पर इसका प्रभाव क्या होगा, और सबसे अहम, इस परियोजना से बुंदेलखंड के आम किसान और ग्रामीणों को कितना लाभ मिलेगा।
2: इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं श्री प्रशस्त कुमार दीक्षित। आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी में। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद मैडम, आपको नमस्कार और हमारे श्रोताओं को नमस्कार।
2: आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, पहला सवाल है, आसान भाषा में अगर बात करें तो आखिर केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
3: देखिए, इस परियोजना को समझने के लिए सबसे पहले बुंदेलखंड की परिस्थितियों को समझना जरूरी है।
2: बिल्कुल,
3: बुंदेलखंड वीरता, संस्कृति और परिश्रम की धरती है
2: जी।
3: यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन पानी की अनिश्चितता और उपलब्धता लंबे समय से खेती और क्षेत्र के विकास में एक बड़ी चुनौती रही है
2: जी। जी जी,
3: इसी व्यापक समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की थी, जिसका उद्देश्य देश में नदियों को आपस में जोड़कर उपलब्ध जन संसाधनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग करना है
2: जी।
3: केन बेतवा लिंक परियोजना इसी राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है
2: जी। जी,
3: बहुत सरल शब्दों में यदि कहें तो इससे इसमें नहर प्रणाली के माध्यम से केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके
2: जी। जी,
3: इसके अन्य महत्वपूर्ण घटकों जैसे लोअर ओर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना, इसलिए मैं कहूँगा कि यह केवल दो नदियों को जोड़ने की परियोजना नहीं है, यह वास्तव में बुंदेलखंड को पानी, खेती और भविष्य को अधिक सुरक्षित बनाने की परियोजना है
2: जी। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाने की कोशिश की है कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है
3: जी।
2: सर, हमारा दूसरा सवाल यही है, परियोजना में दाउधन बांध और 216 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी नहर की भी बहुत अहम भूमिका है
3: जी।
2: आम श्रोता को समझाएं कि पानी एक नदी से दूसरी नदी तक कैसे पहुँचेगा।
3: इसको भी बहुत सरल तरीके से समझाया जा सकता है
2: जी।
3: केन नदी पर खजुराहो से लगभग 40 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिलों में
2: जी जी।
3: दौधन बांध का निर्माण किया जा रहा है
2: जी।
3: इस बांध में केन नदी का अतिरिक्त पानी समाहित होगा
2: जी जी।
3: वहां से लगभग 216 किलोमीटर लंबी केन बेतवा लिंक नहर निकलेगी
2: जी
3: और
2: जी।
3: झांसी के पास बरुआ सागर में मिलेगी, वहां से वो बेतवा नदी में मिल जाएगी। यानी बहुत आसान भाषा में कहें तो केन का अतिरिक्त पानी दौधन में संग्रहित होगा और वहां से नहर के माध्यम से बेतवा बेसिन तक पहुंचेगा। इसकी एक विशेषता है कि यह पानी केवल अंतिम स्थान तक नहीं जाएगा, नहर के मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। बुंदेलखंड में पानी की हर बूंद का महत्व है, इसलिए हमारी कोशिश है कि केवल पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित नहीं करने के, बल्कि उसको योजनाबद्ध और अधिकतम उपयोग उसका हम कर सकें, इस प्रकार से इस योजना को बनाया गया है।
2: बिल्कुल, तो वाकई पानी एक जगह से एक नदी से दूसरी नदी तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, बहुत ही बखूबी आपने बता दिया। सर, हमारा तीसरा सवाल यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के किन

0: जिलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा? कौन कौन से जिले शामिल हो रहे हैं इस परियोजना से?
1: देखिए, मुख्य रूप से तो बुंदेलखंड पूरे को ही फायदा होगा, लेकिन जो चिन्हित किए गए हैं और योजनाबद्ध तरीके से, उनमें मध्य प्रदेश में पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश में बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को भी इसका लाभ मिलेगा। दोनों जिलों में कुल मिलाकर 10 लाख हेक्टर से ज़्यादा में वार्षिक सिंचाई का लक्ष्य है, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा जमीन जो है मध्य प्रदेश में ही है। देखिए, ये आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे हमें किसान को देखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: बुंदेलखंड का किसान मेहनत करने में कभी पीछे नहीं रहा।
0: जी।
1: उसकी बड़ी चुनौती ये रही है कि यदि समय पर बारिश ना हो तो पूरी फसल जोखिम में आ जाती है। जब सिंचाई अधिक विश्वसनीय होगी तो फसलों को सूखे से बचाने के लिए उत्पादन बढ़ाने, नुकसान कम करने और किसान परिवारों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए विकसित भारत के संबंध में मैं इसे केवल सिंचाई का एक बुनियादी ढांचे के रूप में नहीं देखता। जल सुरक्षित गांव, अधिक सक्षम किसान और मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ये विकसित भारत के महत्वपूर्ण आधार हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, देखा जाए तो बुंदेलखंड में रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या रही है। अक्सर लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं, तो क्या इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर कुछ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे?
1: जी हाँ, यह भी इस परियोजना के एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक पक्ष है।
0: जी।
1: परियोजना के निर्माण और संचालन दोनों चरणों में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
0: जी जी।
1: इसके साथ ही स्थानीय व्यापार, परिवहन, छोटे व्यवसाय और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को भी लगातार कारोबारी अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं इसके दीर्घकालीन प्रभाव को और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ।
0: बिल्कुल।
1: जब सिंचाई का विस्तार होगा तो कृषि गतिविधियाँ बढ़ेंगी, कृषि बढ़ेगी तो उसके साथ साथ कृषि आधारित उद्योग, प्रसंस्करीकरण जिसको प्रोसेसिंग कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा, भंडारण, परिवहन और विपणन जैसी गतिविधियों की भी आवश्यकता बढ़ेगी। यानी पानी खेत तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव केवल फसल तक सीमित नहीं होता, वह पूरी ग्रामीण और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में एक श्रृंखला बनाता है।
0: जी जी।
1: बेहतर बुनियादी ढांचा और परिवहन कनेक्टिविटी से नए स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और वाणिज्यिक बाजारों में विकास की भी संभावनाएँ बढ़ेंगी। हमारी अपेक्षा है कि इन अवसरों से रोजगार के लिए होने वाले जो संकटपूर्ण पलायन होता था बुंदेलखंड से, वह कम हो और बुंदेलखंड के युवाओं को अपने क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। यानी पानी टिकेगा तो खेती बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि कहीं भी पानी पहुंचेगा तो उस जगह की दिशा और दशा दोनों बदलती हैं। वाकई रोजगार के अवसर जाहिर तौर पर इस परियोजना के आने के बाद बढ़ेंगे। सर, कहा जा रहा है कि इस परियोजना से खेतों में तो पानी जाएगा ही, बल्कि जो पीने के पानी की वहाँ बड़ी समस्या रही है तो वो भी दूर हो सकती है, इस बात में कितनी सच्चाई है?
1: यह बिल्कुल सही है कि केन बेतवा लिंक परियोजना केवल सिंचाई केंद्रित परियोजना नहीं है।
0: जी जी।
1: पेयजल भी इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। इसके माध्यम से करीब करीब 62 लाख से ज्यादा लोगों को पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य है। इसमें मध्य प्रदेश के लगभग 41 से 44 लाख और उत्तर प्रदेश के लगभग 21 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। परियोजना डिजाइन में पेयजल के लिए करीब करीब 95 मिलियन घन मीटर पानी का स्पष्ट आवंटन किया गया है। लेकिन पेयजल के इस आंकड़ों को हमें केवल घन मीटर में नहीं देखना चाहिए।
0: जी जी।
1: बुंदेलखंड के अन्य परिवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पानी की उपलब्धता रोजमर्रा के जीवन से सीधी जुड़ी हुई है।
0: जी जी।
1: पाइपलाइन और नल व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुँचने से जल जनित बीमारियों की कमी और महिलाओं पर पानी लाने के बोझ में कमी की हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है। इसलिए परियोजना का एक पक्ष खेतों की सिंचाई है तो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है परिवार के घर तक सुरक्षित पानी।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इस परियोजना के आने के बाद न केवल खेतों में पानी पहुंचेगा बल्कि लोगों के घरों तक भी शुद्ध जल पहुंचेगा। सर, इस परियोजना से क्या बिजली उत्पादन भी संभव है?
1: जी हाँ, यह परियोजना जल संसाधन विकास के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी योगदान देगी।
0: जी।
1: परियोजना में 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का प्रावधान है, यानी कुल 130 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। यह इस परियोजना की बहुउद्देशीय प्रकृति को दर्शाता है। एक ओर पानी को सिंचाई और पेयजल के लिए हम प्रदान करेंगे और दूसरी ओर उसी बुनियादी ढांचे से जल विद्युत और सौर ऊर्जा की संभावनाओं को भी जोड़ रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: मेरे विचार से भविष्य में भी बड़ी जल परियोजनाओं की दिशा में भी यही होना चाहिए, जल ऊर्जा और आधुनिक तकनीक का बेहतर समन्वय।
0: बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जल ऊर्जा और तकनीक का समन्वय बेहद जरूरी है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। सर, इस परियोजना के कारण जिन परिवारों की जमीन या घर प्रभावित हो रहे हैं उनके पुनर्वास और मुआवजे के लिए क्या व्यवस्था की गई है?
1: जी, यह परियोजना का एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पक्ष है।
0: बिल्कुल,
1: हमारा स्पष्ट मानना है किसी भी विकास परियोजना की सफलता केवल उसके बांध, नहर और अन्य संरचनाओं से नहीं मापी जा सकती।
0: जी जी।
1: परियोजना से प्रभावित परिवारों के साथ कैसा व्यवहार हुआ यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केन बेतवा परियोजना की पुनर्वास योजना सहमति आधारित है।
0: जी जी।
1: प्रभावित परिवारों को सामान्य भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत मुआवजे प्रदान होता 2013 का है या उससे अधिक उदार विशेष पैकेज का भी विकल्प दिया गया है और सभी प्रभावित परिवारों ने, आपको जान के खुशी होगी कि विशेष पैकेज चुना है क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इसके अंतर्गत परिवारों को भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार निर्धारित दर जो कि 12.5 लाख प्रति हेक्टर है या उससे ज़्यादा का भुगतान किया जाता है। मकान, पेड़, कुएं, ट्यूबवेल और अन्य अचल संपत्तियों का भी मुआवजा कानून के अनुसार ही वितरित किया जाता है।
0: बिल्कुल, तो वाकई ये परियोजना का बहुत ही संवेदनशील पक्ष है। उम्मीद करते हैं कि सारे लोग जिन उनको पुनर्वास और मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा जिनकी ज़मीन या घर प्रभावित हुए
1: जी।
0: हैं। सर, इतनी बड़ी परियोजना में अलग अलग विभागों और दो राज्यों के बीच तालमेल कैसे बनाया जा रहा है ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
1: ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषताओं में इसका एक संस्थागत समन्वय मॉडल है। 22 मार्च 2021 को यशस्वी श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता MOA पर हस्ताक्षर हुए। इससे परियोजना को न केवल एक राज्य की योजना के रूप में बल्कि केंद्र और दोनों राज्यों की साझा परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने का संस्थागत आधार मिला। इसके लिए एक समर्पित प्राधिकरण बनाया गया है KBLPA, जिसका मैं इस समय CEO हूँ, और एक इसके ऊपर भी एक उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र बनाया गया है।
0: जी जी।
1: जल शक्ति मंत्रालय नीति, वित्तीय सहायता, अंतर्राज्यीय समन्वय और केंद्र सरकार निगरानी की भूमिका निभाता है। KBLPA योजना करता है, निविदा प्रक्रिया, निर्माण प्रबंधन, अनुबंध इत्यादि परियोजना के घटकों को एकीकृत कार्यान्वयन के रूप में देखता है।
0: बिल्कुल।
1: मध्य प्रदेश सरकार डूब क्षेत्र, भूमि, वन और पर्यावरण, पुनर्वास एवं राज्य के भीतर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े कार्यों में सहयोग करती है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने क्षेत्र में नहर व जल वितरण व्यवस्था, भूमि और स्थानीय प्रशासनिक समन्वय की भी जिम्मेदारियां निभाती है।
0: जी जी।
1: और यहाँ एक बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि नदियाँ प्रशासनिक या राज्यों की सीमाएं नहीं देखती।
0: जी।
1: केन और बेतवा की तरह बुंदेलखंड में जल सुरक्षा भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है, इसलिए यह है परियोजना भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साझा संकल्प, समन्वय और सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
0: जी जी।
1: अतः हमारा लक्ष्य एक ही है, बुंदेलखंड के लोगों तक परियोजना के लाभ समयबद्ध, प्रभावी और टिकाऊ रूप से पहुंचे।
0: बिल्कुल सर। आपने बहुत ही विस्तार से बहुत ही आसान शब्दों में हमारे श्रोताओं को केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में समझाया। उम्मीद है कि श्रोता भी इस योजना को बहुत अच्छे से समझ सके होंगे। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि केन बेतवा लिंक परियोजना केवल नदियों को जोड़ने की योजना नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड के जल, खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़ी एक बड़ी परियोजना है। इससे सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। वह क्षेत्र के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी नई संभावनाएं बन सकती हैं। उम्मीद है केन और बेतवा के बीच पानी का ये सफर बुंदेलखंड में खुशहाली, हरियाली और विकास की नई राह खोलेगा। सर, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: विशेष कार्यक्रम केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विशेषज्ञ श्री प्रशस्त कुमार दीक्षित, सीईओ केबीएलपीए से दीपा सिंह की भेंटवार्ता। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम। आकाशवाणी।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 65 किलोग्राम मुक्केबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर परवीन हुड्डा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा है कि परवीन ने अपनी कुशलता, साहस और पक्के इरादे के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। राष्ट्र आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने कहा है कि गांधी जयंती केवल महात्मा गांधी को स्मरण करने का अवसर नहीं बल्कि उनके उच्चादर्शों को अपने आचरण में उतारने का प्रेरणा दिवस है। यही महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुशाभा ठाकरे सभागार भोपाल में आयोजित भारतीय हारमोनिका महोत्सव 2026 के 13वें संस्करण के उद्घाटन समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। और प्रदेश में मॉनसून की विदाई जल्द शुरू होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर तक मॉनसून पूरी तरह विदा हो सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं।
3: और अजीत का भी नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: समय और समझ दोनों एक साथ कभी नहीं आते। जब समय आता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इसलिए मनुष्य को सद्विवेक से अपना जीवन जीना चाहिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा और हम लोग पूरा परिवार एक साथ सुनते हैं। ज्ञानवर्धक रोचक जानकारी हमें सुनने को मिला है। प्रस्तुतकर्ताओं को बधाई।
3: अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
2: जय जोहार बंदगी उमंग टीम को। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 25 अगस्त को सरितपुर की कहानी सुनाया, हमें बहुत प्रेरणादायक लगा। प्रकृति की रक्षा करने की सीख मिली। विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। 28 अगस्त को भी हमने कार्यक्रम सुना, भारत की सबसे पहले महिला पायलट सरला ठकराल जी के बारे में रियल स्टोरी, हमें बहुत प्रेरणादायक लगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
3: और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदारे जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं,
3: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है। ये कार्यक्रम हम जरूर सुनते हैं। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम हिमालय कैसे बना, अवसर को पहचानिए और उड़न परी पीटी उषा, ये सभी कार्यक्रम सुने बेहद पसंद आए। उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल, अरावली पर्वत की कहानी, सुखो मांझरी गांव की कहानी और अन्य कार्यक्रम सुने वो भी पसंद आए। ये सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद और जानकारी से भरपूर लगे। आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस। उमंग कार्यक्रम की ओर से उन्हें शत शत नमन। आइए करते हैं शुरुआत उनके जीवन में घटित एक महत्वपूर्ण घटना से जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया।
2: लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, क्या कभी किसी के साथ हुआ अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?
3: श्रोताओं, होता तो ये है कि अपमान तो अक्सर इंसान को तोड़ देता है
2: जी।
3: तो कोई भला उससे ताकत कैसे पा सकता है?
2: यही तो आज की कहानी है जो हम आपके लिए गांधी जयंती के अवसर पर खास तौर से लेकर आए हैं। दिन था 31 मई 1893 और स्थान था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन।
3: एक युवा भारतीय वकील ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास प्रथम श्रेणी का वैध टिकट था। वे अपने स्थान पर बैठे थे और यात्रा कर रहे थे।
2: स्टेशन पर बहुत से यात्री ट्रेन में चढ़े, उनमें एक श्वेत यात्री भी था। उस श्वेत यात्री को एक अश्वेत व्यक्ति को प्रथम क्लास में बैठे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने आपत्ति की कि एक भारतीय प्रथम श्रेणी के डिब्बे में कैसे बैठ सकता है।
3: गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया, उनके पास पूरा अधिकार था कि वे प्रथम श्रेणी में यात्रा करें।
2: लेकिन टिकट देखने के बावजूद उन्हें डिब्बा छोड़ने के लिए कहा गया। शोर बढ़ता जा रहा था और बहुत से श्वेत यात्री गांधी जी के वहां रहने के कारण आपत्ति जता रहे थे।
3: लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अडिग रहे, उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने से विनम्रता पूर्वक साफ इनकार कर दिया
2: जी।
3: उन्हें बलपूर्वक ट्रेन से नीचे उतार दिया गया और बाहर थी कड़ाके की ठंड वाली रात।
2: गांधी जी का सामान भी उनके साथ बाहर था। वे स्टेशन पर अकेले बैठे रहे। जरा सोचिए श्रोता मित्रों, उस समय उनके मन में क्या चल रहा होगा।
3: हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, एक युवा वकील जिसके पास वैध टिकट था, फिर भी केवल नस्लीय भेदभाव के कारण उसे ट्रेन से उतार दिया गया था
2: जी।
3: वह रात उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक रही होगी।
2: उस रात उन्होंने अपने जीवन की भावी दिशा पर विचार किया। उस रात गांधी जी के भीतर कोई नया संकल्प जन्म ले रहा था, जिसे आज हम सत्य और अहिंसा के रूप में जानते हैं। इसी संकल्प का स्वरूप था सत्याग्रह।
3: सचमुच कितनी अद्भुत बात, एक रेलवे स्टेशन, एक ठंडी रात, एक अपमान और उसी से एक महान संकल्प का पैदा होना।
2: तो अजीत जी, गांधी जयंती के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए आज की सीख क्या है?
3: विमलेश जी, मुझे लगता है सीख बहुत सरल है और सीख ये है कि जब परिस्थितियां आपको गिराएं तो वहीं पड़े मत रहिए
2: जी।
3: उठिए, सोचिए और अपने दुख को एक अच्छे संकल्प में बदल दीजिए।
2: दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि किसी के गलत व्यवहार का जवाब हम अपने गलत व्यवहार से न दें।
3: बिल्कुल, यही तो इस घटना की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
2: तो श्रोताओ, 31 मई 1893 की वो रात गांधी जी के लिए केवल एक कठिन रात ही नहीं थी,
3: लेकिन वो रात उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली रात भी थी।
2: जी हाँ, कभी कभी जीवन की सबसे अंधेरी रात थी हमारे भीतर की एक नई सुबह को जन्म देती है।
3: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की प्रेरणादायक कहानी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
3: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है यादें बापू गांधी की।
2: इस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंगों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है और उनके जीवन के दर्शन की भी सरल वाक्यों के द्वारा जानकारी दी गई है।
4: शहर को ऐसा साफ सुथरा रखा कि दुनिया में सब लोग आकर देखें कि अगर कोई स्वच्छ शहर देखना चाहिए, सफाई, लोगों का मकान साफ, लोगों का पैखाना साफ, लोगों का बैठने का, सोने का सब साफ, गलियां साफ और ऐसे ही लोगों का दिल भी साफ।
5: आइए सुने उस्ताद अमजद अली खां को।

0: यानी ये एक आत्मा है शब्दों की। हाँ बच्चों, ये आपने सुना, इसको कहा जाता है रामधुन। तो हमारे जो राष्ट्रपिता थे, कौन थे?
1: महात्मा
0: गांधी जी। तो उनके साथ इसका बड़ा भारी एसोसिएशन है और उनको बहुत पसंद था ये। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गाना या भजन या सॉन्ग, इससे मशहूर कोई चीज़ नहीं हिंदुस्तान में। अब ये इंटरनेशनल ख्याति इसको प्राप्त हो चुकी है कि अब जो हमारे बाहर के बीट ग्रुप जो भी हैं, पॉप सिंगर्स जो भी हैं, वो भी इसको गाते हैं, लेकिन उनका प्रोनंसिएशन बदल जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि वो नकल करते हैं। रामधुन महात्मा गांधी जी को बहुत पसंद था ये, और ये आप सबको पता होना चाहिए।

यादें बापू गांधी की। अब प्रस्तुत है एक झलक हामिदुल्ला अफसर के जीवन के कुछ यादगार पलों की, वो पल जो उन्होंने गांधी जी के साथ बिताए।

0: सन 1921 का जिक्र है। मैं LLB का तालिब इल्म था। गांधी जी मेरठ में तशरीफ लाए। मुझे उनसे मिलने का बड़ा शौक था। आखिर मेरी आरजू बर आई और मुझे उनकी खिदमत में हाजिर होने का मौका मिल गया।
1: नमस्ते बापू।
2: नमस्ते
3: गांधी। नमस्ते।
4: नमस्ते।
5: हमारी खुशनसीबी आप मेरठ आए।
0: बातें करते करते गांधी जी ने मेरी अचकन की तरफ इशारा करके फरमाया,
6: ये अचकन देशी क्यों नहीं पहनते?
0: मैंने अर्ज किया, 3-4 देसी चीजें मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। देसी आम खाता हूँ, देसी पान खाता हूँ, देसी आलू खाता हूँ और देसी शक्कर इस्तेमाल करता हूँ, क्या ये काफी नहीं? गांधी जी ने बड़े जोर से कहकह लगाया और फरमाया,
6: अच्छा अच्छा, तब तो आपके लिए देशी कपड़ा पहनना और भी आसान है, एक ही देशी चीज का तो इजाफा होगा।
0: उसके बाद मुतअद्दिद बार कई कई बरस के वक्फे से मुझे गांधी जी की खिदमत में हाजिर होने का मौका मिला, मगर हैरत है कि हर मर्तबा मुझे देखते ही उन्हें मेरी 4 देसी चीजों में अपनी उसी 5वीं चीज का ख्याल आ जाता। ।1945 का जमाना था। गांधी जी मसूरी पहाड़ पर बिड़ला हाउस में ठहरे हुए थे। मैं भी उसी साल मसूरी गया हुआ था और गांधी जी की खिदमत में कभी कभी हाजिर होता रहता था। मसूरी में उन दिनों बहुत से लद्दाखी मजदूर आए हुए थे। बेचारे बहुत गरीब थे। एक फटे हुए जांघिए और पेवंद लगे हुए शलूके के सिवा उनके बदन पर कुछ ना होता था। रात के वक्त टाट के बोरे में लिपट जाते थे। यही टाट का बोरा उनका लिहाफ था और यही उनका गत्ता। उन्हें इस हालत में देखकर गांधी जी को बड़ा तरस आया और उन्होंने उनकी इमदाद के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ों पर गौर करना शुरू किया। इस सिलसिले में गांधी जी ने एक ऐसी इमारत की तामीर की तहरीक भी शुरू की जहां पर ये बेचारे पहाड़ी मजदूर ठहर सकें और उनसे उसका किराया ना लिया जाए। शायद उस इमारत के लिए 1.5 लाख रुपए के वादे भी हो गए थे। एक दिन ये जिक्र चला कि उस इमारत का नाम क्या रखा जाए।
6: देखो हामिद, जब ये इमारत बन जाएगी तब इन बेचारे गरीब पहाड़ी मजदूरों के यहाँ ठहरने की जगह तो हो ही जाएगी।
5: जी बापू।
6: देखो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए कि उनसे किराया न लिया जाए।
1: जी बापू, हम ध्यान रखेंगे।
6: अच्छा, अब सोचो

0: आप गरीब खाना क्यों नहीं रखते? एक और साहब वहां बैठे हुए थे बोले,
1: भाई गरीब खाना तो अपने घर को ही कहते हैं।
0: मैंने कहा, जी हाँ कहते तो हैं, लेकिन अपने घर को गरीब खाना महज इनकिसारी की वजह से कहते हैं। खुद को गरीब फर्ज कर लेते हैं और अपने घर को गरीब खाना करार देते हैं, वरना गरीब खाने के मानी गरीब के घर के सिवा और कुछ नहीं।
2: बहुत खूब, मुझे तो ये नाम पसंद आया।
3: हाँ, तो ये नाम ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल सर।
0: गांधी जी को ये नाम पसंद आया। एक दफा एक नौजवान आश्रम में रहने के लिए आए। ये बीए पास कर चुके थे। दस्तूर के मुताबिक गांधी जी ने उनके सुपुर्द ये काम किया कि 3 महीने तक वो आश्रम में रोजाना झाड़ू दिया कर।

0: गांधी जी झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आश्रम में नेक चलनी और सच्चाई के कवायद बड़े सख्त थे। उस नौजवान को बच्चों से बड़ा उंस था और बच्चे भी उससे बहुत मानूस थे। एक दिन आश्रम की एक 8 साल लड़की उस नौजवान से एक लीमू छीनना चाहती थी।
1: ये लो, अरे लो।
2: मुझे भी लीमू दो ना।
1: ये लो।
2: चाहिए।
0: वो उस लड़की के साथ खेलने लगा।
1: ये लो।
0: खेलते खेलते उसे थका दिया, लेकिन लीमू नहीं दिया। लड़की तंग आकर रो पड़ी। असल में ये लीमू आश्रम के एक मरीज के वास्ते था। उस लड़की को कैसे दे दिया जाता। जब लड़की रोने लगी तो उस नौजवान की कुछ समझ में ना आया कि अब क्या करे। आखिर उसे एक तरकीब सूझी।
1: ये मैंने फेंका नदी में और लीमू गया साबरमती में।
2: गया?
1: हाँ, वो गया। अरे रो मत।
2: मैं लीमू को नदी से निकाल लाऊं?
1: अरे नहीं, नहीं।
2: वो किनारे पर ही तो होगा ना?
1: अरे नहीं बेटा, लीमू नदी में डूब गया है, अब तुम उसे निकाल नहीं पाओगी।
2: गया?
1: हाँ, गया लीमू।
0: मगर असल में ऐसा नहीं था। उस नौजवान ने लीमू को अपनी जेब में रख लिया था। बात आई गई हुई। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मरीज के कमरे की तरफ जाते हुए,
1: मेरा रुमाल किस जेब में है?
0: उस नौजवान ने अपनी जेब से रुमाल जो निकाला तो उसके साथ लीमू भी जेब से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा।
2: अरे लीमू, ये लीमू तो आपके पास ही है।
1: अरे वो
2: आश्रम में रहकर झूठ बोला आपने।
1: अरे
2: मैं ये बात पापू को जरूर बताऊंगी।
1: अरे नहीं नहीं
2: पापू।
1: नहीं बेटा, मेरी बात
2: नहीं,
1: तो सुन।
2: नहीं पापू।
1: नहीं, अरे सुन तो, पापू से मत बोल। अरे
2: पापू।
1: नहीं नहीं, अरे
2: पापू।
1: अरे अरे सुन मेरी बात। अरे सुन तो।
0: ये कहकर वो भागी और सीधी गांधी जी की खिदमत में पहुंची और उनसे कह दिया,
2: उन्होंने झूठ बोला, आश्रम में रहकर झूठ बोला।
3: हम मालूम करेंगे कि क्या बात है और उन्होंने क्यों झूठ बोला।
2: ठीक है बापू।
0: शाम को दुआ के बाद गांधी जी ने उस नौजवान को बुलाया और उससे पूछा,
3: अच्छा बताओ क्या बात थी?
1: बापू ये सब बस एक मजाक था।
3: देखो आइंदा से इस बात का ख्याल रखो कि बच्चों से मजाक में भी झूठ न बोलो।
1: जी बापू, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूंगा।

कोई आँखों से तो सुनता नहीं है, आँखों से देखता है, कानों से सुनता है। इसलिए आँखों को तो सचमुच बंद करना चाहिए और कानों को खुले रखना चाहिए, अदब रखकर बैठ जाना चाहिए तो बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा सुंदर लगता है कि आदमी का जी चाहता है कि जो अपने दिलों की बात है वो सुनाए।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम यादें बापू गांधी की, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका स्थित आश्रम के बारे में जानकारी दी गई है और बताया गया है कि गांधी जी की दिनचर्या कैसी थी और आश्रम वासियों के साथ उनका कैसा सद्भाव था।
0: साथियों नमस्कार, हम सब गांधी जी के बारे में जानते हैं। गांधी जी को बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारा भी जाता है। कोई उन्हें बापू कहता है, तो कोई महात्मा, तो कोई राष्ट्रपिता। गांधी जी ने देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना। गांधी जी जब अफ्रीका में थे तो उनके दो आश्रम थे, फीनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म, और जब वे भारत आए तो उनका आश्रम बना साबरमती। और हाँ, आपको एक बड़ी दिलचस्प जानकारी भी दे दें, दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी के फीनिक्स आश्रम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है और आज गांधी जी का आश्रम टॉलस्टॉय फार्म भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित गांधी स्थलों में से एक है। तो आइए चलते हैं गांधी जी के आश्रम में, और सबसे पहले चलते हैं आश्रम के रसोई घर में।
2: अरे बापू जी के आने का समय आने वाले हैं। हाँ हाँ, और टमाटर काट लो। हाँ हाँ, और मैं ये मिर्ची काट लूँ।
3: अरे जल्दी जल्दी सब्जी काटो चंपा, आश्रम में भोजन का समय हो रहा है।
2: अरे जल्दी जल्दी में मैं तो एक बात भूल ही गई।
3: क्या?
2: वो सब्जी मैंने बगैर धोए ही काट दी।
3: अरे चंपा, बापूजी को अगर पता चला कि तुमने बिना धोए सब्जी और फल काट लिए तो फिर बहुत डांट पड़ेगी।
2: ठीक कह रहे हो। अरे हरिया, वो देखो छत पर मकड़ी का जाला भी लगा है। बापूजी के आने का समय हो रहा है और यहाँ पर सफाई भी अभी करनी बाकी है। इससे पहले कि वो आए हम जल्दी जल्दी सफाई कर लेते हैं।
3: ठीक है चंपा, ठीक।
4: बापूजी के आने का समय हो रहा है,
3: मुझे मुझे आलू दे दो, मैं जल्दी काट लेता हूँ।
2: अरे ठीक है, मैं ये बाकी जो सब्जियां इनको धो लेती हूँ। प्रणाम बापू।
3: नमस्कार बापू।
4: प्रणाम बापू।
5: प्रणाम प्रणाम। ये क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: बाबूजी वो सब्जी काट रहे थे हम लोग।
2: बापू सब्जियां काट रहे थे।
5: अभी अभी मुझे पता चला कि तुमने सब्जियां बिना धोए ही काट दी हैं।
2: वो बापू थोड़ी जल्दी थी और भोजन का भी समय हो रहा है, इसलिए बगैर धोए ही, क्षमा कीजिए।
5: देखो चंपा, ध्यान रखना, सब्जी और फलों को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए और ना ही पकाना चाहिए। आगे से ध्यान रखना, समझ गई तुम?
2: जी बापू।
5: अच्छा जाओ।
2: जी।
5: अब तुम लोग जाकर अपना अपना काम करो।
3: जी, जी
2: चलो चलते हैं।
3: जी।
0: तो साथियों, अभी हम थे आश्रम के रसोई घर में। आइए अब सुनते हैं गांधी जी के आश्रम की एक और घटना के बारे में। हुआ यूं कि एक बार आश्रम में ही रहने वाली एक बीमार स्त्री को कुछ केले दिए गए। उसने जब केलों को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उन केलों पर काले काले चकत्ते पड़े हुए थे, तो उस स्त्री ने इसकी शिकायत बापू से की।
4: बापू बापू ये देखिए।
5: अरे हाँ हाँ बिमला, आओ कहो कैसे आना हुआ?
4: बापू केलों पर कितने काले काले चकत्ते पड़े हुए हैं। दूसरों को तो ऐसे केले नहीं दिए, ये पक्षपात नहीं तो और क्या है?
5: देखो बिमला, ये जो केलों पर

0: काले काले चकत्ते देख रही हो ना
1: जी,
0: इसका मतलब ये है कि ये केले बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। तुम्हें पेट की समस्या है ना?
1: हाँ।
0: है ना? हाँ, मैंने ही उन्हें कहा था कि तुम्हें अच्छी तरह से पके हुए केले दें। सोनू ने ऐसे दे दिए। उन्होंने तुमसे कोई पक्षपात नहीं किया विमला।
1: जी बापू।
0: हाँ, समझ गई ना?
1: जी।
0: जाओ, अब तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी।
1: जी बापू, धन्यवाद।
2: साथियों, यह सुनकर विमला बहुत लज्जित हुई और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। गांधी जी के आश्रम का यह नियम था कि सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें और न सिर्फ अपने कमरों और झोपड़ियों को ही साफ रखें, लेकिन आसपास भी साफ सफाई का ख्याल रखें। गांधी जी रसोई में काम करने वालों के साथ सब्जियों को खुद काटते थे और बर्तन धोने का भी काम किया करते थे। एक दिन की बात है,
3: अरे बापू, ये बर्तन तो धुल गया है।
0: अरे सुधीर, नहीं, अभी ठीक से कहाँ धुला है, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है।
3: हा?
0: अभी तो इसे और चमकाना है।
3: ओ,
0: देखो, इसे और चमकाता हूँ। ये लो, अब देखो, अब ये अच्छी तरह साफ हो गया है और
3: चमकने भी लगा।
0: हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। ध्यान रखो, जिस भोजन को हम खाते हैं उसे हमेशा साफ बर्तनों में ही खाना चाहिए। समझे सुधीर?
3: हाँ जी बापूजी।
0: हाँ, शाबाश।
2: तो साथियों, हमने आज गांधी जी के आश्रम में जाकर क्या सीखा? तो हमने सीखा कि अपना काम स्वयं करें और किसी दूसरे से न तो उम्मीद रखें और न दूसरे से वह काम करवाएं। और हम सबको अपनी व्यक्तिगत और आसपास की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, यदि आप गांधी जी के जीवन से संबंधित कोई भी किस्सा जानते हैं तो अपने मित्रों से अवश्य साझा करें। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गांधी जी के आश्रम में, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
2: चेतना,
4: अर्शद,
2: सौम्या,
4: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
4: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, जहां हम आपको फिल्मी गीतों को सुनवाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं कार्तिक की आवाज़ में, फिल्म गजनी से।

ए आर रहमान का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल, कार्तिक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गजनी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्लिंटन सरोजो की आवाज़ में, साथ हैं शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा, फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से।

शंकरासन लॉय का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, क्लिंटन सेरेजो, शंकर महादेवन और लॉय मेंडोसा की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म कार्तिक कॉलिंग कार्तिक से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ में फिल्म दिल चाहता है से।

शंकर एहसान लॉय का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल शान और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म दिल चाहता है से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अदनान सामी की आवाज़ में फिल्म साथिया से।

ए आर रहमान का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, अदनान सामी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म साथिया से। अब आपको सुनवाते हैं गीत सोनू निगम की आवाज़ में, फिल्म रहना है तेरे दिल में से।

हैरिस जयराज का संगीत, समीर के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म रहना है तेरे दिल में से। और इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। सुजीत कलकल ने अपनी इस जीत को देश के नाम समर्पित किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
3: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है,
2: और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुडा ने नियन चेन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहादुर भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मछार से बात की। कैप्टन स्मिथ मछार ने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट में अपने सह पायलट के हमले को नाकाम करते हुए 180 लोगों की जान बचाई थी। प्रधानमंत्री ने उनकी बहादुरी की सराहना की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दौरेस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मलिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित। इस कार्यक्रम में अंत्योदय, स्वच्छता और समाज सेवा के उनके आदर्शों को दर्शाया गया। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार विकृतियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुरूप दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन दिवस पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि भारत डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विश्वसनीय कड़ी है। महाराष्ट्र निवेश शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित 67 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री फडणवीस ने राज्य को प्रमुख निवेश स्थल बनाने के उद्देश्य से इन्वेस्ट महाराष्ट्र मंच का भी शुभारंभ किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नलू ने NCC कैडेट से एकता, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों पर आधारित मजबूत और एकजुट भारत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने आज नरसिंहगढ़ के TIT संस्थान में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर वीर विक्रम एकता कैंप का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 13 त्रिपुरा बटालियन NCC ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा।

सुनिएगा आज रात 8 बजे। कार्यक्रम खेल जगत के अंतर कार्यक्रम खेल जगत प्रसारित होगा रात 9:30 पर। रात 10 बजे सुनिए एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 पर सुने मनोज कुमार का ध्रुपद गायन राग बिहाग।

फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रसारित होगा कल सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की दूसरी कड़ी सुनवाई जाएगी कल दोपहर 12:30 पर। महिला कार्यक्रम सुन सकेंगे दोपहर 1 बजे। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा दोपहर 1:30 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनवाया जाएगा कल दोपहर 1:45 पर। ये तीनों कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होंगे।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी प्रसारित होगा कल शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रसारित होगा कल शाम 6:30 पर। विशेष कार्यक्रम देश सेवा से माफ कीजिएगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुनवाया जाएगा कल रात 8:00। कल रात 9:30 पर सुने कार्यक्रम साहित्य भारती और 10:00 सुने एशियन गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। इन दोनों कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। रात 7:21 पर सुने कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन सकेंगे कल सुबह 7:20 पर। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा सुनवाया जाएगा कल सुबह 8:30 पर। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा विमला श्रीवास्तव द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। कार्यक्रम विज्ञान लोक में कल सुबह 9:30 पर सुने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सूचना तकनीकी की भूमिका विषय पर भेंटवार्ता। वार्ताकार हैं योगेश पंडित। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुनवाई जाएगी सुबह 10:00। 10:05 पर सुने कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में कल सुबह 10:30 पर सुनिए स्मिता नागदेव का सितार वादन राग आसावरी। और कल रात 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम किसान वाणी। ये थे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला सूखा सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हुए शामिल। गांधी जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी को किया नमन, गांधी विचारों को जीवन में उतारने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात पहुंचेंगे भोपाल, कल गोपालकों के सम्मेलन में होंगे शामिल। और भोपाल में भारतीय हारमोनिका महोत्सव का आगाज, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी जयंती पर नई दिल्ली के गांधी स्मृति में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सत्य, शांति और अहिंसा के गांधी जी के संदेश को याद किया। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और विजय घाट जाकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। देश भर में भी गांधी जयंती पर शांति, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश को याद किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज गांधी जयंती पर भोपाल के गांधी भवन में आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे। राज्यपाल ने नशे से दूर रहने, जल और बिजली बचाने तथा मां के नाम पर पेड़ लगाने की अपील की। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज रात करीब 9 बजे भोपाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें 35,000 से ज्यादा गोपालक हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे डेयरी और सहकारिता क्षेत्र की कई परियोजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करेंगे। वे नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा मुक्ति अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कार्यक्रम के बारे में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया,
1: सोयाबीन का पंजीयन प्रारंभ कर दिया है। हमने कहा कि हम भावांतर देंगे और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है किसान कल्याण वर्ष में किसानों से जुड़े सारे कामों के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उसी सिलसिले में गोपालक सम्मेलन भी कल होने वाला है। ये राज्य में पहली बार हो रहा है कि दूध उत्पादकों को बुला करके दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए भविष्य में उन्नत नस्ल के पशु और हमारे राज्य के अंदर सहकारी संघों को मजबूत करते हुए सांची ब्रांड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा।
0: प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा और खाते के सत्यापन के लिए पंजीयन के दौरान 1 रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। किसान ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और सुविधा केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन करा सकेंगे, जबकि एमपी ऑनलाइन और सीएससी से अधिकतम 50 रुपए शुल्क देकर पंजीयन की सुविधा भी रहेगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत सेवा संकल्प अभियान के जरिए 17 अक्टूबर तक 30,000 नए मकान मंजूर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र लोगों को योजना और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। नगर परिषदों को कम से कम 50, नगर पालिकाओं को 100 और नगर निगमों को 500 मकान मंजूर करने का लक्ष्य दिया गया है। साथ ही

0: पहले से स्वीकृत मकानों की पहली और दूसरी किस्त समय पर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर

सदन ने किया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए कार्यक्रम में देश भर से आए कलाकारों ने हारमोनिका पर मधुर धुने पेश की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान किशोर कुमार, हेमंत कुमार और एसडी बर्मन जैसे संगीतकारों के योगदान को याद किया। तीन दिन के इस महोत्सव का उद्देश्य हारमोनिका वादन को बढ़ावा देना और संगीत प्रेमियों को मंच देना है। प्रदेश में आज से ग्रामीण इलाकों में रिफॉर्म उत्सव की भी शुरुआत हुई। वाटरशेड विकास में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं के जरिए किसानों और ग्रामीणों को नई तकनीक और सुधारों की जानकारी दी जाएगी। अभियान प्रदेश की 91 वाटरशेड परियोजनाओं से जुड़ी करीब 727 ग्राम पंचायतों में चलेगा। इसके तहत मैदानी कामों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने और परियोजनाओं की अवधि 7 से घटाकर 5 साल करने जैसे बदलावों की जानकारी भी दी जाएगी। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सागर की केंद्रीय जेल से 5 आजीवन कारावास के बंदियों को विशेष छूट देकर रिहा किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने रिहा हुए बंदियों से दोबारा अपराध न करने और जेल में सीखे कौशल से परिवार का जीवन बेहतर करने की अपील की। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सरकार आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 3 अक्टूबर को विकासखंड स्तर पर, 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जाएगा। खासतौर पर किसान, ग्रामीण, श्रमिक, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों के लंबित काम और आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। शिविरों में स्वास्थ्य जांच के साथ अलग अलग विभागों के कम से कम 25 स्टॉल लगाए जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में 44 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया और टीम के लिए एकमात्र गोल लालरिम सियामी ने किया। इससे पहले भारत ने 1982 में महिला हॉकी का गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स के 13वें दिन भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और अब उसके कुल 16 गोल्ड हो गए हैं। और अब बात मौसम की। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई 10 अक्टूबर तक होने की संभावना है। अगले 3 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तेज धूप के साथ दिन में गर्मी जबकि रात में हल्की ठंडक रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 5 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। मानसून की विदाई सबसे पहले ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग से शुरू होने के बाद दूसरे हिस्सों से होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने महिष्मती घाट पहुंचकर स्वच्छता ही सेवा अभियान में सहभागिता की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर संपूर्ण नर्मदापुरम जिले में बापू के विचारों को जीवंत करने के लिए विभिन्न प्रेरणादायक गतिविधियों का आयोजन किया गया। खंडवा में गांधी जयंती पर नगर निगम द्वारा सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत शहर के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के माइक्रो बायोलॉजी विभाग में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन MP माइक्रोकॉन 2026 का शुभारम्भ किया गया। बुरहानपुर में कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरण शिविर 8 अक्टूबर को लगाया जाएगा। ये शिविर इंदिरा कॉलोनी स्थित परमानंद जी गोविंद जी वाला ऑडिटोरियम में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाश
1: ये ग्वालियर का आकाशवाणी केंद्र है। भैया अपना प्रिय कार्यक्रम सुने चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनवे बारे हमारे सभी भैयारण को कल्पना बहन की राम राम और करते हैं स्वागत आज के चौपाल कार्यक्रम में। और बताओ भैयारो कैसे का हाल चाल है आप औरन के। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सभी भैयारण के घर परिवार में सभी जने राजी खुशी से हैं। कहे से के देखो अब है बिना अपने पूर्वजों से पूरो पूरो आशीर्वाद जो मिल रहा है तो ई समय अपने दिवंगत माता पिता दादा दादी और अन्य पूर्वजों को स्मरण कराते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध और पिंडदान जैसे धार्मिक काम कराते हैं। और कछु जने मानस तो भैया जरूरतमंदों को और पशु पक्षियों को भोजन भी कराते हैं और दान पुण्य भी कराते हैं। और वैसे भी भैया हो देखो अबे वन्य प्राणी सप्ताह भी चल रहा है जो भारत में हर वर्ष 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। तो इको मुख्य उद्देश्य लोगों को वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। जो वन्य प्राणी हमारे पर्यावरण को महत्वपूर्ण हिस्सा है वैसे जैसे कि बाघ सिंह हाथी हिरण मोर भालू और अनेक प्रकार के पक्षी एवं जीव प्रकृति को संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो भैया आज जंगलों की कटाई अवैध शिकार प्रदूषण और प्राकृतिक आवासों को नष्ट होने के कारण जीवों के अस्तित्व पर खतरा बढ़ जा रहा है। तो वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान विद्यालयों और विभिन्न संस्थाओं में जागरूकता रैली चित्रकला निबंध लेखन भाषण और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियां आयोजित करी जाते हैं। और हाँ भैया हरो हमें वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने हैं बल्कि उनकी रक्षा करना है सुरक्षा करना है। तो भैया हरो हमें सभी को संकल्प लेना है कि हम अपने वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करेंगे और सभी जने मानस के लिए प्रेरित करेंगे। तो भैया और देखो चर्चा तो हम आगे और भी करें हैं पहले सुन लेते जो विकास गीत बलराम सिंह तागी से।

भैया और देखो, ब्रह्म के बाद स्वागत है फिर से चौपाल कार्यक्रम में। भैया और देखो, आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 अक्टूबर भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज के दिना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती भी बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। तो भैया और देखो, गांधी जी को जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ तो, और उनको पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हतो। उन्होंने भैया हो सत्य अहिंसा के मार्ग पर चल के भारत को स्वतंत्रता दिलाई और उनको जीवन हमें सत्य प्रेम शांति और अहिंसा को संदेश देते। तो भैया हो, गांधी जयंती के शुभ अवसर पे देश भर में स्वच्छता अभियान और विभिन्न कार्यक्रम करे जाते हैं। तो भैया हो, गांधी जी असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन को पूरा योगदान रहो, और गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखत थे। तो भैया हो, तो भैया बहनों, सभी को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं बधाइयाँ। और हाँ भैया हो, देखो आज के दिना भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जा रही है। उनको जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ तो। तो भैया हो, वे बड़े ही सरल ईमानदार और दृढ़ निश्चय नेता थे। उन्होंने देश को जय जवान जय किसान को प्रसिद्ध नारा दो। उन्होंने किसानों और सैनिकों के महत्व को समझा।

0: और देश हित को सर्वोच्च स्थान दो। तो भैया हरो, इस प्रकार से 2 अक्टूबर हमें सत्य, अहिंसा और सादगी, देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठ की प्रेरणा भी देते हैं। जे हमारे देश के 2 अनमोल रतन हैं, एक तो महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। इन 2 महान आत्माओं को शत शत नमन वंदन। तो भैया और देखो, जय संबंध में आज हम विशेष वार्ता लेके आए हैं, जाको विषय है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जाकी जानकारी दे हैं श्री आरसी दीक्षित। तो सुनते हैं जो नौनी सी जानकारी।
1: हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। इनके पिताजी एवं दादाजी यद्यपि बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु फिर भी काठियावाड़ रियासत के मुख्यमंत्री रहे। इनकी माताजी पुतलीबाई गहन धार्मिक विचारों की महिला थी, अतः उनके व्यक्तित्व का गांधी जी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 13 वर्ष की अल्पायु में ही गांधी जी का विवाह कस्तूरबा से हो गया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद 18 साल की उम्र में गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए बिलायत गए तथा 3 साल पश्चात भारत लौटे तथा 2 साल तक बम्बई तथा राजकोट में वकालत की। सन 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए तथा वहां एक सफल बैरिस्टर तथा नेता के रूप में उनका विकास हुआ, किंतु शीघ्र ही अन्य भारतीयों की तरह उन्हें भी अपमान एवं तिरस्कारपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक बार एक अंग्रेज गार्ड ने उन्हें बलपूर्वक रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया, यद्यपि उनके पास यात्रा करने के लिए वैध टिकट था। इस घटना का उनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उन्होंने निश्चय किया कि इस भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करेंगे। इस प्रकार गांधी जी के राजनैतिक जीवन की शुरुआत हुई तथा उन्होंने भारतीयों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। चूंकि उनका यह आंदोलन अहिंसावादी था तथा उसमें विद्वेष की भावना नहीं थी, अतः गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक बोर युद्ध तथा जूलू क्रांति के समय एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना करके सरकार की बहुत मदद की। बदले में सरकार ने भी गांधी जी की सहायता की तथा उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए, किंतु भारतीयों के प्रति उनका सामान्य व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान वकालत तथा राजनैतिक गतिविधियों के साथ साथ गांधी जी ने दर्शन शास्त्र एवं धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में अपना समय व्यतीत किया। उन्होंने उपनिषदों के अध्ययन के साथ साथ कुरान, बाइबल एवं गीता का गहन अध्ययन किया। अंग्रेज लेखक रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू दिस लास्ट ने उनके मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी। परिणाम स्वरूप उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स सेटलमेंट नामक सामूहिक आवास व्यवस्था शुरू की। इस आवासीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वहां के निवासियों में आत्मनिर्भर एवं स्वयंसेवी बनने की भावना विकसित करना था। यहां के निवासी अपने सारे कार्य जैसे खेतीबाड़ी, सफाई तथा मरम्मत के कार्य स्वयं करते थे। सन 1909 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि वह भारतीयों के लिए एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहां कि एक सामान्य नागरिक भी अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। रूस के जाने माने लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने गांधी जी की इस कृति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। सन 1915 में 45 वर्ष की अवस्था में गांधी जी भारत लौटे। अब तक उनकी ख्याति संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुकी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि से अलंकृत किया। भारत आगमन के पश्चात गांधी जी ने सर्वप्रथम अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की, जहां उनके साथ साथ उनके अन्य 25 साथियों ने अहिंसा, ब्रह्मचर्य, निर्भीकता, आत्मसंयम, अस्पृश्यता निवारण, मातृभाषा में शिक्षा तथा खादी एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग आदि व्रत धारण कर आश्रम जीवन का शुभारंभ किया। बाद में ये सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लिए। आश्रम की स्थापना के पश्चात 2 वर्ष तक गांधी जी ने भारत भ्रमण किया ताकि वह भारत एवं भारतवासियों को अच्छे से जान सकें। अप्रैल 1917 में वे बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों द्वारा नील की खेती में लगे भारतीय मजदूरों की समस्याओं की जानकारी लेने गए, किंतु सरकार ने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, किंतु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया किंतु बाद में बिहार सरकार के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सरकार ने गांधी जी की सदस्यता में एक समिति का गठन किया तथा उस समिति की अनुशंसाओं के आधार पर नील की खेती में लगे मजदूरों की समस्याओं का निराकरण किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ में गांधी जी सरकार की सहायता करना चाहते थे, किंतु इसी समय रोलेट एक्ट पास हुआ जिसके तहत सरकार को यह शक्ति मिल गई कि वह बिना किसी सुनवाई के किसी भी व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध होने के संदेह में जेल भेज सकती थी। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, किंतु गांधी जी के गिरफ्तार होने पर लोगों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किए, अतः गांधी जी ने यह हड़ताल वापस ले ली। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के जनसंहार की घटना ने जनता के असंतोष एवं विद्रोह की भावना को और बढ़ाया। अगले वर्ष सन 1920 का खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास में हिंदू मुस्लिम एकता का एक शानदार अध्याय है। इसमें गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों का तुर्की के सुल्तान के प्रति अंग्रेजों के अन्याय के विरोध प्रदर्शन में साथ दिया और दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान पदक भी वापस किए। गांधी जी ने स्वयं अंग्रेज सरकार द्वारा दिया गया केसरी हिंद सम्मान वापस किया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सरकार ने 13 मार्च 1922 को उन्हें 6 वर्ष की कारावास की सजा देकर जेल भेज दिया, किंतु उनकी शल्य चिकित्सा के कारण उन्हें 2 वर्ष बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, किंतु उन्होंने यह कार्य स्वराज्यवादियों को सौंपकर स्वयं खादी के प्रचार प्रसार का कार्य संभाला। पुनः 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय वे पुनः सक्रिय राजनीति में लौटे। सन 1930 में गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस बार उन्होंने सरकार से कहा कि वह स्वयं नमक बनाकर देश के कानून को तोड़ेंगे, अतः उन्होंने 78 लोगों के साथ अहमदाबाद से डांडी तक की 240 मील की ऐतिहासिक यात्रा की तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर कानून तोड़ा तथा सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इस आंदोलन में जन सामान्य ने हिस्सा लिया, अतः सरकार को देश भर से 100,000 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। गांधी जी तथा उनके अनुयायियों को 26 जनवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता होने के पश्चात छोड़ दिया गया। इस दौरान सरकार ने इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को आमंत्रित किया तथा इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, वल्लभ भाई पटेल आदि बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1934 में गांधी जी पुनः कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर सेवाग्राम में खादी आंदोलन को सशक्त बनाने में जुट गए। 1939 में जब द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ा तो गांधी जी पुनः ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हो गए। उन्होंने यह सोचा कि अंग्रेज प्रजातंत्र के पक्षधर हैं तथा विश्वयुद्ध की समाप्ति पर भारत को स्वतंत्र कर देंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। तब अगस्त 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी सहित नेहरू जी, पटेल जी आदि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें युद्ध की समाप्ति के बाद ही सन 1945 में रिहा किया गया। सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से भारत यह पता लगाने आया कि भारतीयों को सत्ता कैसे सौंपी जाए। एक समय तो ऐसा लगा कि कैबिनेट कांग्रेस के प्रस्ताव को मान लेगा, क्योंकि इसने एकीकृत भारत में एक ऐसी संघीय सरकार का प्रस्ताव रखा जो विदेश, रक्षा एवं संचार मंत्रालय का काम संभाल सके। इसी आशा के साथ नेहरू जी ने अंतरिम सरकार का गठन किया। इस दौरान गांधी जी इन सब गतिविधियों से दूर रहे, क्योंकि उनका सारा समय पश्चिम बंगाल तथा बाद में बिहार में भड़के दंगों के बाद शांति स्थापना में बीता। जून 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान बंटवारे की घोषणा की, जिसे बाद में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। स्वाधीन भारत की भावी पीढ़ियां अहिंसा के इस पुजारी को युगों युगों तक नमन करती रहेंगी तथा उनके जीवन से अहिंसा एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी।
0: भैया और देखो, अभी आप सुन रहे थे जो वार्ता, जाको विषय है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जाकी जानकारी दे रहे थे श्री आरसी दीक्षित। तो भैया और देखो, हम उम्मीद करते हैं कि अभी आपने जो वार्ता सुनी, बड़े ध्यान से सुनी हुई है। काहे से कि उन्होंने बापू जी को पूरा

विस्तार बताओ। तो भैया हरो, देखो बापा बापूजी का सादा जीवन उच्च विचार रहते और वे हमेशा चरखा चलाते और एक प्रिय भजन गाते थे कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। तो गांधी जी ने जी राह दिखाई, सत्य हिंसा हमें सिखाई और देश की खातिर जीवन सारा कर दिया उन्होंने बलिहारा, और चरखे से स्वदेशी अपनाया, भारत को आजाद कराया। प्यारे बापू अमर रहें और भारत माँ के लाल रहें। तो भैया हरो, देखो चर्चा तो हम आगे और भी करें हैं, अब सुन लेते हैं एक और लोकगीत, बादाम सिंह और साथी से, जे स्वच्छता गीत।

भैया, और अभी आप सुन रहे थे जी स्वच्छता गीत बादाम सिंह और साथी से। तो भैया, और देखो ये बात सोलाना सांची है कि स्वच्छता को विशेष ध्यान रखना है, चाहे वो अपना घर आंगन हो, चाहे गैल गलियारे हो, चाहे अपना आस पड़ोस हो, जहाँ भी हो, चाहे वो सरकारी जगह हो, भवन हो, कार्यालय हो, स्कूल विद्यालय हो, या आंगनवाड़ी हो, या कोर्ट कचहरी हो, कोई भी हो, हमेशा स्वच्छता को ध्यान रखना है भैया। और देखो जो भी कचरा हो, जहाँ कूड़ादान हो, वहीं में डालना है। और अपने सबसे पहले तो अपने घर की ही सफाई रखने, अच्छे से अपने कपड़े लत्तन को साफ सुथरा रखें, बिना समय समय पे धोत रहें, अच्छे से धूप दिखाएं, और अपनी घर आंगन की कोने कोने की अच्छे से सफाई करें, जो टूट फूट हो गई बाकी पर मरम्मत करवात रहें, और अपन जो घर को शौचालय है बाकी तो नियमित सफाई करने ही, और वहाँ में रोजई फिनाइल और जो भी चीज़ें जैसे डालना है, जैसे कि कीड़े मकोड़े ना आए, मच्छर मक्खी ना आए, और अपने आसपास जो भी पानी भरो हुए गड्ढन में, तो बाकी भी समय समय पर सफाई करत रहें, और अगर गड्ढा हैगा है तो आप राख या धूल डाल दें, जैसे मच्छर मक्खी ना बैठें। अब भैया, और देखो चर्चा तो अपन कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का है। भैया, और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार के योग बनावो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित करी जाते हैं। तो भैया, और देखो जे योजना को माध्यम से ग्रामीण युवाओं को उनकी रुचि और रोजगार की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण भी दो जाते हैं। सो भैया, और प्रशिक्षण में कंप्यूटर, सिलाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और खुदरो व्यापार, निर्माण और अन्य रोजगार से जुड़े कार्य शामिल हो सकते हैं। और भैया, हो प्रशिक्षण पूरा करवे के बाद युवाओं को रोजगार प्राप्त करवे में सहायता भी दी जाते हैं। तो भैया, और देखो ई योजना को विशेष उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के युवाओं को और आत्मनिर्भर बनाने हैं, जैसे कि युवाओं में नए कौशल को विकास होता है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होवे को आत्मनिर्भर बनवे को अवसर भी मिलता है। तो भैया, और जे योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने हैं और युवाओं को बेहतर से बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, और हमारी भारत सरकार भी जे प्रयास करत रहते हैं। और भैया, और देखो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं को कौशल रोजगार और आत्मनिर्भर की दशा में आगे बढ़ावे को अवसर भी देते हैं। और भैया, और देखो ये योजना ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। सो भैया, और देखो दीनदयाल उपाध्याय ने अपन जीवन, समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए भी दो वे ग्रामीण वंचितों, शोषितों, गरीबों और ग्रामीण लोगों के कल्याण और देश की प्रगति तभी सार्थक होते जब विकास को लाभ समाज के सभी लोगों में पहुंच सके। और भैया, और देखो उनको जीवन, सादगी, अनुशासन,

त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देता है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को मनाई जाती है और उनको जीवन हमें देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी देते हैं। तो भैया हरो जे तो भाई दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के बारे में उपाध्याय के बारे में चर्चा। अब भैया हरो अब चलत चलत सुनवा देते हैं एक और चेतावनी गीत राजू विश्वकर्मा के स्वर में।

भैया और अबे, आप सुन रहे थे जो चेतावनी गीत राजू विश्वकर्मा से। भैया वो कहते हैं ना कि पहलो सुख निरोगी काया, और भैया कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है, तो भैया हरो अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान रखने हैं। काहे से के भैया हरो देखो, अब तनक तनक मौसम में परिवर्तन सोई हैं लगो, यानी कि सवेरे संजा थोड़ो थोड़ो मौसम बदल बदल रहा है, और दिन में तो अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। तो भैया और भाई खान पान को भी ध्यान रखने हैं, अब ज़्यादा ठंडी चीज़ों को उपयोग नहीं करना है। कहते ना कब भैया हो, जब सर्दी जुकाम है जाते ना तो वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं, और फिर वो बड़ा रूप ले लेते हैं। बाद से धीरे धीरे बुखार, सर्दी जुकाम, खांसी बुखार और वायरल कभी टाइफाइड ऐसी चीज़ें है जाते हैं। तो भैया हो, स्वास्थ्य को सबसे पहले ध्यान रखने हैं। तो भैया और हम तो यही उम्मीद करें हैं कि हमारे सभी भैया हरे खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो भैया और देखो, अब घड़ी इशारों कर रही है, चलवे की बेरा हो गई है, हम आपसे फिर मिले हैं। तो अपनी कल्पना बहन को दे इजाज़त। जय जवान, जय किसान।

0: संचालन कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
1: नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा करते हैं जन सेवा से देश सेवा की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही साथ डॉक्टर शरद कोहली, इकोनॉमिक एनालिस्ट। नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार निहारिका, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा अभिवादन।
1: तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। एक समय

0: ऐसा था जब हमारा देश एक कंज्यूमर इकोनॉमी था, यानी कि हम हर प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे, वहां से लेकर एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने तक का सफर कैसा रहा?
1: इंडिया हमेशा एक बहुत लार्ज मार्केट की तरह हमेशा देखा गया है, और इनफैक्ट मेक इन इंडिया ने ये इस देश को दिया है कि इस देश में कितनी, हम सिर्फ अपना एक लार्ज मार्केट ही नहीं है बल्कि हमारा विजन है, हम इस देश में मैन्युफैक्चरिंग का एक इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में क्रिएट हुआ है, उससे आप एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए जैसे मोबाइल फ़ोन्स। इससे पहले हमारे यहाँ 100% मोबाइल फ़ोन हमेशा इम्पोर्ट होते थे देश में, लेकिन आज मेक इन इंडिया जब 2014 में लॉन्च हुआ, आज 10 से 11 साल के पीरियड में पूरा हम 99% मोबाइल फ़ोन्स हम इंडिया में बना रहे हैं। यही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर देशों में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और ओवरऑल आप एक इकोसिस्टम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप आज हमने डेवलप्ड इंडिया बाय 2047 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हमारे देश में करीब 80 करोड़ से ज़्यादा MSMEs हैं। तो MSMEs हैं तो उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी इससे पहले तक थे, हमारे आयात में हमारे कई सारी चीज़ें डिपेंड करती थी, लेकिन आज मेक इन इंडिया की वजह से आप देखिए हमारे यहाँ, चाहे आप वंदे भारत ट्रेन की बात करें, आप डिफेंस सेक्टर में आप देख लीजिए, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लीजिए, फार्मास्यूटिकल में देख लीजिए, आप 2020 में कोविड आया था तो आप कोविड में किस तरीके से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, तो भारत में एक बहुत ही साइलेंट मूवमेंट चल रहा था कि कैसे हम अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चाहे आप डिज़ाइन की बात करें, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट करके आप एक असेंबली करना ही उसमें काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, बन रहा है, चाहे डिज़ाइन की बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें, और उसके बाद ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। तो मेक इन इंडिया ने देश को एक ऐसा एक देश को विश्व स्तर पर एक ऐसी पहचान दी है कि हम सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम जो बाहर की कंपनीज हैं, बाहर की कंपनीज, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, तो अगर यहीं पे वो बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट करके हर स्टेट में जा करके, जहाँ जहाँ स्टेट्स में भी इसमें बढ़ चढ़ के जिन्होंने हिस्सा लिया, आज उस देश में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, और जो बाहर के इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी एक सुविधा है कि यहाँ पे अगर अपनी सप्लाई चेन डेवलप करेंगे, इस इकोसिस्टम में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उनको जो है बाहर मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया एक खुद ही एक बहुत बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। और इससे पहले अगर आप देखें तो साउथ साइड में हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक कंसंट्रेशन था, लेकिन मेक इन इंडिया के बाद आप देख रहे हैं चाहे नॉर्थ में, यूपी फॉर एग्जांपल लैंड लॉक्ड स्टेट होने के बाद भी, और जिस तरीके से वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है और जो फैक्ट्रीज लग रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज लगते हैं तो देश में युवाओं के लिए रोजगार पैदा होता है, तो ये मेक इन इंडिया की खास बात ये रही है, इसने देश को एक नई पहचान दी है और हमारे उद्यमियों को एक ऐसा इकोसिस्टम दिया है जहाँ पे वो अपने देश के लिए ही नहीं बना रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट करने के लिए भी अपनी चीज़ों को बना रहे हैं।
0: इनफैक्ट मेक इन इंडिया की जो बुनियाद रही है वो रही है इन्वेस्ट, डिज़ाइन और इनोवेट, यानी हर तरीके से हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हर कड़ी को अपने से जोड़ सकें। डॉक्टर शरद, आपके क्या विचार हैं इस विषय पर?
2: जिस तरीके से चाइना का डोमिनेंस था, चाइना को दुनिया की फैक्ट्री बोला जाता, अभी तक बोला जाता था, और अगर हम पश्चिमी देशों में जाएं तो वहां पर जो चाइना प्लस वन की बात करी जाती थी कि उनको, वो लोग ढूंढते थे कि चाइना के अलावा कोई और भी होना चाहिए जो कि हमारी जरूरतों को पूरी कर सके। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को, जब वो पावर में आए तो आज 12 साल हो चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले, हमें याद है वो जो शेर एक था मेक इन इंडिया का, और वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके गरजने लगा, और जितना गरजने लगा, जैसे डॉक्टर मेहता बता रहे थे कि आज हर भारतीय जो मोबाइल फोन यूज करता है वो ऑलमोस्ट आप भारत का मैन्युफैक्चर, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मोबाइल हाथ में जब लेते थे कोई कहाँ बन के आते हैं, किस जगह, ज़्यादातर तो चाइना में बनते थे और भी देशों में बनते थे। और खाली मोबाइल फ़ोन तक अगर मैं सीमित नहीं रखूँ बात को, तो मैं दवाइयों की बात करूँ, आज भारत दुनिया की फार्मेसी है और भारत की दवाइयाँ अमेरिका से लेकर यूरोप तक ना केवल पसंद की जाती हैं बल्कि वहाँ उसकी कीमत को भी मैच कर पाना बाकी देशों के लिए मुश्किल होता है, जितनी रिसर्च जाती है उसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्सटाइल्स है, लेदर है, फुटवेयर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, मतलब हम अगर मैन्युफैक्चर

0: में जाएं तो अब ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो कि सजावट के लिए होती है, पर उसमें भी आज भारत को महारत था। तो जरूरी चीज दवाई जैसी जिसके जो लाइफ सेविंग होती है, और एक सजावट वाली चीज। तो हमने, मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में हमने अक्रॉस द बोर्ड हमने सब जगह एक एक जगह अपनी बना लिया दुनिया में, और दुनिया को आज लगता है कि हमें पूरी तरह से चाइना पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। भारत आज वो जगह धीरे धीरे लेता जा रहा है। और मुझे ये भी लगता है निहारिका कि भारत जैसा जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 140-145 करोड़ लोग गिन के अगले साल सामने आ जाएंगे, सेंसस चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा जब पॉपुलस कंट्री होती है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग ना केवल भारत की पहचान बताता है उत्पादन के क्षेत्र में, बल्कि यहाँ पर जैसा डॉक्टर मेहता ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का बहुत बड़ा जरिया है।
1: जी
0: और अगर इतने बड़े स्केल पर देखिए, सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ कृषि क्षेत्र से आते थे, आज तक तो जब भारत आजाद हुआ था
1: बिल्कुल
0: तो कृषि क्षेत्र पर ज्यादातर निर्भर था। आज वो निर्भरता धीरे धीरे धीरे धीरे कम हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि कृषि क्षेत्र का योगदान कम हो गया है, पर उस पर निर्भरता कम हुई है। और वो युवा आज जो जिसको हम एस्पिरेशनल यूथ कहते हैं, वो पढ़ के निकल रहा है और वो चाहता है कि काम करना, कुछ भारत के लिए करके दिखाना। तो इसको हम वैल्यू एडिशन बाय यूथ कहते हैं, यानी कि आपने कोई चीज बनाई, उसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग के जरिए उसको कुछ और शेप दे दिया, इनोवेट करके कुछ और बना दिया। और मुझसे तो आप सच पूछिए, बहुत लोग पूछते हैं जो युवा आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर हम स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो स्टार्टअप आप देखते हैं युवा ज्यादातर उनका इंटरेस्ट टेक की तरफ होता है। कोई
1: जी
0: ऐप बना ली, किसी ने कोई गाड़ियां इकट्ठी कर ली, किसी ने पार्किंग इकट्ठी कर ली, किसी ने खाना इकट्ठा कर लिया। तो मेरे जो दिल, मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ, मेरे दिल के करीब जो रहते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग वाले रहते हैं। और मुझसे जब वो सवाल पूछते हैं कि क्या चीज मैन्युफैक्चर करी जाए, तो बड़ा आसान है। मैंने कहा तो आप, हम जैसे चाइना से बहुत सारा सामान मंगाते हैं, $100 बिलियन से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। मैंने कहा जो चाइना से सामान आता है, प्रधानमंत्री जी भी जब बार बार कहते हैं कि जब किसी पर निर्भरता रहेगी तो वो निर्भरता आपको कभी ना कभी तकलीफ देगी। और ये हमने अभी हाल में जो दुनिया के हालात हैं
1: बिल्कुल
0: उसमें हमने इसको होते देखा और आज भी हम देख रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप ये जो लिस्ट है चाइना से आने वाली, मेरे पास वो लिस्ट है, वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, कोई भी देख सकता है। उसमें से कोई एक आइटम उठा के, चाहे आप अपने छोटे से गराज में, अपनी कहीं दुकान हो किराए की, दोस्त की कोई जगह हो, वहां पर आप छोटे से शुरू करिए। और डॉक्टर मेहता तो चेंबर से आते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी स्टोरीज आप पीछे जाके देखेंगे तो जब उन्होंने कभी शुरुआत की थी किसी जमाने में, तो आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां मिलेंगी, छोटी सी घर के कोने में, एक घर की गराज में, एक छोटी सी दुकान में, एक छोटी सी मशीन लगा के एक फैक्ट्री लगाई थी, आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग में भारत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, और युवा शक्ति इसमें जितनी जुड़ेगी उतनी इसको, निहारिका, आपको धीरे धीरे रफ्तार मिलती मिलेगी और पहचान भी इसकी तभी बनेगी, क्योंकि जब युवा आता है तो इनोवेशन साथ लाता है, युवा आता है तो इन्वेंशन साथ लेके आता है। और मुझे लगता है वही मैन्युफैक्चरिंग चाइना ने ये करा बहुत साल पहले, और मुझे लगता है वही भारत की एक अलग पहचान बना के दिखाएगा।
1: आपने इसमें बहुत अहम कड़ी जोड़ दी जो है आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत का आगाज 2020 में हुआ था और उस वक्त पैंडेमिक के दौरान हमारा मकसद था तत्काल आर्थिक सहायता हमारे देश को दी जाए, लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमिक रेजिलियंस की ओर हम आत्मनिर्भर भारत को ले जा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का आगे जाकर क्या रोल रहने वाला है और ये हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने में कैसे सहायता करेगा?
2: ये बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक धारणा है, एक ऐसी पहचान देश को देनी है कि जिसमें कि हम इंपोर्ट डिपेंडेंस ना करें, हमें हर चीज़, हमारी ऐसी कैपेबिलिटीज़, हम अपने देश में ऐसी कैपेबिलिटीज़ बनाएं जिससे कि हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस ना रहे और हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को कर सकें। और ये हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड के टाइम में ये शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने, कि उसमें कई सारी ऐसी स्कीम्स, क्योंकि हमारे देश का जो एमएसएमई का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखें तो 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था तो उस टाइम हमारे देश में करीब 400 स्टार्टअप थे, बट आज जो है 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे देश में काम कर रहे हैं और उसमें करीब वी आर द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, तीसरे हम बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम हैं। इसमें आत्मनिर्भरता की एक ऐसी एक मुहिम, एक चलिए मूवमेंट चला है जिसमें कि हमारे देश का हर युवा, क्योंकि आज भारत एक सबसे बड़ा आबादी वाला देश ही नहीं है बल्कि हमारी 65% जो हमारी आबादी है, लोग हैं, इसमें युवा हैं, जिससे जो कि 35 से 40 साल तक के जो युवा हैं, तो उनके लिए ये आत्मनिर्भर भारत का जो एक मूवमेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, तो इसमें ये दर्शाता कि हमें हर चीज़ अपने देश में, क्योंकि अपना देश में जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन की कमी नहीं है, क्योंकि आज भी हमारी इकोनॉमी कंजम्पशन ओरिएंटेड है। और चाहे गांव में आप, चाहे विलेजेस में,

0: उसमें चाहे आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख लीजिए, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उससे कई ऐसी रोजगार की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक पटेटो है, अगर आप आलू का अगर एक आलू लेंगे तो मैक्सिमम कितने कुछ पैसे का मिलेगा,
1: जी
0: बट एक आलू से चिप्स का पैकेट बिकता है वो 15 से 20 रुपए का बिकता है,
1: जी
0: वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की पावर। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग हमारे गांव गांव में, क्योंकि इंडिया में आज हमारी जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी है आज भी, तो वहां पे आत्मनिर्भरता तब आएगी जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसे जो है शहरों की तरह माइग्रेट ना करना पड़े,
1: जी
0: वो जो है उनके लिए ऐसे रोजगार की संभावनाएं हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और स्टेट में पैदा हो जाएं कि जिससे कि वो वहीं पे उसको पैदा कर सकें और वो अपना आत्मनिर्भर अपने आप में हो सकें, वो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई होगी। इसके लिए क्या है, भारत सरकार ने इस टाइम जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं पूरे देश में, उससे क्या है एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, क्योंकि हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो इसी आत्मनिर्भरता की दिशा में ये देखा सरकार ने कि एक्सप्रेसवेज को बना के, रोड्स को बना के, और जो ट्रेन से और शिपिंग सारा जो है इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्रिएट करके के देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम किया, जिससे कि हम जगह जगह गाँव में हर जगह आज रोड है, जहां पे रोड है वहां पे कोई भी आप उद्यम शुरू करके, कोई भी उद्योग शुरू करके उसको हब तक, जो बिजनेस हब्स हैं वहां तक आसानी से ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है।
1: आपने अपने उदाहरणों के ज़रिए और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात करके एक बहुत अहम कड़ी और इसमें जोड़ दी। मेरा ख्याल है अब हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के बारे में भी बात करनी चाहिए। हमारे विजन की शुरुआत हुई थी निवेश आकर्षित करने से, लेकिन अब वही विजन आगे बढ़ के स्केल, कंपेटिटिवनेस और एक्सपोर्ट कैपेसिटी को विकसित करने में जा चुका है। तो इस संदर्भ में पीएलआई की क्या भूमिका रहेगी और ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए? डॉक्टर कोहली, पहले अगर आप कुछ कहना चाहें इस बारे
2: देखिए,
1: में।
2: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, क्योंकि जब बात आई आगे बढ़ाने की, मैन्युफैक्चरिंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए, तो मुझे लग रहा है पीएलआई सेक्टर ने, यहाँ पीएलआई की जो पूरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और हम अगर आप नंबर्स में जाइए तो टोटल प्रोडक्शन सेल्स की मैं बात करूं तो 20 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके जो एनकंपस हो चुका है, इसके अंतर्गत आ चुका है। एक्सपोर्ट देखें तो 8 लाख करोड़ से ऊपर के एक्सपोर्ट्स पीएलआई के अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, मान लीजिए किसी का एक शेड चलता है, वहां से उसको 2 शेड लगाने के लिए एक इंसेंटिव मिल रहा है, वो मेहनत करता है, कोशिश करता है कि ऑर्डर्स और लेकर आए, तो इससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है निहारिका, अगर हम उसको देखें तो करीब 14-15 लाख लोगों से भी ज्यादा को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इसके जरिए मिल चुकी है। और मुझे लगता है सरकार का इसमें एक तीर से कई निशाने लगते हैं। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एक तरफ आपकी प्रोडक्शन स्केल अप होती है, एक तरफ जो स्पेयर कैपेसिटी है वो पूरी होती है, और सबसे बड़ी बात जो एक इकोनॉमी का इंजन होता है, जब हम जीडीपी की बात करते हैं जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो वो केपेक्स इसमें निकल के आता है, प्राइवेट केपेक्स। तो मुझे लगता है एक पीएलआई से ये इतनी कामयाब स्कीम रही है कि हालांकि आम आदमी को शायद सीधी तरीके से इसका ना पता लगे, हो सकता है हमें जो लोग सुन रहे हैं सबके सब, डॉक्टर मेहता तो खुद इंडस्ट्री से आते हैं, पर जो आम कंज्यूमर है उसके लिए पीएलआई स्कीम शायद सीधे तौर पे उसको मायने नहीं रखती है, पर पीछे से जो आप तक सामान पहुंच रहा है, शायद आपके घर का कोई व्यक्ति वहां नौकरी कर रहा है उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में, हो सकता है वो पीएलआई स्कीम की वजह से उसको नौकरी मिली हो, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री स्केल अप नहीं करती, अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करती, अगर वो उसको नेक्स्ट लेवल पर ना ले जाती, तो शायद ये जो मैंने 15 लाख से ऊपर नौकरियों की बात करी, शायद ये नौकरी नहीं मिलती। तो मुझे लगता है पीएलआई के ऐसी स्कीम रही है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये हो नहीं सकता कि हम चाइना का एक मॉडल का ना सोचें। तो चाइना में जिस तरीके से काम किया गया, जब उसमें युवा का हाथ पकड़ के उनको प्लॉट दिया गया, उनको फैक्ट्री लगाई गई, उनको पैसा दिया गया, तो वो तरीका था कि उसमें बहुत सारे युवा ऐसा भी थे जो काम नहीं करना चाहते थे, पर उनको ऐसा लग रहा था कई बार जैसे हम उसमें धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये पीएलआई स्कीम ऐसी है जहां पर आप एक स्कीम बनाते हैं, आपको एक टारगेट दिया जाता है, अगर आप इसको क्रॉस कर लेते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल, बहुत काम की रही है, और एक स्कीम के जरिए सरकार ने देखिए ना, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो टैक्सेस भी आते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है तो ऑर्डर्स भी ज्यादा आते हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, नौकरियों की मैंने पहले ही बात करी, और आपके जो देश में स्पेयर कैपेसिटी है मशीन्स में, मैं बहुत सारी फैक्ट्रीज में जाता हूं जहां पर कोई 70% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, कोई 50% पे काम कर रही है, उनके पास जगह भी है, और कुछ एक के पास तो मशीन्स भी होती हैं, पर वो कहते हैं हमारे पास इतने ऑर्डर्स नहीं। अब जब इंसेंटिव मिलता है, ये एक मानसिकता है इंसान की कि जब कोई इंसेंटिव होता है तो वो आपको ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित करता है, आपको और मेहनत करने के लिए वो उकसाता है। तो आई थिंक पीएलआई स्कीम हैज बीन वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात पीएलआई स्कीम में हो रही है कि इसकी कामयाबी को देखते हुए इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज इसमें जोड़ी जा रही हैं। आप हर साल कुछ

0: चीज मोबाइल फोन से होती है. वहां पे सेमीकंडक्टर्स का क्या रोल है, आज के जमाने में सेमीकंडक्टर्स इतने ज्यादा आवश्यक क्यों हैं, और उसी रिस्पेक्ट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की क्या भूमिका है?
1: भी जैसे डॉक्टर कोहली ने भी कहा, क्योंकि पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो प्राइवेट केपेक्स है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन्होंने जो है देश में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, और उनमें से एक जो सनराइज सेक्टर है, जो फ्यूचर का सेक्टर है, जो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक है देश के लिए, तो वो है सेमीकंडक्टर मिशन. क्योंकि जो इंडिया का सेमीकॉन मिशन है, ये बहुत बड़ी सोच है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ किन्हीं कारण से, बट आज ये हुआ है. कि इसमें क्या है कि जब जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे आप गाड़ी लीजिए, चाहे आप घड़ी लीजिए, बड़ी से बड़ी रॉकेट्स ले लीजिए, स्पेस ले लीजिए, उसमें सब में क्या है, मोबाइल फोन है, सब में चिप आती है. तो चिप की मैन्युफैक्चरिंग देश में जो इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, और जो हम डिफरेंट कोलैब, क्योंकि आज जो है दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चिप का जो एक है वो है ताइवान में, तो जापान है, ताइवान है, इन देशों ने बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बना रखा है. तो अब हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके देश में, ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विजन है, क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं. जब तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी चिप की, तब तक हम बड़े बड़े जो इनोवेशंस हैं देश में, जो नए नए प्रोडक्ट आएंगे, और जिस तरीके से एक पूरा परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, एक पूरा रैपिड चेंज हो रहा है. मैं कह रहा हूँ आज टेक्नोलॉजी दिनों में नहीं, घंटों में बदल रही है
0: जी.
1: इस युग में आज हम जी रहे हैं. तो उसमें जो है सेमीकंडक्टर मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है, बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्कीम है हमारे देश के लिए. और इसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से हमारे देश से इसमें हिस्सा ले रही हैं. इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, चिप में आज हम विदेशों में निर्भर करते हैं, तो इसकी अगर पूरा हमने प्रोडक्ट भी बना लिया, अगर चिप अगर नहीं है तो प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं बनता. तो इसलिए चिप की हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे हैं, राइट फ्रॉम कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड देन फाइनली मैन्युफैक्चरिंग. तो ये जो एक देश में सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम सरकार ने बनाया है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ये जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कदम है, जो इस देश को विकसित भारत बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी बाय 2047. मैं समझता हूँ जिस तरीके से इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे मिशन में बड़ी बड़ी कंपनीज देश हमारे जुड़ रहे हैं, और टेक्नोलॉजी उसमें हमारे देश में भी डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से जो इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल प्रोवेस है, जो हमारे देश के बच्चे हैं जो कि काफ़ी साइंस है, मैथ्स है एसटीएम के, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसमें जब इसमें काम करेंगे तो जल्दी ही देश में एक नया इनोवेशन लाएंगे. तो ये वो दिन दूर नहीं जब चिप टेक्नोलॉजी में या सेमीकंडक्टर में हमारे देश भी दुनिया के देशों के
0: बराबर
1: का हो जाएगा.
0: जी बिल्कुल. और मेरा ख्याल है ग्लोबल सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण होती है. आज की अगर हम ग्लोबल स्थिति देखें, आज की अगर हम दुनिया की दिशा देखें या रुख देखें, इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी हमारा देश डटा रहा, तो ऐसे केस में आत्मनिर्भर होना कितने मायने रखता है, और ऐसे केस में सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर मिशन की महत्ता क्या और बढ़ जाती है?
2: जैसा कि अभी बात हुई कि टीएसएमसी जो ताइवान की कंपनी है, जिसका मुख्यतः इसमें शेयर हुआ करता था, आजकल कुछ साउथ कोरिया, कुछ जापान, कुछ चाइना, थोड़े बहुत अमेरिका के पास भी था, तो इस कदर से निर्भरता थी कि कोविड जब आया, और मुझे अभी भी याद है एक समय लैपटॉप्स की शॉर्टेज हो गई, फिर जितनी भी चीजें, सब लोगों को एहसास हुआ कि चिप नाम की भी कोई चीज है. उससे पहले तो लोगों ने इसके बारे में इतना सुना नहीं था. ऑटोमोबाइल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, डिफेंस हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, स्मार्टफोन्स है, रिन्यूएबल एनर्जी, जितने भी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बिना चिप के नहीं बन सकती. तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा, और आज हम 2026 की शुरुआत की बात करें तो करीब 10 प्रोजेक्ट्स भारत में इस समय पाइपलाइन में है, लगने के अलग अलग स्टेज पे हैं, और कुछ तो सेंटर्स भी बन रहे हैं. तो इसमें भारत को अपने आप को एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में हम दुनिया की मार्केट हैं, और सोचिए वो मार्केट अगर निर्भर रहे किसी के ऊपर. अभी हाल में हमने देखा कि जब तेल की दिक्कत आई, सो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई, यहाँ पर हमें तेल के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, भारत सरकार ने उसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी संभालने की, पर कीमतों के लिहाज पे हम मजबूर हो गए. तो मुझे प्रधानमंत्री जी का बार बार वो बात याद आती है कि जो दूसरे पर निर्भर रहेगा वो कभी ना कभी परेशानी में जरूर आएगा. तो मुझे लगता है यहीं से आत्मनिर्भरता 2020 में कोविड जब आया था उस समय निकल के आई, और सप्लाई चेन आपने देखा कि दवाइयों की हो, रेयर अर्थ मिनरल्स की हो, फूड ग्रेन्स की हो.

0: तो हालांकि भारत को आज दवाइयों के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के मामले में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप सेमीकॉन में भी आज से एक दो साल बाद हमें हो सकता है कि हमें हम उल्टा दुनिया की जरूरतों को पूरी करें अपनी जरूरतों के अलावा, और कपड़ों के मामले में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर बहुत सारे देश निहारिका आज दुनिया में ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा दुनिया पर निर्भर करते हैं, और ऐसे वक्त जब कुछ देश कोशिश करते हैं कि इसको हम दूसरों को ना सप्लाई करें, नए नए रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, टैरिफ्स लगाए जाते हैं, तो ऐसे में और जरूरी हो जाता है आत्मनिर्भरता। मुझे लगता है आत्मनिर्भरता जितनी कोविड में जरूरी थी आज उससे कई गुना आज की परिस्थिति में और ज्यादा जरूरत बन चुकी है।
1: बिल्कुल, मेरा ख्याल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करनी चाहिए हमें इस चर्चा में। जहां तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, एक डिफरेंस में हमारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि सेल्फ रिलायंस का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ इम्पोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक डिफेंस की बात है वहां पर सेल्फ रिलायंस वर्सेस बेस्ट टेक्नोलॉजी को एक्सेस करना, इन दोनों में बैलेंस और संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, हमारे देश की क्या भूमिका रही है?
0: बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी एक अच्छी बात बोली कि आत्मनिर्भरता का ये अर्थ नहीं है कि हम अपने आप को दुनिया से काट लें और हम अलग थलग हो जाएं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जितनी आपकी ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ तो वोकल फॉर लोकल की ग्लोबल की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि अगर कोई देश या कोई दुनिया की सप्लाई चेन अपने आप को काट देती है, रोक लेती है, तो उससे हमें परेशानी ना आए। और डिफेंस की आपने बात करी, एक जमाना था जब हम नट्स एंड बोल्ट्स भी जो हमारे टैंक्स में मशीन गन्स में लगते थे वो भी बाहर से आया करते थे, और आज अगर आप देखें तो 2014-15 से लेके आज तक की बात करूं तो करीब 1,78,000 करोड़ के हम टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में जा चुके हैं। इसमें आज भारत का बना तेजस जो लड़ाकू विमान है उसको अभी पीछे विदेशी मेहमान आए थे उनको बैठा के उसमें चलाया गया, और ब्रह्मोस मिसाइल है जिसके हमें ऑर्डर्स दुनिया भर से मिल रहे हैं। करीब करीब 70-80 देशों को आज हम डिफेंस एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में, वो देश जो नट्स एंड बोल्ट्स बाहर से मंगाता था आज ना केवल अपने लिए बना रहा है बल्कि दुनिया के लिए बना रहा है। तो यही मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग का सारा जादू है कि आप किसी तरह धीरे धीरे उसको सब्स्टिट्यूट करके पहले खुद अपने लिए बनाएं और अपने लिए बना के फिर आप दुनिया के लिए बनाने लग जाएं। तो ये डिफेंस एक ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछें कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने महारत हासिल करी है तो डिफेंस में दूसरे नंबर पर डालूंगा, जहां पर हालांकि मैंने जैसे आपको कहा लेदर है, फुटवेयर है, टेक्सटाइल्स है, ये सब तो चलते ही हैं, पर जहां पर हम पूरी तरह से निर्भर थे वहां पर अगर हमने काफी हद तक आत्मनिर्भरता लाई है तो वो डिफेंस सेक्टर है, और यहीं पर सप्लाई चेन का महत्व तो बढ़ जाता है। और आजकल जैसी निहारिका ये ना भूलें, हम जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर का धीरे धीरे आपको महत्व और बढ़ता हुआ दिखाई देगा।
1: बिल्कुल,
2: देखिए डिफेंस एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले हम एक नट बोल्ट भी बाहर से इसमें इम्पोर्ट करते थे, बट आज डिफेंस सेक्टर को जो स्ट्रेंथ मिली है, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल की बात करिए, आज हम ब्रह्मोस मिसाइल हमारे देश को ही सुरक्षित नहीं कर रही है बल्कि पूरी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे कई आप देश आज चाहे आप चांद में देख लीजिए वहाँ जाने की तैयारी कर, रॉकेट हमारे लॉन्च किए, प्राइवेट कंपनीज ने हमारे यहाँ से रॉकेट लॉन्च किए हैं। तो ये जो एक इकोसिस्टम बना है जिससे कि डिफेंस में हम लोग आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम हाई टेक्नोलॉजी डेफिनेटली जैसे रफाल्स हैं ये सब हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, बट धीरे धीरे हम उसका भी अपने देश में इकोसिस्टम बना रहे हैं।
1: अब अगर मैं एक बात ये करूं, निजी स्तर पे शायद हमें डिफेंस सेक्टर की बातें बहुत दूर की लगें या शायद ये लगे कि इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एक ऐसी बात जिससे आम आदमी का रिलेशन है, संबंध है, वो है वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत ट्रेन एक ऐसी चीज है जो ना केवल ये कहने के लिए है कि भारत के पास एक नई ट्रेन है, लेकिन वो इंडिजिनस इंजीनियरिंग का बहुत खूब प्रदर्शन है।
2: देखिए वंदे भारत उस एक पूरे इकोसिस्टम का एक रिजल्ट है जो पिछले 12 साल में देश में बना है, जो मेक इन इंडिया है। तो कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वंदे भारत जैसी ट्रेन भी हमारे ट्रैक्स में चलेगी, और जहाँ पे कि जो सुविधाएं हैं जैसे प्लेन में मिलती हैं वही सुविधाएं आपको वंदे भारत में एकदम क्लीन, नीट, क्लीन, फास्ट, ऑन टाइम, बिल्कुल ये एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि आपको सफ़र करने में एक बार आप उससे जर्नी करेंगे तो आपको बार बार उसमें करने का दिल करेगा। ये एक नए भारत की पहचान है, वंदे भारत एक नए भारत की नई पहचान है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया की पहचान है।
1: आपके विचार वंदे भारत ट्रेन के बारे में?
0: मुझे लगता है निहारिका के जो लोग विदेश जाते थे और खासकर जो विकसित हिस्सा दुनिया का है वहां जाके जब ट्रेन में बैठते थे तो अक्सर उनके मुंह से एक बात आती थी कि ऐसी ट्रेन हमारे यहाँ क्यों नहीं होती हैं। तो मुझे लगता है वो सपना पूरा हो चुका है। अगर आप वंदे भारत को देखेंगे, जिन लोगों ने सफर किया, आज 162 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन्स भारत में ऑपरेशनल हैं और हर थोड़े दिन बाद हमें एक नई वंदे भारत होती है, अब तो उसमें स्लीपर भी आ गया है। तो मुझे लगता है वंदे भारत ने भारत के रेल नेटवर्क को एक नई पहचान दी है और इसको आधुनिकीकरण में पूरे के पूरे रेलवे का बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इसमें स्पीड आई है, कम्फर्ट आया है, क्लीनलीनेस आई है, एफिशिएंसी आई है, और आपको एरोप्लेन का जो अनुभव जो लोग करते थे उनको लगता था कि ट्रेन, क्योंकि यहाँ से जब जाते थे लोग कहते थे जो प्लेन में सुविधाएं हैं वहाँ ट्रेन में दिखती हैं, आज वो सुविधाएं हमारे देश में आ चुकी हैं। और इसकी वजह से निहारिका मैं ये भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन हुआ है। आज रेलवे स्टेशन वो पहले वाले रेलवे स्टेशन नहीं रहे, आज बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो कि आपको एयरपोर्ट की शक्ल में दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। एक सवाल मैं यहाँ पर हमारे देश के MSMEs के बारे में पूछना चाहूंगी। हम यूं तो बड़े उद्योगों की और बड़ी फैक्ट्रियों की बात करते हैं जब हम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें MSMEs की भी बहुत अहम भूमिका है।
2: बिल्कुल, देखिए इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि आज हमारे देश में जो पहले रजिस्टर्ड MSMEs हुआ करते थे, करीब वो थे 2 से 3 करोड़, आज 8 करोड़ जो है रजिस्टर्ड, 80 मिलियन रजिस्टर्ड MSMEs हमारे देश में हैं।
1: जी।
2: तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि GST लाने के बाद जिस तरीके से एक फॉर्मल इकोनॉमी में इनका इंक्लूजन हो गया, और जिस तरीके से कोविड के टाइम में जो एक MSMEs को पूरा इसमें बहुत बड़ा दिक्कत आई थी, सरकार ने जिस तरीके से MSMEs को सपोर्ट किया, उसके बाद जो MSMEs की ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 3-4 साल में, ये इसलिए देखने को मिली है जो इतने सारे जो हमारे स्कीम्स, बड़ी बड़ी जो योजनाएं चली हैं, चाहे आप मेक इन इंडिया की बात कर लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात कर लीजिए, आत्मनिर्भर भारत की बात कर लीजिए, या अब सेमिकॉन की बात करें, तो उसमें जो सप्लाई चेन में जो है, क्योंकि एक तो बड़ी कंपनीज हैं लेकिन उसमें MSMEs की बहुत बड़ी भूमिका है। जब एक ओवरऑल सप्लाई चेन, एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात करते हैं, तो हमारे देश के MSMEs उसमें जुड़ेंगे, जुड़ रहे हैं, जो कि हमारे एक देश के लिए ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने में बहुत बड़ी मदद होगी और पूरा मैन्युफैक्चरिंग कल्चर हमारे देश में इससे पैदा हो रहा है।
1: बिल्कुल, और मेरा ख्याल है इससे और अपॉर्चुनिटी डेवलप करना भी एक बहुत आसान चीज हो जाएगी, ताकि आगे जाकर यही फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर काम कर सकें।
2: बिल्कुल।
1: एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करना चाहूंगी, और वो ये कि अगर हम बड़े चित्र को देखें, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI, डिफेंस, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए, आपके हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव क्या रहा है और आगे जाकर हमारी कहानी किस तरह की होने वाली है?
0: मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव, शुरू में डॉक्टर मेहता ने बताया कि हमारे 65% आबादी 35 साल से कम की है, तो सबसे बड़ा बदलाव हमारी युवा शक्ति का एस्पिरेशनल होना है कि आज हमारी युवा शक्ति सपना देखती है, और वो 2047 में विकसित भारत खाली एक तारीख नहीं है, एक साल नहीं है। हर युवा कोशिश कर रहा है कि अपनी बेहतरी के साथ साथ वो देश की बेहतरी करे, और सबसे बड़ा बदलाव तो मैं मैन्युफैक्चरिंग को मानता हूँ, ये तो मैं, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग जब भारत में GDP में योगदान इसका बहुत कम हुआ करता था, धीरे धीरे वो योगदान बढ़ रहा है। और जो अगला बदलाव सबसे ज्यादा स्टार्टअप जिसकी बात करी, तीसरा बड़ा हम इकोसिस्टम है, और युवा आज नौकरी करने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए मेहनत कर रहा है कि मैं और साथ में लोगों को नौकरियां, तो बहुत लाखों लोग आज स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। बदलाव की बात करें निहारिका, तो शायद हमें 2 घंटे भी कम रहेंगे पर मुख्य आपने पूछे तो मैंने उसका जिक्र
1: किया। बिल्कुल बिल्कुल।
2: सबसे बड़ा बदलाव जो पिछले 12 साल में देश में देखने को मिला है, ये एक बहुत ही विश्वास से भरा नया भारत, जो नया भारत आज भारत की पहचान है। भारत के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं, जो पहले जाते थे, जिस तरीके से उनमें विश्वास है और जो लोग जिस तरीके से हमें देखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, और जो बाकी सेमीकंडक्टर अब जो मिशन बना रहे हैं, और बाकी फार्मास्यूटिकल्स में, जिस तरीके से हमने सारे स्ट्रैटेजिक सेक्टर में अपने देश में एक नया इनोवेटिव कल्चर पैदा किया है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्योंकि आज जो है इनोवेशन जो लाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो है स्टार्टअप्स की, और जिस तरीके से पिछले 3-4 साल में करीब 114 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में आए हैं, जो कि 2-3 साल में, ये हमारी उस ताकत को दर्शाता है कि जब इकोसिस्टम एक बनाया जाएगा तो कैसे इस देश का युवा पूरे दुनिया को दिखा सकता है कि भारत कुछ भी करने को तैयार है। ये एक नया भारत है, ये हमारी नई पहचान है।
1: बिल्कुल, यानी आज के जमाने में हमें हर रूप में आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया। थैंक यू।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 16वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत तक। इसमें भाग ले रहे थे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और महासचिव डॉक्टर

0: रंजीत मेहता और आर्थिक विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIR NSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शाहरुख खान और हेमा सरदेसाई की आवाज़ में फिल्म जोश से।

0: सरे
1: अबुन बोला तू मेरी लैला वो पारी फेंकता है साला अबुन जब भी सच्ची बोलता है उसको हमेशा ही झूठ लगता है।

अनुवलिक का संगीत नितिन रैकवार के लिखे बोल, हिमा सरदेसाई और शाहरुख खान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म जोश से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म गुलाम से।

जतिन ललित का संगीत नितिन रायकवार के लिखे बोल, आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुलाम से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा
1: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
0: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
1: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
1: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
0: शाम सुहानी हो,
1: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।
4: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मित मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री

0: मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच सकी।
1: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं।
0: बुधवार को दुबई से तल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं कि मन की बात से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
2: 2014 अक्टूबर से आकाशवाणी पर शुरू हुए मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से संवाद करते हैं। यह कोई नीतिगत संबोधन नहीं है। इसमें किसी आम नागरिक द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाया जाता है, किसी योजना को सरल और सहज भाषा में समझाया जाता है और स्वच्छता, जल संरक्षण या आत्मनिर्भरता जैसे विषयों में लोगों से सहयोग की अपील की जाती है। रेडियो उन जगहों तक भी पहुंचता है जहां संचार का कोई और माध्यम नहीं पहुंच पाता। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा था,
3: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया।
2: मीडिया से बातचीत में लखनऊ के विभिन्न हिस्सों से श्रोताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को एक दूसरे से और देश से जुड़ने का एक नया माध्यम प्रदान किया है।
4: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। आप भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उसमें अमल करना चाहिए।
5: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात को कर रहे हैं।
2: आज करोड़ों भारतीय प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुनते हैं। एक आकांक्षी भारत उत्सुकता के साथ उन कहानियों को सुनता है जिनमें बदलाव के वास्तविक अनुभव सामने आते हैं। मन की बात ने सार्वजनिक संचार के स्वरूप को एक नया रूप दिया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। एक रिपोर्ट।
6: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्व भर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उनके सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने भारतीय समुदाय और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ पेचिंग में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। जापान में भारत की राजदूत नागुमा मल्लिक और भारतीय समुदाय के सदस्यों ने टोक्यो के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बहरीन और दक्षिण कोरिया में भी इसी तरह के स्मृति कार्यक्रम आयोजित किए गए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के क्रॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवम्बर तक उपलब्ध रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि निस्वार्थ सेवा भारत की संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों का मूल आधार है। नई दिल्ली में आज आयोजित 11वें संत ईश्वर सम्मान समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश के महान संतों और विचारकों ने लोगों को स्वार्थ की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रेरणा दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहें। X@AIR News हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को शिशु देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें शिशु देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। एक रिपोर्ट।
2: आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने पाया कि 90% से अधिक महिला श्रमिक प्रभावी कवरेज से बाहर हैं। आयोग ने मौजूदा महिला केंद्रित बाल देखभाल अवकाश ढांचे को लिंग भेद रहित बाल देखभाल अवकाश में बदलने की सिफारिश की है, जो दोनों अभिभावकों में से किसी एक को उपलब्ध हो। रिपोर्ट में मौजूदा 730 दिनों के बाल देखभाल अवकाश ढांचे को दोनों कामकाजी अभिभावकों के बीच समान रूप से विभाजित करने का प्रस्ताव है। इसमें प्रत्येक को 365 दिन मिलेंगे या साझा पूल बनाने का प्रस्ताव है, जहां दोनों अभिभावक एक ही संगठन में काम करते हों। 0 से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए रिपोर्ट में प्राथमिक और माध्यमिक देखभालकर्ताओं के बीच 60:40 के रूप में साझा देखभाल मॉडल का भी प्रस्ताव है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सार्वभौमिक और कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार बनाने का भी प्रस्ताव है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मिजोरम में कल दुखद सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले सूचना और प्रसारण जगत के 3 सदस्यों के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये दुर्घटना तब हुई जब आधिकारिक ड्यूटी पर थे और उनका वाहन गहरी खाई में गिर गया। मृतकों में भारतीय सूचना सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर एंगम पामे और नामपीबू मरिनमाई तथा केंद्रीय

0: संचार ब्यूरो के कर्मचारी एच लियानवेला शामिल हैं। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
1: जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया।
2: मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद करता हूँ, उनकी दुआओं से ये मेडल आया।
3: यही सोच के उतरे थे मैट पे कि भाई देश के लिए गोल्ड लाना है, और आखिरी तक मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और भगवान की दया से गोल्ड आया देश के लिए। अपने देशवासियों को डेडिकेट करता हूँ क्योंकि उनकी दुआ ही सबसे ज्यादा काम आती है।
1: पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिन चेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता।
4: बहुत ज्यादा स्पेशल है ये मेडल मेरे लिए, कहीं ना कहीं मैं बॉक्सिंग छोड़ने भी वाली थी, उसके बाद से फिर से मेंटली स्ट्रांग होके आना और जीतना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात, और मैं सोच के आई थी कि इस बार मुझे बर्थडे पे गोल्ड मेडल ही चाहिए।
1: महिला रिकर्व तिरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास गेट खोल दिए गए हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी अब उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में 5 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। कल लक्षद्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की सराहना की। कहा, भारतीय जान लेते नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाते हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 वर्ष बाद महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। पहलवान सुजीत कलकल, मुक्केबाज परवीन हुडा, लवलीना बोरगोहाइन और अंकुश पंघाल ने भी स्वर्ण पदक जीते। भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 76 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi praises brave pilot Smith Machar for saving hundreds of lives and foiling attempt to crash Israel-bound flight. Asserts Indians are those who risk their lives to save others, not take lives. Commerce Minister Piyush Goyal says India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. Nation pays homage to father of the nation Mahatma Gandhi and former Prime Minister Lal Bahadur Shastri on their birth anniversary. And in Asian Games, India wins first women's hockey gold in 44 years. Wrestler Sujit Kalkal and boxers Parveen Hooda, Lovleen Borgohain and Ankush Pangal also clinched gold medals. India climbed to 5th position in overall medal standings, with tally rising to 76, including 16 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today spoke with Captain Smith Machar over the phone, praising his bravery and presence of mind in foiling an alleged attempt to crash an Israel-bound Fly Dubai flight. The Prime Minister said, Indians are not those who take lives, but those who are willing to risk their own lives to save others. He lauded Captain Machar for taking a split-second decision that helped save the lives of hundreds of passengers.
6: Aapki himmat ne, aapke dhairya ne, aur aapki soojbujh ne, and a fraction of second mein itne nirnay kar liye aapne, और इतने लोगों की जान बचाई, और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं हैं, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूं। मैं अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
7: मेरे लिए मैं तरह से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े आइडल थे और मेरे को इसे कॉल करके मेरी हौसलाफजाई कर रहे हैं, मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
5: On Wednesday, Captain Machar got seriously injured after being stabbed by his co-pilot in the cockpit of Fly Dubai flight travelling from Dubai to Tel Aviv. The flight was carrying 174 passengers, including 27 children. The pilot is currently undergoing treatment at a hospital in the UAE. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has called for a WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Mr. Goyal said that India is the fastest-growing large economy in the world, with a domestic demand-driven economy serving 1.4 billion people. He highlighted that India is building manufacturing value chains from design to finished goods as a trusted link in global supply chains. He said India's manufacturing capacity serves its domestic and global needs, and India does not have structural excess capacity in the sectors identified by the G20 presidency. A report.
8: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. He emphasized the importance of preserving policy space for developing countries to grow and feed their people while upholding decision-making by consensus. On the sidelines, Mr. Goyal held bilateral meetings with his counterparts from Australia, Saudi Arabia and South Korea, among others. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
5: This is Akashwani giving you the news. Stay connected with AIR News. Follow us on X at AIR News Alerts and visit newsonair.gov.in for the latest updates. The nation pays homage to the father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. A Sarvadharm Prarthana Sabha was held at Bapu's Samadhi at Rajghat in the national capital. President Draupadi Murmu attended the Sarvadharm Prarthana this morning and paid floral tributes to the father of the nation. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Lok Sabha Speaker Om Birla and other leaders also paid tributes to Mahatma Gandhi at Rajghat. The Vice President and the Prime Minister paid tributes to Mahatma Gandhi at Gandhi Smriti in New Delhi this evening. Several other dignitaries also paid tributes to Bapu. Eminent singers as well as school students sung devotional songs during the programme.

यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई। और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने

कौमी राजधानी में राजघाट पर बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा यानी सभी मजाहिब के दुआइया जलसे का एहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना में शिरकत की और बाबा कौम को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर रहनुमाओं ने भी राजघाट पर महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नजर किए। नायब सदर और वजीर आजम ने आज शाम नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया।

0: प्रोग्राम के दौरान नामवर गुलकारों के साथ साथ स्कूली तलबा ने रूहानी नगमे गाए। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके 122वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वो 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में पैदा हुए, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था। नौउम्री में वो भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और साल 1921 की अदम तावन तहरीक में हिस्सा लिया। आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने उत्तर प्रदेश और उसके बाद मरकजी हुकूमत में कई अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम को आज सुबह कौमी राजधानी में वाकई उनकी यादगार विजय घाट पर गुलहाय अकीदत नजर किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि मन की बात के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: आकाशवाणी पर मन की बात महाना रेडियो प्रोग्राम के तौर पर शुरू हुआ था। इसके आगाज के बाद से एक भी महीना ऐसा नहीं गुजरा जब ये प्रोग्राम नशर ना हुआ हो। ये कोई पॉलिसी से मुतालिक खिताब नहीं है। इस प्रोग्राम में आम लोगों के उन कामों को उजागर किया जाता है जो उन्होंने अच्छे तरीके से अंजाम दिए हों। इस प्रोग्राम के जरिए किसी सरकारी स्कीम को आम फहम जबान में समझाया जाता है और सफाई, सुथराई, पानी या खुद किफालत जैसे मामलात में आवाम से ताउन की अपील की जाती है। रेडियो उन लोगों तक भी पहुंचता है जहां कोई और जराए इबलाग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रोग्राम ने मुल्क के आवाम से बातचीत का एक ऐसा अंदाज पैदा किया है जो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ना ही इंतखाबी मुहिम। अप्रैल 2023 में मन की बात के 100वें नशरिए के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मन की बात में जिन मौजूआत या स्कीमों का अहाता किया गया वो अवामी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर गईं।
2: मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात, मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया।
1: मीडिया से बात करते हुए लखनऊ के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले सामेईन ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ आवाम तक पहुंचाया है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो भी पहल की है देश के हित में की है, तो हमें उससे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक घर का गार्जियन जैसे परिवार का गार्जियन को समझाना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री हमें समझा रहा है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए।
4: देश में बहुत लंबे समय बाद रेडियो की उपयोगिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी ने रेडियो के माध्यम से अपना संदेश गाँव के उन नौजवानों तक पहुँचाया जो इस सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में पिछड़ गए थे और उनकी बात वो कर रहे हैं।
1: मीडिया से बात करते हुए मारूफ अदाकार आमिर खान ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने लोगों को काफी मुतासिर किया है। आज करोड़ों भारतीय वजीर आजम के खिताब को सुनते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सामने आने वाली हुक्मरानी की कामयाबियों की कहानियां सुनते हैं। उमंगों वाला भारत, बदलती हुई हकीकतों की दास्तानें गहरी दिलचस्पी और जुस्तुजू के साथ सुनता है। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि इस महीने की 5 तारीख तक तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। बरतानवी भारतीय शतरंज खिलाड़ी बोधना सिवानंदन के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से खवातीन का ग्रैंड मास्टर खिताब WGM जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी होने का एतराफ किया गया है। इस 11 साल स्कूली तालिबा ने समरकंद उज्बेकिस्तान में मुनक़द 46वें शतरंज ओलंपियाड को जीतकर तारीख रकम की थी, जिससे वो बावकार WGM खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र खिलाड़ी बन गई थी। भारत की सरकर्दा ट्रैप शूटर नीरू ढांडा इतवार को आईची नागोया में होने वाली एशियाई खेलों की अख्तितामी तकरीब में भारत की खवातीन परचम बरदार होंगी। जापान के आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में सोने के तमगे जीतने का सिलसिला जारी है। खेल के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए हॉकी, मुक्केबाजी, कश्ती कुश्ती और तीरंदाजी में 6 सोने के तमगे हासिल किए।

0: और अपनी महारत, अज्म और खेल के आला मेयार का मुजाहिरा किया। ख्वातीन हॉकी के फाइनल में भारतीय टीम ने सख्त मुकाबले में दिफाई चैंपियन चीन को 0-1 देकर सोने का तमगा जीता। लाल रेमेम सियामी ने भारत की जानिब से फैसला कुन वाहिद गोल किया, जबकि गोलकीपर सविता पूनिया ने पेनल्टी स्ट्रोक का बचाव करते हुए भारत की बढ़तरी बरकरार रखी और सोने का तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 44 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहला सोने का तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने 2028 के लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए सोने का तमगा जीता। मर्दों के 80 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में अंकुश पंघल ने जनूबी कोरिया के किम मिन सियोंग को 4-0 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खातून मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने 75 किलोग्राम जुमरे के फाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की। इसके साथ ही तमगे की फहरिस्त में भारत 5वें नंबर पर पहुंच गया है। भारत के तमगों की तादाद बढ़कर 76 हो गई है, जिसमें सोने के 16, चांदी के 25 और कांसे के 35 तमगे शामिल हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बहादुर पायलट स्मिथ मच्छर की सैकड़ों जाने बचाने और इसराइल जाने वाली परवाज को तबाह करने की कोशिश नाकाम बनाने पर तारीफ की। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय वो होते हैं जो दूसरों की जान नहीं लेते हैं, बल्कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते हैं। तिजारत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आलमी सप्लाई चेन में एक काबिल-ए-एतमाद शराकतदार के तौर पर डिजाइन से लेकर तैयार शुदा अशिया तक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन तश्कील दे रहा है। मुल्क ने बाबा कौम महात्मा गांधी और साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। और एशियाई खेलों में भारत ने 44 सालों में खवातीन हॉकी में सोने का पहला तमगा जीता। एशियाई खेलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 5वें मकाम पर पहुंच गया है। इसके तमगों की मजमुई तादाद बढ़कर 76 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोताओं, कहा जाता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी युवा पीढ़ी होती है, और जब यही युवा खेल के मैदान में अपने हुनर, अनुशासन और जज्बे का प्रदर्शन करते हैं तो देश का गौरव और भी बढ़ जाता है।

आज भारत में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो बस इन प्रतिभाओं को पहचानने, उन्हें निखारने और सही अवसर प्रदान करने की। इस दिशा में परिवार और समाज के साथ साथ शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। विद्यालय और महाविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि युवा प्रतिभाओं को आकार देने का भी महत्वपूर्ण मंच है।

खेल मैदान, प्रशिक्षित कोच, आधुनिक सुविधाएं, प्रतियोगिताओं के अवसर और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, ये सभी किसी उभरते खिलाड़ी के सपनों को उड़ान दे सकते हैं। तो आखिर शैक्षणिक संस्थान खेल प्रतिभाओं को किस तरह पहचान और तराशते हैं, और हमारे कॉलेज एवं विश्वविद्यालय किस तरह देश के लिए भविष्य के चैंपियन तैयार करते हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है पंकज कुमार जैन। आप LNCT कॉलेज में स्पोर्ट्स डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है।

0: चाहेंगे कि भोपाल की अगर हम बात करें तो कॉलेज में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अब भोपाल में तो सर इस समय स्पोर्ट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जितने भी कॉलेजेस हैं, जो संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं
0: जी,
1: वो खेलों को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रही हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो तो अपने संसाधनों का अच्छे से उपयोग करके खिलाड़ियों को आगे बढ़ा ही रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट संस्थाएं भी बहुत स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं। और आजकल तो खिलाड़ियों का समय आ रहा है, तो खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संस्था अपने अपने स्तर पर अच्छे अच्छे प्रयास कर रही है और खेलों को बढ़ावा तो मिल ही रहा है।
0: जी जी जी, समय सरकार भी काफी प्रयासरत है और खेलों को एक नई दिशा प्रदान की जा रही है। पंकज जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि कॉलेजों में जो विद्यार्थी है उनकी खेल प्रतिभा को पहचानने के लिए कॉलेज में क्या कोई व्यवस्था है, क्या कोई नियमित ट्रायल या प्रतिभा चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है?
1: आपने बिल्कुल सही कहा, मध्य प्रदेश इस समय खेलों में बहुत अग्रणी स्थिति में आ रहा है और इसका श्रेय सभी को जाता है जो भी प्रयास कर रहे हैं। और कॉलेज लेवल पे ऐसा होता है सर, जो स्कूल से बच्चा खेल कर आगे आता है तो जब उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो वो अपना परिचय देता है और उसके बाद उसको पूरे अवसर दिए जाते हैं। कॉलेजेस में जैसे कि शुरू में कॉलेज की कॉम्पिटिशन होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की, डिविजन लेवल की, उसके बाद स्टेट कॉम्पिटिशन करवा के यूनिवर्सिटी की टीमें आगे भेजी जाती हैं, तो इससे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिलता है।
0: जी, और कोई प्रक्रिया भी है जिससे कि एक अच्छा मंच मिल सके विद्यार्थियों को?
1: हाँ जी बिल्कुल है ना सर, जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद भारत सरकार ने पॉलिसी बना के रखी कि जो शुरू की 8 टीमें होती हैं या जो 16 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको खेलो इंडिया में जाने का अवसर मिलता है। खेलो इंडिया तो एक बहुत बड़ा मंच है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिससे कि प्रतिभावान जो भी खिलाड़ी है उनका चयन किया जाता है और उनको आगे की नई दिशा भी प्रदान की जाती है। पंकज जी, खेलों में रुचि रखने वाले जैसे कोई भी विद्यार्थी है तो नियमित प्रशिक्षण के लिए क्या कॉलेज में किसी तरह की कोई व्यवस्था है?
1: हाँ सर, हर कॉलेज में खेलों के पूरे पर्याप्त संसाधन रहते हैं, खेल मैदान रहते हैं, प्रशिक्षक रहते हैं। आजकल तो सर कंपटीशन का दौर है, तो हर संस्था अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए, जो खिलाड़ी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कोचेस होते हैं और उन्हीं कोचेस के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलने जाते हैं, कॉलेज में कॉम्पिटिशन होती है, जैसे भोपाल लेवल की कोई कॉम्पिटिशन हुआ तो उसमें सभी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो भी जब कॉलेज आगे बढ़ते हैं तो कॉलेज का नाम भी होता है और बच्चों को प्रयास रहता है कि आगे बढ़े और वो पारंगत हो अपने खेल में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हमारे विश्वविद्यालय है या कॉलेजेस हैं उनमें सार्थक प्रयास किया जा रहा है कि खिलाड़ियों का न सिर्फ चयन हो बल्कि वह प्रदेश स्तर और राष्ट्र स्तर पर भी अपना नाम रोशन कर सके। अब जैसे सुविधाओं की बात करें तो कॉलेज में विद्यार्थियों को किन किन खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है?
1: सर लगभग जो भी ओलंपिक खेल हैं उन सभी के तो खेल मैदान रहते ही हैं सर, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारे खेल तो लगभग हर कॉलेज में रहते ही हैं, है ना। कॉलेज के बाद में खिलाड़ियों को, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, उनके क्लासेस के बाद में हम उनको शाम का जो सेशन रहता है उसमें हम अलग अलग हमारे यहाँ कोचेज हैं जो कि खिलाड़ियों को कोचिंग देते हैं और प्रयास किया जाता है कि वो आगे बढ़े ताकि हमारी टीम अच्छी बने, और अच्छी टीम बनेगी सर तो हमारा नाम भी
0: जी
1: और बच्चों को भी फायदा मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी पहल है जो कॉलेजेस के द्वारा इस समय की जा रही है। अभी हमने बात करी सुविधाओं की, तो जो अभी खेल उपकरण है या आवश्यक संसाधन है उसको बेहतर बनाने के लिए संस्थान की ओर से क्या किसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
1: हाँ सर, आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग नए इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं। पुराने समय तो चला गया सर, जो मिल्खा सिंह नंगे पैर ही दौड़ लिए थे, तो अब तो कई चीजें ऐसी नई नई आ गई हैं। कंपनियां खुद आके सर कॉलेज में विजिट करती हैं, मैनेजमेंट से मिलती हैं और वो अच्छे अच्छे संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। जिम वगैरह भी हर कॉलेज में होता है जो कि पहली पाठशाला है खिलाड़ी को आगे बढ़ने की, तो संसाधन तो सर खुद कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और अच्छी अच्छी सुविधाएं हर संस्था प्रदान करने की कोशिश करती है। सरकार भी उसमें पूरा सहयोग प्रदान करती है, जैसे हमारे खेल विभाग विभाग है वहां से भी सभी संस्थाओं को पूरा सहयोग मिलता है ताकि खिलाड़ी आगे बढ़े।
0: जी जी जी, पंकज जी, क्या विद्यार्थियों को अंतर विद्यालय, विश्वविद्यालय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए क्या प्रोत्साहित किया जाता है?
1: हाँ जी सर बिल्कुल, हम तो खिलाड़ियों को पूरा अवसर प्रदान करते हैं सर। हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र में खिलाड़ी को जहाँ तक वो खिलाड़ी खेलना चाहता है हम भेजने का पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे कि जब बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है खेलने के लिए उसको TADA दिया जाता है, उसको किट प्रदान की जाती है, ट्रैक सूट, जो भी उसका ट्रेवलिंग चार्जेस सब उसका अनाउंस सब दिया जाता है। और जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है।
0: जी,
1: ये भारत सरकार की पॉलिसी भी है।

0: कि जो भी खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं आईयू में तो उसको 25,000 15,000 और 10,000 की राशि दी जाती है, लेकिन ये किसी अमाउंट में निश्चित नहीं है। खिलाड़ी जितना परफॉर्म करता है तो हर संस्था का वो रहता है कि उस खिलाड़ी को अवसर प्रदान करें। यूनिवर्सिटी के बाद में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी चालू हो गया, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जब बच्चा खेलने जाता है तो हमारे से 2-3 बच्चे पिछले 2 सालों में खेलने गए हैं, तो चाइना और जर्मनी गए थे, तो पूरा खर्चा सर हम लोगों ने उठाया था।
1: जी जी जी।
0: तो खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सभी आजकल खुले दिल से प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि जब तक अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो सर सरकार के साथ साथ प्राइवेट संस्थान भी पूरा उनको मदद करते हैं।
1: जी, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी विश्व पटल पर इसी तरह के प्रयासों से भारत अपनी एक अमिट छाप छोड़ेगा और हमें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। अब जो विद्यार्थियों के प्रदर्शन की आपने बात करी, जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्या कोई कॉलेज प्रशासन और स्पोर्ट्स विभाग के बीच भी किसी तरह का कोई समन्वय है?
0: हाँ सर, खेल विभाग संपर्क में रहता है कि यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी हैं वो अपने उसमें लेने के लिए, और वो भी उनको मदद करते हैं, और जो एकेडमीज चल रही हैं वो भी हमसे कांटेक्ट में रहते हैं कि ताकि उनके एकेडमी के जो बच्चे हैं वो हमारे यहाँ कोई शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमारे मैनेजमेंट से बात करके उनको निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको फीस उनकी माफ़ की जाती है। तो इस तरीके के भी कई काम होते हैं खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो शासन और संस्थाएँ मिलकर भी इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं।
1: जी, और खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा रहा है?
0: बहुत अच्छी बात की आपने। खिलाड़ियों को मोटिवेट करने के लिए कुछ प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स होती हैं जिसमें कुछ इनामी राशि रखी जाती है जिससे खिलाड़ी मोटिवेट होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन लेवल के, स्टेट लेवल की जो कॉम्पिटिशन होती हैं उसमें खिलाड़ी अपना परफॉर्म करता है तो उसको मोटिवेशन मिलता है, और उसके बाद जो प्रोत्साहन राशि है कि उसको ये रहता है कि मैं आगे जाके मेडल लेके आऊँगा तो मुझे इतनी राशि मिलेगी, मुझे जॉब मिलेगी। तो सर इस सब चीज़ों के कारण से खिलाड़ी अपने आप में मोटिवेट होता है, और सभी में संस्थाएं और सरकार मिलकर वर्क करती हैं।
1: और जैसे कि आजकल हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आज के समय में जो हम बात करते हैं फिटनेस, जैसे कि सब जानते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थियों को फिट और सक्रिय रखने के लिए संस्थाओं द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां करवाई जा रही है?
0: संस्थाओं में जैसे हमारे यहाँ तो हमारे प्रति शनिवार को स्पोर्ट्स डे होता है, तो वहाँ पर खिलाड़ियों को, पूरे ही खिलाड़ियों को जो भी वो खेलना चाहते हैं उनको खेलने के अवसर दिए जाते हैं। तो सभी लोग प्रयास करते हैं कि बच्चे प्रॉपर खेलें, प्रॉपर उनके कोचेज रहते हैं जो उनको प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो लंच में खेल सकते हैं और कॉलेज के पहले खेल सकते हैं, उनको बसें की सुविधा प्रदान की जाती है। अगर वो कॉलेज के बाद में रुक रहे हैं तो उनको बस सुविधा प्रदान की जाती है और खेलों के ग्राउंड उनके लिए ही। तो सब मिलकर प्रयास करते हैं सर, और जिम वगैरह सब खिलाड़ियों को जाना ही चाहिए सर।
1: जी जी जी। और क्या कॉलेजों में प्रशिक्षकों या पूर्व खिलाड़ियों को भी बुलाकर प्रशिक्षण या मार्गदर्शन दिया जाता है?
0: हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे कि कोई कंपटीशन करवाते हैं तो उसमें हम पहले से कोचेस को बुला लेते हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, वो उनको टिप्स देते हैं ताकि खिलाड़ी आगे बढ़े।
1: जी, अब जैसे आपने बात करी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो उनको सहायता प्रदान की जाती है उनको उससे मदद मिलती है और वो किसी भी खेल में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं?
0: हाँ सर, बिल्कुल। अगर किसी की इच्छा है खेलने की और वो पैसे के कारण से नहीं खेल पा रहा है और उसकी कमी अगर कोई संस्था दूर कर रही है सर, तो वो तो जी जान से मेहनत करेगा और वो आगे बढ़ता है। कई ऐसे उदाहरण है जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़े हैं और उनको संसाधन के कारण से और उन्होंने पूरी मेहनत की है, वो अपना सब कुछ झोंक देते उसके बाद निश्चित रूप से वो आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी जी। क्या समय समय पर कॉलेज अपने विद्यार्थियों को खेलों में करियर और अवसरों के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है?
0: हाँ सर, ये तो आजकल तो गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करवाना है, तो हमारे यहाँ तो सर कई इंजीनियर्स ओलंपिक, फैकल्टी ओलंपियाड, ये सब होते रहते हैं, तो खिलाड़ियों को बराबर खेलने का अवसर मिलता है। हमारे जो पूरे ग्रुप के जो भी कॉलेजेस हैं मिलकर हम लोग इवेंट करवाते हैं ताकि हमारी फैकल्टी भी फिट रहे और हमारे बच्चे भी फिट रहे। तो ये प्रयास रहता है हमारे मैनेजमेंट का कि बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आए। तो निश्चित रूप से सर पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश भी बहुत पदक तालिका में ऊंचाई पर आ रहा है, तो ये सब सबके मिलके जो प्रयास हो रहे हैं उसके कारण से सब संभव हो पा रहा है।
1: निश्चित तौर पर कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन युवाओं को जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: सर, मैं बोलना चाहूँगा आकाशवाणी के माध्यम से कि सभी खिलाड़ी पूरी मेहनत तन मन के साथ ग्राउंड पर अपना प्रयास करें आगे बढ़ने का। खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड पे आना ज़्यादा ज़रूरी है, जितनी मेहनत करें

0: बहुत कंपटीशन का दौर है, आपको सब सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। दूसरे आपको सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत करें
1: जी। पंकज जी, आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।

0: तो श्रोतों, आज की सार्थक बातचीत से यह समझने में मदद मिली कि खेल प्रतिभाओं को केवल मैदान तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उचित मार्गदर्शन देना और लगातार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी है। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
5: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है गीता दत्त की आवाज में फिल्म हावड़ा ब्रिज से।

ओपी नैयर का संगीत कमर जलालावादी के लिखे बोल, गीता दत्त की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हावड़ा ब्रिज से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म आशा से।

सी रामचंद्र का संगीत राजेंद्र कृष्ण के लिखे बोल, फिल्म आशा से गीत सुना आपने आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से।

ओपी नैयर का संगीत मजरूह के लिखे बोल गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है चित्रकार की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा चितलकर की आवाज़ में, फिल्म अलबेला से।

0: सी रामचंद्र का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चितलकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म अलबेला से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एशियन गेम्स 2026 पर आधारित दिल्ली हाइलाइट्स सुनवाने के लिए चलिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: Welcome to our daily highlights from the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya. I am Megha. October 2 turned into a truly golden day for India in every sense of the word. From the hockey field to the wrestling mat, the archery range to the boxing ring, there was plenty to celebrate. Let's begin with the big headlines. A 44-year wait comes to an end. India beat China 1-0 to win the women's hockey gold, their first at the Asian Games since 1982. History in archery as well. Ankita Bhakat, Kirti Sharma and Kumkum Mohod beat South Korea to win India's first ever women's recurve team gold at the Asian Games. A golden hat-trick in boxing. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Pangal all finish on the top of the podium. Sujit Kalkal produces a remarkable comeback to win India's first wrestling gold of these games in the men's 65-kilogram freestyle. First up, one of the biggest Indian stories of the day. That 1-0 triumph over China in women's hockey finals doesn't just end a four-decade drought. It also officially stamps India's ticket to the Los Angeles 2028 Olympic Games. Here's Anupam Pathak with the story of a historic final.
3: महिला हॉकी के फाइनल में आज भारत की लड़कियों ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया और उनके लिए तालियां ही तालियां। जितनी भी बजाइए कम है। चीन को 1-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और लॉस एंजलिस ओलंपिक में प्रतिभागिता पक्की कर ली कॉन्टिनेंटल चैंपियन होने के नाते। भारतीय हॉकी प्रेमियों के लिए एक बहुत तनाव भरा, खून जमाने वाला, रोमांच से भरा हुआ मैच था ये। पूल लेवल पे गोल दागने वाली लड़कियों ने मजबूत टीम के विरुद्ध रणनीति बिल्कुल बदल दी। थोड़ी रिस्की जरूर थी लेकिन पूरी तरह फिट और मुफीद रही। फर्स्ट क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत के दूसरे सीरियस मूव में ही मौका आ गया। डी के भीतर मिले क्रॉस पर अपना 200वां मैच खेल रही लाल रंग सियामी ने रिवर्स शॉट उठता हुआ लगाया तेज और एकदम निशाने पर, आंखों में चस्पा हो जाने वाला गोल, शायद गोल ऑफ द टूर्नामेंट। भारत 1-0 से आगे हो गया और इसके बाद भारतीय रणनीति सिर्फ और सिर्फ रक्षण करने की रही। गाहे बगाहे मिले अवसरों को छोड़ दें तो खेल मध्य मैदान में ही होता रहा या फिर चीनी खिलाड़ी आक्रमण करते रहे। पूरे मैच में 62% गेंद चीन के खिलाड़ियों के पास ही रही और दूसरे क्वार्टर में भी चीन हमला ही करता रहा, भारत बचाव करता रहा। खासतौर पर सुशीला चानू और नवनीत कौर ने बहुत शानदार तरीके से चीनी आक्रमण विफल किए। फिर आया एक और दिल थाम लेने वाला क्षण, चीन का अटैक बना। पहले पेनल्टी कॉर्नर मिला, वो बेकार गया। उसके थोड़ी देर बाद उन्हें मिल गया पेनल्टी स्ट्रोक। किसी को भी लगेगा अब तो स्कोर बराबर। सविता पूनिया ने अकल्पनीय पूर्वानुमान के साथ अपने बाईं ओर गिरते हुए ग्लव्स से पेनल्टी स्ट्रोक का शॉट रोक दिया। हाफ टाइम स्कोर 1-0 और इसके बाद चीन ने चाहे जितना दबाव बनाया, भारतीय अंततः उसे बेकार ही करते रहे। डिफेंस पूरी तरह शबाब पर, चीन के विरुद्ध चीन की दीवार की तरह डट गया भारतीय रक्षण। चौथे क्वार्टर में भारत ने यही रणनीति अपनाए रखी। समय की सुई घूम रही थी, वैसे वैसे चीन की खींच भी बढ़ रही थी, लेकिन भारतीय लड़कियां गेंद को मध्य में रख समय बिताने की कोशिश में लगी थी। अंत में हुआ ये कि चीन ने अपने गोलकीपर को भी मैदान से बाहर कर दिया, यानी सभी 11 खिलाड़ी अटैक पर। लेकिन तब भी भारत गोल पोस्ट खाली देखकर भी प्रत्याक्रमण के मूड में नहीं आया। बस एक ही मूव बनाया चीनी डी तक पहुंचने का और जैसे ही हूटर बजा लड़कियां उछल पड़ी, देश उछल पड़ा, स्वर्ण पदक भारत को। अब इंतजार रहेगा कि भारत की पुरुष टीम भी कल फाइनल में मलेशिया को मात दे दे और स्वर्ण पदकों की जोड़ी पूरी करे और वो भी 2028 ओलंपिक में सीधे प्रवेश कर ले। इस जीत ने भारतीय हॉकी और नीति नियंताओं को भी अच्छा मौका दे दिया है। अब तैयारियां करने, प्रयोग करने, नई प्रतिभाओं को मौका दे, देश के लिए बेस्ट टीम तैयार करने के लिए 2 साल का समय मिल गया है, वरना अभी करीब 1 साल और इंतजार करना पड़ सकता था ओलंपिक कोटा के लिए। चलते चलते ये भी बता दूं कि इसके पहले 1982 में अंतिम बार भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स में।
2: next onto the wrestling mat. And this was a day when India had plenty at stake across four weight categories. And one of those bouts produced a quite extraordinary comeback. Here's Shahid Azmi with a wrestling report.
4: 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, वो भी ऐसे कमबैक के साथ जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत के सुजीत कलकल ने एशियन गेम्स में पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या में न सिर्फ इजाफा किया बल्कि जकार्ता 2018 के बाद पहली बार भारत को एशियन गेम्स में पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक दिलाया। वहीं रजत, रुहाल, प्रिया मलिक और दीपांशी सहित 3 भारतीय पहलवान मैट पर उतरे थे, लेकिन वे कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। पहले बात गोल्डन बॉय सुजीत कलकल की। फाइनल मुकाबले में सुजीत ने ताजिकिस्तान के अब्दुल मजीद कुदियेव को रोमांच के प्रकाशा तक पहुंचे मुकाबले में 10-9 से शिकस्त देकर भारतीय खेमे को खुशी से भर दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहले पीरियड के बाद सुजीत 2-9 से पीछे थे, लेकिन दूसरे पीरियड में उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए लगातार 8 अंक जुटाए और मुकाबले के आखिरी 10 सेकंड में निर्णायक टेकडाउन के साथ बाजी पलट दी। इससे पहले सुजीत ने राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के सैयद उमर ज़ज़ाई को 13-3 से और क्वार्टर फाइनल में ईरान के बास इब्राहिम को 10-0 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में उन्होंने जापान के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन कोटारो कियोका को 3-3 के बराबरी के बाद पॉइंट क्राइटेरिया के आधार पर मात दी। आपको ये भी बताते चले, सुजीत साल 2026 में अब तक अजय हैं। एशियाई चैंपियनशिप और वर्ल्ड अंडर 23 खिताब जीतने के बाद अब एशियन गेम्स का गोल्ड भी उनके नाम रहा। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में दीपांशी कांस्य पदक से चूक गई। कांस्य पदक मुकाबले में उन्हें कजाकिस्तान की जेने बयानोवा ने चित करके यानी फॉल के जरिए शिकस्त दी, जबकि महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया मलिक को राउंड ऑफ 16 में किर्गिस्तान की एपेरेमेडिट काइजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह पुरुषों के 125 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में रजत, रुहाल राउंड ऑफ 16 में कजाकिस्तान के एदगे कासिम बेग से 3-8 से हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कल भारत के 5 पहलवान मैट पर उतरेंगे, जिनमें पुरुषों में अमन सहरावत 57 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम और दीपक पुनिया 97 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम और मनीषा 57 किलोग्राम में मैट पर उतरेंगी।
2: Now to the boxing ring. 3 Indian boxers went into gold medal bouts today. Lovlina Borgohain, Parveen Huda and Ankush Panghal. And all 3 emerged as Asian Games champions. For a golden day for Indian boxing, here's Shahid Azmi.
4: मुक्केबाजी रिंग में भारतीय मुक्केबाजों ने विरोधी बॉक्सरों पर ऐसा पंच जड़ा कि एक ही दिन में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लग गई और इतिहास के पन्नों पर लिख दिया एक नया गोल्डन अध्याय। एशियन गेम्स में भारतीय मुक्केबाजों ने वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल ने अपने मुक्कों से बैक टू बैक 3 स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाल दिया। पहले बात लवलीना बोरगोहेन की। अपने जन्मदिन पर लवलीना ने खुद को और देश को शानदार तोहफा दिया। महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में लवलीना ने चीन की बाओ जी को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही हांगजाओ के रजत को स्वर्ण में बदलते हुए लवलीना ने इतिहास

0: रच दिया। वे मैरी कॉम के 2014 के बाद एशियन गेम्स में बॉक्सिंग का स्वर्ण जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई। लेकिन भारत का स्वर्णिम पंच यही नहीं रुका। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा का मुकाबला चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन चेन नियन चीन से हुआ। मुकाबला बेहद करीबी रहा, लेकिन परवीन ने शानदार धैर्य दिखाते हुए 3-2 से जीत दर्ज की और पहली बार एशियन गेम्स चैंपियन बन गई। इससे पहले परवीन ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमोवा और सेमीफाइनल में चीन की ली शू को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। और फिर बारी आई तीसरे स्वर्ण की। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में अंकुश पंघाल ने कोरिया के किम मिसियोंग को 4-0 से हराकर भारत के लिए तीसरा गोल्ड जीता। अपने पहले ही एशियन गेम्स में अंकुश ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में 5-0 की जीत के बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन उज्बेकिस्तान के फजलुद्दीन एरकिन बोए को 4-1 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में भी अंकुश ने कोई मौका नहीं दिया और भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण डाल दिया। इस तरह भारत ने बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण और 3 कांस्य समेत कुल 6 पदक जीते। इन 6 पदकों में 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज पुरुषों ने जबकि 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज महिला बॉक्सरों ने जीते। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने इस इवेंट में 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 4 पदक जीते थे।
1: Next to the archery range, and another memorable day for India. There was history in the women's recurve team event, while the mixed and men's team competitions also had Indian interest. Shahid Azmi has a complete story.
0: Nagoya में भारतीय तीरंदाजों ने आज निशाने पर ऐसा तीर चलाया कि पदकों से झोली भर गई। एक ही दिन में भारत ने तीरंदाजी में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किए। महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर पहली बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि मिश्रित और पुरुष रिकर्व टीम ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा। यानी आज धनुष की डोर से निकले हर तीर ने भारत के लिए इतिहास की नई इबारत लिखी। बात पहले महिलाओं के ऐतिहासिक प्रदर्शन की करते हैं। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंकिता भगत, कीर्ति शर्मा और सिर्फ 17 साल की कुमकुम मोहोत की भारतीय तिकड़ी ने तेज हवाओं के बीच शानदार धैर्य और सटीक निशाने का प्रदर्शन किया। फाइनल के शुरुआती 2 सेट बेहद रोमांचक रहे। दोनों सेट 54-54 और 56-56 की बराबरी पर खत्म हुए, लेकिन तीसरे सेट में भारत ने बड़ा पलटवार किया। दक्षिण कोरिया की तीरंदाज लगातार 3 बार 8 अंक पर रुके, जबकि भारत ने 55 अंक जुटाकर सेट अपने नाम करने के साथ 4-2 की बढ़त बना ली। चौथे सेट में दोनों टीमों का स्कोर 54-54 रहा। कीर्ति शर्मा के एक तीर ने समीक्षा के बाद 8 के बजाय 9 अंक दिए और भारत ने इतिहास रच दिया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार महिला रिकर्व टीम के फाइनल में जगह बनाई थी। 2023 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम ने नागोया में पदक का रंग बदलकर सीधे स्वर्ण कर दिया। उधर रिकर्व मिश्रित टीम इवेंट में भारत ने रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए खेले गए फाइनल में धीरज बम्बा देवरा और कुमकुम मोहोत की भारतीय जोड़ी का सामना चीन से हुआ। मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, लेकिन चीन के हाथों भारत को 3-5 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने शुरुआती 2 सेट गंवाए, लेकिन तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत दर्ज की। चौथे सेट में दोनों टीमों के बीच 37-37 की बराबरी रही, लेकिन शुरुआती बढ़त के दम पर चीन ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। स्कोर लाइन की बात करें तो भारत को 34-38, 35-37, 37-36 और 37-37 से कांटे भरे मुकाबले में शिकस्त मिली। वहीं दिन के आखिरी फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक हासिल किया। फाइनल में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से हुआ, जहां भारतीय टीम को 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। पहला गेम 56-56 की बराबरी पर खत्म हुआ। उसके बाद दूसरे गेम में भारत 50-57 और तीसरे गेम में 54-56 से पीछे रह गया। इस तरह दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भारत के हिस्से रजत पदक आया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी में भारत के पदकों की संख्या 7 हो गई है, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है।
1: On to Sepak Takraw, where both the men's and women's quadrant teams were in action today. Here's Anupam Pathak with the report.
2: सिपक टोकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में भारतीयों ने इतिहास रच दिया और इस स्पर्धा में पहला पदक कांस्य पदक हासिल कर लिया। आज भले ही सेमीफाइनल मुकाबले में जापान से उन्हें 12-15 और 13-15 से सीधे सेट्स में हार मिली, लेकिन सेमीफाइनल चक्र में पहुंचकर पदक तो उन्होंने पहले ही पक्का कर लिया था, सो कांस्य पदक उनका रहा। इसे ही रेगू स्पर्धा भी कहते हैं। भारतीय टीम में शामिल थे मालेम गानबा सिंह, सौरव खाइबाम, रामकुमार शर्मा, बॉबी कुमार और यक्ष युमनाम, और एक्सटेंडेड खिलाड़ी थे अरुण राजू और और लोखोन सिंह इलांगवांग। मुकाबला भारतीय टीम हारी जरूर, लेकिन मैच एक तरफा बिल्कुल नहीं रहा। दोनों ही सेट्स में कड़ी टक्कर उन्होंने दी। पहले में तो 9-9

0: जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: एस डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म प्यासा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: मारे, मारे,

एस डी बर्मन का संगीत साहिर लुधियानवी के लिखे बोल। प्यासा फिल्म से गीत सुना आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए प्रस्तुत है मनोज कुमार का ध्रुपद गायन राग बिहाग।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आपने सुना मनोज कुमार का ध्रुपद गायन राग बिहाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छर से फोन पर बात की। श्री मोदी ने इसराइल जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट को क्रैश कराने की कथित कोशिश को नाकाम करने में कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वे लोग नहीं हैं जो दूसरों की जान लेते हैं, बल्कि वे हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते हैं। श्री मोदी ने कैप्टन मच्छर की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने पलक झपकते ही जो फैसला लिया उससे सैकड़ों यात्रियों की जान सकी।
2: आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपने जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया, और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ।
1: बुधवार को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कॉकपिट में सहयोगी पायलट के हमले में कैप्टन मच्छर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल थे। पायलट का अभी संयुक्त अरब अमीरात के अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। अस्पताल से प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में कैप्टन मच्छर ने कहा कि 17 वर्ष के फ्लाइंग अनुभव ने उन्हें हालात की गंभीरता को समझने और तुरंत कार्रवाई करने में मदद की। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वे देश से दूर हैं, लेकिन देश की संस्कृति से नहीं। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छर के इलाज का इंतजाम करने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर यह बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान जाने माने गायकों और स्कूली विद्यार्थियों ने भक्ति गीत गाए। विश्वभर में स्थित भारतीय दूतावासों और उच्चायोगों ने भी आज महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर उन्हें सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश को याद किया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अध्यक्ष मनोज गोयल ने आज बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में

विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट आज से 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। जापान में एशियाई खेलों में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। वहीं भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष मुक्केबाजी के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश पंघाल ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला मुक्केबाजी के 65 किलोग्राम वर्ग में परवीन हुड्डा ने नियन चिनचेन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहाइन ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में 5 अक्टूबर तक गरज के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।